मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर आकाश शक संवत 1948 के भाद्रपद माह की 15वीं तिथि तदनुसार 6 सितंबर सन 2026 इस समय प्रातः के 5:55 और 49 सेकेंड्स हुए हैं। आरंभ हो रही है आज की प्रातःकालीन सभा।

0: FM 102.9 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को हैं, आपसे थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की सकल घरेलू उत्पाद दर में 7.8% की तिमाही वृद्धि उसकी आर्थिक मजबूती को दिखाती है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC के शताब्दी समारोह में कहा कि दुनिया भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनते हुए देख रही है।
2: दुनिया भारत को फ्रजाइल 5 बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है। और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने SRCC के संस्थापक श्रीराम को श्रद्धांजलि दी और उनकी दूरदर्शी सोच को नमन किया। इससे पहले शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया।

0: गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया है। डॉक्टर शर्मा अवकाश प्राप्त एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी की जगह लेंगे। डॉक्टर शर्मा अभी उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के संसद सदस्य हैं और राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह 4 दिन की यात्रा पर कल सऊदी अरब की राजधानी रियाद पहुंचे। श्री सिंह की यह सऊदी अरब की पहली यात्रा है। वे सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्री, विदेश राज्य मंत्री और जलवायु पर्यावरण जल तथा कृषि उप मंत्री से मुलाकात करेंगे। श्री सिंह सऊदी अरब में भारतीय मूल के लोगों, भारतीय व्यापार प्रमुखों, उद्यमियों तथा पेशेवरों से भी मिलेंगे। सऊदी में कार्यरत भारतीय कामगारों से भी वे बातचीत करेंगे। लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री जेवियर बेटेल भारत के 3 दिन के दौरे पर कल भारत आएंगे। इस दौरान वे दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। श्री बेटेल चेन्नई भी जाएंगे और आईआईटी मद्रास के कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड NBEMS ने राजस्थान की राजधानी जयपुर में सीतापुरा स्थित आयन डिजिटल जोन परीक्षा केंद्र पर नीट PG की पुनर्परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार जयपुर के 5 केंद्रों पर परीक्षा सुचारू तरीके से संपन्न हुई। पिछले महीने की 30 तारीख को जयपुर के परीक्षा केंद्रों में बिजली की समस्या के कारण 2,445 अभ्यर्थियों की परीक्षा पूरी नहीं हो सकी थी। छत्तीसगढ़ में जगदलपुर की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की विशेष अदालत ने झीरम घाटी में हुए माओवादी हमले के मामले में सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया है। इस मामले में कुल 11 आरोपी थे, जिनमें से एक की मृत्यु हो गई थी। अदालत ने 2 महिलाओं सहित सभी 10 आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 को हत्या के प्रयास का दोषी पाया। सजा पर फैसला 16 सितंबर को होगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक मंडल की सिफारिश के बाद 8 उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर दी गई है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी जानकारी दी। महिला क्रिकेट में संयुक्त अरब अमीरात के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए 2020 एशिया कप के ग्रुप ए मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान ने भारत के सामने जीत के लिए 56 रन का लक्ष्य रखा था। भारत ने 8 ओवर 4 गेंद में 3 विकेट खोकर 57 रन बनाए और आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया। बाएं हाथ की स्पिनर श्री चंडी ने 7 रन देकर 3 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल मुकाबले में मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टेन वी क्योंग को हराया। मौसम विभाग ने कल तक पूर्वोत्तर राज्यों, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कल तक बिजली चमकने और तेज हवाओं के चलने की संभावना व्यक्त की गई है। पूर्वोत्तर राज्यों, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड में ऐसी स्थिति बने रहने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना।

इस संसार में यदि आश्रय के योग्य कुछ है तो वो है प्रभु का पावन नाम। उनके नाम के चिरस्मरण से बड़े से बड़ा पतित भी परम पावन होकर उनका हो जाता है।

ब्रज कोई स्थान मात्र नहीं, ये तो राधा कृष्ण और उनके भक्तों के प्राण हैं, जहां सुंदर यमुना नित्य पावन किलोल करती है, जहां पर सजे हुए हैं सुंदर घाट, वन, कुंज, निकुंज और समस्त ब्रजवासी।

आज के कार्यक्रम वंदना में आपने जिन रचनाओं को सुना उन्हें स्वर प्रदान किया अनुराधा पौडवाल, पंडित भीमसेन जोशी, लता मंगेशकर, हरिओम शरण जगजीत सिंह और ये देशभक्ति परक रचना हम सब ने सुनी संवेद स्वरों में। इसी के साथ कार्यक्रम वंदना अब यहीं पर समाप्त हुआ।

उसे स्तुति की गई है। अग्नि मानवों का सखा व रक्षक है, वह महान दानी है और मानव के गृहस्थ जीवन को खुशियों से भर देने वाला है। सूक्त में ऋषि मधुछंदा ने अग्निदेव से प्रार्थना की है कि वह पिता की भांति उसका कल्याण करता रहे।

0: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकाश किरण। आज इस कार्यक्रम में आपको सुनवाने जा रहे हैं ऋग्वेद के अग्नि सूक्त से पाठ समवेद स्वरों में। आइए सुने कार्यक्रम प्रकाश किरण।
1: भारतीय धार्मिक जगत में अग्नि का विशेष तथा आदरणीय स्थान है। विवाह आदि के अनेक धार्मिक कार्य अग्नि के साक्ष्य में ही किए जाते हैं। प्राचीनतम भारतीय साहित्य ऋग्वेद में सर्वप्रथम जिस देवता की स्तुति की गई है वह अग्नि ही है। भारतीय मान्यता है कि दैवी संसार और मानवीय जगत के बीच मध्यस्थता और संपर्क सूत्र का कार्य अग्नि के द्वारा ही किया जाता है। ऋग्वेद के इस अग्नि सूक्त में अग्निदेव की विविध विशेषणों

अभी आप सुन रहे थे ऋग्वेद के अग्नि सूक्त से पाठ, कार्यक्रम प्रकाश किरण के अंतर्गत संवेद स्वरों में।

ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस समय प्रातः के 6:35 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान। आज के संगीतबद्ध प्रसंग को स्वर प्रदान किया है ए हरिहरन, उत्तरा केलकर और मिताली बी सिंह ने। संगीत निर्देशक हैं सतीश भाटिया। आइए सुने श्री रामचरित मानस गान।

बड़ी चतुराई से मंथरा ने रानी कैकेयी के मन में कौशल्या तथा राम के प्रति ऐसे विष का बीज डाल दिया जिसके प्रभाव में सूर्यकुल के सुख समृद्धि हर्ष और उल्लास सबको एक बारगी सुखा डालने की क्षमता थी। सौत की ईर्ष्या की सैकड़ों उल्टी सीधी मनगढ़ंत कहानियां सुनाकर मंथरा ने

कैके को पूरी तरह अपने वश में कर लिया। कहती है, हे रानी, अपना मित्र या शत्रु तो पशु भी पहचान लेते हैं, परंतु तुम्हें तो अपने हित अहित की पहचान नहीं है। एक पखवाड़े से राम के राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही हैं और तुम्हें इसकी सूचना आज मुझसे मिली है। हे स्वामिनी, अब तुम्हारी स्थिति वही होगी जो दूध में पड़ी मक्खी की होती है। यदि पुत्र सहित राजा की चाकरी करोगी तब तो यहां रह पाओगी, अन्यथा तुम्हें भी दूध की मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया जाएगा। अपने अनिश्चित भविष्य की आशंका से रानी कैकेयी कांप जाती है। अब उन्हें ये भान होता है कि पिछले कई दिनों से उनकी दाहिनी आंख फड़कती रही है और रातों को बुरे बुरे सपने आते रहे हैं। वो मन में ठान लेती हैं कि मायके जाकर शेष जीवन बिता देंगी, किंतु जीते जी सौत की चाकरी नहीं करेंगी।

अभी आप सुन रहे थे श्रीराम चरित मानस गान, ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6:45 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारे आज के दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। आज की सभा में रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम, और रात्रि 10:00 से आप सुन सकेंगे रविवासरी अखिल भारतीय संगीत सभा का कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

प्रातः 9:15 पर सामयिक चर्चा प्रसारित की जाएगी आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। इस कार्यक्रम को आप सुन सकेंगे। आपसे थोड़ी ही देर बाद यानी कि प्रातः के 6:50 पर आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम खेती की बातें। इस कार्यक्रम में आज का विषय रहेगा सरसों की प्रमुख किस्में। जानकारी देंगे डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत। संस्कृत में समाचार होंगे प्रातः 6:55 पर और 7 बजे लेकर आएंगे पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे की। प्रातः 7:31 पर आपको

0: सुनवाएंगे कार्यक्रम ब्रजमाधुरी, जिसमें आज आप सुनेंगे गोकुल में आयोजित नंदोत्सव 2026 की रेडियो रिपोर्ट। वाचन स्वर होगा अनुराग पांडे का। चित्रपट संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि लेकर आएंगे प्रातः 8:30 पर, और सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज सुनवाएंगे कुछ भजन। कलाकार होंगे अंबिका मलिक। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे प्रातः 9 बजे से। प्रातः 9:30 पर सुनेगा बच्चों का प्रिय कार्यक्रम बाल गोपाल। आज इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय रहेगा शिक्षा का अधिकार, प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी। विश्व साक्षरता दिवस का महत्व, इस विषय पर भी आप सुन सकेंगे चर्चा। और वार्ता का विषय आज रहेगा आओ बच्चों जाने पर्यावरण के बारे में। संकलन और वार्ताकार होंगे जय सिंह। प्रातः 10 बजे का समय होगा साहित्यिक पत्रिका भंगिमा का। आज इस पत्रिका में सुनिएगा साहित्यिक चर्चा, समय की धड़कन और साहित्य की आवाज। रिपोर्ट सुनिएगा हिंदी साहित्य और नई पीढ़ी, बदलती रुचियां, नए माध्यम और नई चुनौतियां। विषय पर चर्चा करेंगी दिव्या सिन्हा। श्रृंखला साहित्य जिनका ऋणी है के अंतर्गत आज का विषय रहेगा ओज और करुणा के दो शिखर, दिनकर और महादेवी। आलेख और स्वर अरविंद कुमार का रहेगा। काव्य पाठ सुनिएगा एक बार फिर स्वर दो, रचना और स्वर रामधारी सिंह दिनकर का होगा। सुनिएगा इसी कार्यक्रम के अंतर्गत कहानी नर्मदा, कहानीकार होंगी अनुपमा श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में साहित्यिक गतिविधियां आप जानेंगे। इस कार्यक्रम में आलेख स्वर और प्रस्तुति सहयोग रहेगा चंद्रिका कुमार का। प्रस्तुतकर्ता होंगे ओम प्रकाश सिंह। फरमाइशी फिल्म संगीत का फोन इन कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा दिन में 11 बजे से हेलो आकाशवाणी के रूप में। कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत सुनिएगा दिन में 11:30 पर, और 12:30 दोपहर में आप सुन सकेंगे ब्रज लोकगीत कार्यक्रम। आज की कलाकार होंगी सीमा मोरबाल, आपको सुनवाएंगे कुछ बधाई के लोकगीत। इस मास का गीत का प्रसारण होगा दिन में 1:10 पर, और 1:15 पर आपको सुनवाएंगे एस पी सिंह की लिखी हुई झलकी घर परिवार, प्रस्तुति होगी राज सिंह की। 1:30 पर आज आप सुनेंगे फिल्म संगीत, और सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा दोपहर 2:30 पर। 3 बजे हमारी पहली सभा का समापन होगा, दूसरी सभा प्रारंभ होगी संध्या 5:30 से कार्यक्रम युवाणी के साथ। संध्या 6:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम ब्रज साहित्यिक, और इसके अंतर्गत ब्रज काव्य मकरंद में आज कवित्री होंगी ममता गुप्ता। संध्या वंदन कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा संध्या 6:30 पर, और 6:50 पर आप सुनेंगे ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम के अंतर्गत ब्रज लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम मनभावन। आज इस कार्यक्रम में चर्चा होगी बाह्य परजीवियों से पशु की सुरक्षा और पशु पोषण में खनिज लवण की आवश्यकता। शाम सुहानी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा संध्या 7:31 पर, और कार्यक्रम एक ही फिल्म से आप सुन सकेंगे रात्रि 8:30 पर। सुहाने तराने लेकर हाजिर होंगे संध्या 9:15 पर, और रात्रि 11:10 पर हमारी सांध्यकालीन सभा का समापन होगा। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6:50 हो चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। सरसों की प्रमुख किस्में, इस विषय पर आपको जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत।
1: किसान भाइयों, सरसों तिलहनी फसलों की एक प्रमुख फसल है, और इस तिलहनी फसल को अपने इस क्षेत्र में बहुतायत में उगाया भी जाता है। आजकल किसान भाई विशेष रूप से इसकी जो तोरिया किस्म है, तोरिया जो सरसों है, उसको उगाने में लगे हुए हैं, और इसके तुरंत बाद ही

0: बहुत से किसान भाई सरसों यानी कि राई इसकी भी बुवाई करना शुरू कर देंगे। तो आज हम इसकी जो किस्में हैं उसके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। तो कम समय में पकने वाली सरसों यानी कि लाया की जो किस्म है उसमें एक है नरेंद्र अगेती राई 4। ये किस्म 100 से 110 दिन में पक कर के तैयार हो जाती है और अपने उत्तर प्रदेश के लिए ये अच्छी किस्म है। इसके अलावा असिंचित क्षेत्रों के लिए जो किस्म है उसमें RH 819 किस्म है, और इसके अलावा वैभव किस्म है जिसको हम अपने सिंचित और असिंचित दोनों क्षेत्रों में बो सकते हैं। सरसों की ये अच्छी किस्म है। इसके अतिरिक्त है RH 30, ये भी सिंचित और असिंचित दोनों क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। जहाँ पर सिंचाई की सुविधाएं अच्छी हैं वहाँ पर आप जगन्नाथ यानी कि BSL 5 किस्म को लगा सकते हैं। और इसके अतिरिक्त पूसा जय किसान किस्म भी अच्छी है और उर्वशी किस्म है जिसको किसान भाई काफी क्षेत्र में लगा रहे हैं और इसको पसंद भी किया जा रहा है। जहाँ पर क्षेत्र अपने लबड़ी क्षारीय भूमि है वहाँ पर भी किसान भाई इसके लिए जो किस्म है उनको लगा करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, जिसमें CS 52 एक किस्म है और इसके अतिरिक्त नरेंद्र राई नाम से किस्म है जिसको के NDR 8501 के नाम से भी जानते हैं। क्षारीय भूमि वाले स्थानों के लिए ये बहुत ही अच्छी किस्म है। तोरिया की जहाँ तक किस्मों का सवाल है तो भवानी एक किस्म है जिसको कि देरी से बुवाई इसकी की जा सकती है, लेकिन अब किसान भाइयों को इसकी बुवाई जल्द संपन्न कर लेनी चाहिए, जिसमें कि PT 507 एक किस्म है, बहुत अच्छी किस्म है अपने उत्तर भारत के लिए। और जवाहर तोरिया एक जो किस्म है इसको भी बो सकते हैं और 3 महीने की ये फसल है। इसके बाद इसमें गेहूं की बुवाई आसानी से की जा सकती है। अगर तोरिया के बाद भी बहुत से किसान भाई अगर सरसों ही बोना चाहते हैं तो पूसा अग्रणी SAGE 2 के नाम से एक किस्म है, इसको बो सकते हैं। और इसको बोने से फायदा यह है कि तोरिया के तुरंत बाद इसकी बुवाई करके इससे सरसों आसानी से ली जा सकती है, क्योंकि ये 100 से 110 दिन में ही तैयार हो जाती है। तो इनके जो बीज आप लेंगे किसी विश्वसनीय दुकान से लेंगे और बीज कम से कम प्रमाणित तो होने ही चाहिए, ऐसे बीजों को लेकर के ही बुवाई की जाए। और बुवाई से पहले बीज को आप अवश्य उपचारित कर लें। उपचारित करने के लिए Apron 35 SD की 6 ग्राम मात्रा 1 किलो बीज को उपचारित करने के लिए पर्याप्त रहती है। या आप ऐसा कर सकते हैं, थीरम की 2 ग्राम मात्रा 1 किलो बीज को उपचारित करने के लिए पर्याप्त रहती है। बीज को उपचारित करने के बाद ही बोया जाना चाहिए।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। सरसों की प्रमुख किस्में, इस विषय पर जानकारी आपने प्राप्त की डॉक्टर देवेंद्र कुमार सारस्वत से। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने को हैं। आपसे थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।
2: संप्रति वार्ता श्रूयंताम, प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् वैश्विक अनिश्चिततायाः मध्ये 8.7% त्रैमासिक वृद्धिः भारतस्य आर्थिक सामर्थ्यं प्रदर्शयति। सः उक्तवान् यत् भारतेन नीतिसम्बद्ध गतिरोधात् नीतिसम्बद्ध गतिशीलतां प्रति दीर्घा यात्रा कृता। ह्यः नवदिल्ल्यां श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स इत्यस्य महाविद्यालयस्य शताब्दी समारोहे सभां सम्बोधयन् श्रीमोदी उक्तवान् यद् विश्वं भारतं तीव्रगत्या वर्धमानां प्रमुखां अर्थव्यवस्थां भवितुं पश्यति। प्रधानमन्त्रिणा अद्यतनोपलब्धीनां पूर्वकालीनैः संघर्षैः सह तुलनां कुर्वता उक्तं यत् आतंकवादः पराजितः अस्ति, अथ च सशस्त्रबलानि स्वभूमावेव शत्रून् विरुद्धं दृढतया प्रहारं कुर्वन्ति। जम्मूकश्मीरतः पूर्वोत्तर भारत पर्यन्तं शान्तिश्च पुनः स्थापिता अस्ति।
3: दुनिया भारत को फ्रजाइल 5 बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनने से हुए देख रही। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ में

0: देश का जोश बढ़ाया है।
1: और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है।
0: ये 7.8% की ग्रोथ भी ऐसे समय में आई है जब वेस्ट एशिया का युद्ध चल रहा है।
2: निरन्तर क्रियमाणानाम् आलोचनानां प्रत्युत्तर रूपेण प्रधानमन्त्री सुदृढार्थिक तथ्याङ्कान् प्रस्तुतवान्। असौ उक्तवान् यत् स्मार्टफोन् इत्येतस्य निर्यातः अधुना 15.2 लाख करोड़ रूप्यकाधिकः अभवत्। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स इत्यनेन महाविद्यालयेन विगतेषु वर्षेषु शैक्षणिकोत्कृष्टतायाः क्षेत्रे विशिष्टा प्रतिष्ठा प्राप्ता अस्ति। असौ एसआरसीसी महाविद्यालयस्य पूर्व छात्रान् अति विशिष्टान् वर्णयन् तान् ओजीज इति विशिष्टाधुनिकोपाधिना सम्बोधितवान्। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् पूर्व वित्तमन्त्री अरुण जेटली अपि एसआरसीसी महाविद्यालयस्य पूर्व छात्रः आसीत्। असौ एतदपि कथितवान् यत् अस्य महाविद्यालयस्य पूर्व छात्राः प्रत्येकस्मिन् क्षेत्रे स्वकीयं विशिष्टं चिह्नं स्थापितवन्तः। प्रधानमन्त्री मोदी उक्तवान् यत् शतवर्षीयम् इदं महत्वपूर्णं चरणं महाविद्यालयस्य तथा राष्ट्रस्य शिक्षाक्षेत्रस्य च कृते अत्यन्तं महत्वपूर्णमस्ति। असौ संस्थापकं श्रीरामं श्रद्धया स्मृत्वा तस्य स्थायिदृष्टिं प्रति सम्माननं प्रकटितवान्। राष्ट्रपतिपदासीनया द्रौपदी मुर्मू इत्यनया ह्यः डॉ दिनेश शर्मा इत्येषः अण्डमान निकोबार द्वीप समूहस्य उपराज्यपालरूपेण नियुक्तः। राष्ट्रपति भवनेन प्रसारिते एकस्मिन् विज्ञप्तौ एतत् संसूचितमासीत्। डॉ शर्मा 17.2 वर्षस्य अक्टूबर मासात् अण्डमान निकोबार द्वीप समूहस्य उपराज्यपालरूपेण कार्यं कुर्वन्तं सेवानिवृत्तम् एडमिरल देवेन्द्र कुमार जोशीम् अनुसरिष्यति। डॉ शर्मा सम्प्रति उत्तर प्रदेशतः राज्यसभा सांसदः अस्ति। असौ पूर्वं राज्यस्य उपमुख्यमन्त्री पदमपि अलंकृतवान्। भारत नेपालयोः उद्धार दलानि चिलिमे सुरंगे उद्धार कार्यं निरन्तरं कुर्वन्ति। नेपालस्थितः भारतस्य राजदूतः नवीन श्रीवास्तवः ह्यः उक्तवान् यत् उद्धार कार्यं सुकरं कर्तुं समीपस्थस्य स्याब्रुबेसी प्रदेशात् सुरंगस्य प्रवेशद्वार पर्यन्तं सम्पर्क मार्गस्य निर्माण कार्यमपि प्रचलति। भारतर्तो विज्ञान विभागेन संसूचितं यत् श्वः यावत् उत्तरपूर्वीयेषु राज्येषु उपहिमालयीय पश्चिम बंगाल सिक्किम बिहारोत्तर प्रदेशोत्तराखण्ड पंजाब चण्डीगढ़ हरियाणा पूर्व राजस्थान दिल्ली मध्यप्रदेशेषु च अतिवृष्टेः संभावना अस्ति। महिला क्रिकेट क्रीडायां भारतेन पाकिस्तान दलं 7-0 पराजितम् इति वार्ताः।
3: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस समय प्रातः के 7 बजे हैं और अब आपको सुनवाते हैं पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित हमारा कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

नरसी भगत, इस फिल्म का ये गीत आपने सुना हेमंत कुमार शुभा मल्होत्रा के स्वर में। गीत को लिखा था GS नेपाली ने, संगीत था रवि का। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

नास्तिक इस फिल्म का ये गीत आपने सुना चितलकर और साथियों की आवाज़ों में। गीत को लिखा था प्रदीप ने, संगीत था सी रामचंद्र का। आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

नूर जहाँ की आवाज़ में आपने सुना नादां फिल्म का ये गीत, और आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म अलबेला से। गीत को आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने।

अलबेला फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर और चितलकर की आवाजों में। गीत को लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने, संगीत था सी रामचंद्र का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, तलत महमूद और सुरैया की आवाजों में। इस गीत को हमने लिया है फिल्म मालिक से।

मालिक फिल्म के इसी गीत के साथ पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित हमारा कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत अब यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 7:18 हुए हैं। आपसे थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारा अगला प्रसारण।

0: सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है, और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वैष्णवी त्रिपाठी। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रदेश के 5 शिक्षकों सहित देश के 69 शिक्षकों को किया सम्मानित। कहा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के जरिए ही हासिल होगा विकसित भारत का लक्ष्य। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 81 शिक्षकों का किया सम्मान। उत्कृष्टता और नवाचार को लेकर प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ाने के लिए शिक्षकों को किया आह्वान। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्राविधिक शिक्षा अध्यापन परीक्षा आज। राज्य के 6 जिलों में 2 पालियों में होगा परीक्षा का आयोजन। और प्रदेश की कई नदियां उफान पर, 24 जिले बाढ़ से हुए प्रभावित। मुख्यमंत्री ने वाराणसी में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण। पीड़ितों में बांटी राहत सामग्री। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर कल नई दिल्ली में उत्तर प्रदेश के 3 शिक्षकों सहित देश के 48 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया। राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित होने वाले प्रदेश के शिक्षकों में गाजियाबाद की रेणु त्रिपाठी, कौशाम्बी की शालिनी कुशवाहा और बलिया के डॉक्टर इफ्तिकार खान शामिल रहे। कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने उच्च शिक्षण संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। इस श्रेणी में बीएचयू के प्रोफेसर आशुतोष मोहन और आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर शंकर प्रसाद रथ को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के जरिए ही विकसित भारत का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।
3: आम सब देशवासी विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था के बल पर ही विकसित भारत का निर्माण संभव है। हमारे शिक्षक शिक्षा व्यवस्था में प्राणवायु का संचार करते हैं। हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हमारे देश में एक भी विद्यार्थी अच्छी शिक्षा के अवसर से वंचित न हो।
2: राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित होने पर बलिया के डॉक्टर इफ्तिकार खान ने कहा कि पुरस्कार मिलने के बाद छात्रों को और बेहतर मार्गदर्शन देने की ऊर्जा मिली है।
4: मैंने नवाचार शिक्षा पे ज्यादा बल दिया, न कि कॉपी कराने पे, और पुरस्कार मिलने से बहुत खुशी हो रही है। लेकिन साथ ही अभी कहेंगे, पुरस्कार मिलने के बाद और जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती है, क्योंकि लोगों की अपेक्षाएं बढ़ जाती है।
2: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले शिक्षकों के साथ बातचीत की। इस दौरान श्री मोदी ने कहा कि शिक्षकों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हर विद्यार्थी के भीतर का बचपन जीवंत रहे। प्रधानमंत्री ने बच्चों में अत्यधिक स्क्रीन समय पर चिंता जताई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में 81 शिक्षकों को राज्य अध्यापक पुरस्कार और मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार से सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने शिक्षकों से उत्कृष्टता और नवाचार को लेकर प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ाने का आह्वान किया।
5: जो टीचर टैलेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन को हमने जोड़ा, ये केवल ट्रिपल टी तक सीमित नहीं था। इसमें शिक्षक का सम्मान है, इसमें विद्यार्थी की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है, और इसी कार्य को ध्यान में रखकर हम लोगों ने विद्यालयों में वे संसाधन उपलब्ध करवाए जिन संसाधनों का अभाव दशकों से हमारा ये शिक्षक समुदाय महसूस करता था। आपने देखा होगा 2017 में हमारे शिक्षा मित्रों का मानदेय था मात्र 3,000 रुपये, आज मिलता है 18,000 रुपये। अनुदेशकों का मानते अब 17,000 रुपया हुआ, लेकिन साथ साथ 5,00,000 का कैशलेस की स्वास्थ्य की सुविधा भी उन्हें दी गई है।
2: राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त इन शिक्षकों को आजीवन उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में प्रतिवर्ष 4,000 किलोमीटर की निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। साथ ही इनकी सेवानिवृत्ति की सीमा भी 2 वर्ष बढ़ जाएगी। प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान निकोबार का उप राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान उप राज्यपाल डीके जोशी का स्थान लेंगे। उप राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के बाद आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि वह मानते हैं कि हर जिम्मेदारी बड़ी होती है और प्रधानमंत्री जी ने जो विश्वास उनके ऊपर जताया है वह उसे पूरा करेंगे।
6: मैं समझता हूँ कि एक हर जिम्मेदारी बड़ी होती है। अब जो प्रधानमंत्री जी का विश्वास है उसको पूरा करूँ, यही मेरी इच्छा है। हमेशा मैं एक कार्यकर्ता की तरह रहा हूँ, तो जो भी हमारे पार्टी का नेतृत्व आदेश देता है वो सिद्ध करना हमारा काम।
2: भारत और नेपाल के बचाव दल का चिली में सुरंग में बचाव अभियान जारी है। नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने बताया कि बचाव अभियान को सुगम बनाने के लिए पास के स्याफ अरुबेसी से सुरंग के प्रवेश द्वार तक एक पहुंच मार्ग का निर्माण भी चल रहा है। विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1344 हो गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR News गोरखपुर और X हैंडल AIR News _GKP पर भी उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्राविधिक शिक्षा अध्यापन परीक्षा 2025 आज दो पालियों में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा लखनऊ समेत राज्य के 6 जिलों में होगी। परीक्षा के लिए प्रयागराज में 25, मेरठ में 33, कानपुर में 28 और गोरखपुर में 44 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा को नकल विहीन और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। 19 विभिन्न विषयों के व्याख्याता पदों के लिए होने वाली परीक्षा में परीक्षार्थियों को केंद्र पर एक घंटे पहले पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में भारी बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण वर्तमान में 24 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। राज्य की कई नदियां अब भी उफान पर हैं। बदायूं, गाजीपुर और बलिया में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। फर्रुखाबाद में गंगा नदी खतरे के निशान के नजदीक पहुंच गई है। वहीं लखीमपुर खीरी और बाराबंकी में शारदा तथा अयोध्या और तुर्तीपार

0: बलिया में घाघरा नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान के पार पहुंच गया है। चित्रकूट के राजापुर में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री आज मंदाकिनी नदी से आई बाढ़ का जायजा लेने के लिए चित्रकूट जाएंगे। वहां वह बाढ़ प्रभावित लोगों से संवाद करने के बाद जरूरतमंद परिवार को राहत सामग्री वितरित करेंगे। मुख्यमंत्री ने कल वाराणसी में वरुणा नदी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ राहत शिविर में पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की और राहत सामग्री बांटी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की सरकार इस आपदा में पीड़ितों के साथ है। उन्होंने कहा कि सभी संवेदनशील क्षेत्रों में प्रशासन की ओर से राहत कार्य जारी है। बारिश और बाढ़ के कारण जनहानि, पशुहानि और मकानों को हुई क्षति का आकलन कर मुआवजे का वितरण किया जा रहा है।
1: आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश

0: आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर मैं स्वयं यहाँ पर आया हूँ वाराणसी में इस क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए। यहाँ पर बचाव के लिए 48 नाव एनडीआरएफ पीएसी और जल पुलिस की टीम भी 24 घंटे उन क्षेत्रों में सक्रिय की गई है। बाढ़ आएगी तो बीमारी भी आएगी, उसके बचाव के लिए मेडिकल के शिविर लगाए जा रहे हैं। जिनके पास आयुष्मान के कार्ड नहीं है वहाँ उन्हें आयुष्मान के कार्ड भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं और फ्री में दवा भी उपलब्ध करवाई जा रही है।
1: उधर मौसम विभाग ने अगले चार दिनों तक प्रदेश के पूर्वी हिस्से और आगामी दो दिनों में पश्चिमी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट जून 2026 के अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषय की पुनर्परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। अंग्रेजी की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक होगी। वाणिज्य की परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक होगी। समाजशास्त्र की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक होगी। इन तीन विषयों की परीक्षा पेपर में कुछ गलतियों की शिकायतों के बाद दोबारा आयोजित की जा रही है। मिर्जापुर जिले के अहरौरा थाना क्षेत्र के भगवती देई पहाड़ी में कल स्टोन क्रशर में ब्लास्ट के दौरान एक कमरा ढह गया जिसमें दबकर चार मजदूरों की मौत हो गई। मरने वाले सभी चार मजदूर सोनभद्र जिले के रहने वाले थे। वहां के जिलाधिकारी ने दुर्घटना के कारण की जानकारी के लिए सुरक्षा मानकों की जांच के निर्देश दिए हैं। उधर कौशाम्बी जिले के महेवा घाट थाना क्षेत्र के घोगपुर गांव में कल यमुना नदी में डूबने से तीन बच्चों की मौत हो जाने की खबर है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से तीनों बच्चों के शव बरामद कर लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस घटना का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता के निर्देश दिए हैं। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रदेश के 5 शिक्षकों सहित देश के 69 शिक्षकों को किया सम्मानित। कहा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के जरिए ही हासिल होगा विकसित भारत का लक्ष्य। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 81 शिक्षकों का किया सम्मान। उत्कृष्टता और नवाचार को लेकर प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ाने के लिए शिक्षकों का किया आह्वान। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्राविधिक शिक्षा अध्यापन परीक्षा आज। राज्य के 6 जिलों में 2 पालियों में होगी परीक्षा का आयोजन। और प्रदेश की कई नदियां उफान पर, 24 जिले बाढ़ से हुए प्रभावित। मुख्यमंत्री ने वाराणसी में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण। पीड़ितों में बांटी राहत सामग्री। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।

FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 7:31 हुए हैं। आपसे थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम ब्रज माधुरी।

0: कार्यक्रम ब्रजमाधुरी में हमारे सेवन श्रोतान को खूब खूब स्वागत और खूब खूब बधाई। भैया बधाई काहे की, आपको तो पता ही है कि ब्रजमंडल में इस समय जो उत्साह है, जो उमंग है, वो काहे को है, वो है कृष्ण कन्हैया के आवन को। उनके जन्मोत्सव की बधाई बज रही है चारों तरफ, और जन्मे हैं कृष्ण मथुरा में और गूंजे हैं नगाड़े गोकुल में, है ना। एक भजन में भी कहे हैं सब गाय के, जुलम कर डारे री या कारी कामरवारे ने, मथुरा में जाने जन्म लियो गोकुल में बजे नगाड़े री या कारी कामरवारे ने। तो या कारी कामरवारे ने तो भैया सब पर अपने जादू चलाए रखो है, सब जाने हैं, और उमंग उत्साह की कोई कमी ना है। जहाँ जैसे मथुरा में खूब जोर से जन्माष्टमी को आयोजन भयो, लाला को जन्म भयो, हम सब बाकी इंतजार कर रहे, उसके बाद आनंद की प्रतीक्षा की घड़ी जब बीती तो आनंद के बाद एक और आनंद प्राप्त भयो श्री कृष्ण के रूप में। और यही आनंद कैसे दुन दूनों चौगनों फलेगा फूलेगा हमारे ब्रजमंडल में, वह तो हम देखेंगे ही। और आनंद की बेला में जब जुड़ जाए हैं हमारे वो स्थान जहाँ पे कहें कि अनवरत भीड़ चल रही है, और दर्शन की एक आकांक्षा के साथ सब श्रद्धालु पहुंचे हैं, और आनंद लेवे की आकांक्षा मन में हुए है कि जे उत्साह और जे आनंद को हम भी भोग सकें, आनंद ले सकें, प्राप्त कर सकें। तो गोकुल में कहा हाल रहे, कैसे प्रकार से का प्रकार से नंदोत्सव को आयोजन वहाँ, तो हम सुने जा रेडियो रिपोर्ट के जरिए और खुद को वहाँ पहुँचाए लेवें, आनंद में निमग्न कर देवें। तो आज के कार्यक्रम में आपको सबसे पहले सुनवा रहे हैं गोकुल में आयोजित नंदोत्सव 2026 की जे रेडियो रिपोर्ट, वाचन स्वर अनुराग पांडे को है।
1: दिनांक 5 सितंबर 2026 को गोकुल में नंदराय जी की पौर पे नंदोत्सव का पर्व पूरे उत्साह उमंग और भक्तिमय हर्षोल्लास के साथ मनाया गयो। शीघ्र गोकुल के ठाकुर द्वारे में धूम रही या झूलना उत्सव की दूर दूर ते पधारे श्रद्धालुओं ने नंद चौक में मंदिर श्री नवनीत प्रिया जी में, मौनी बाबा आश्रम में, मंदिर श्री गोकुलनाथ जी में और नंद बाबा मंदिर में पहुँच के और ब्रज के लाला को अनुपम दर्शन पाए के स्वयं को धन्य कियो। क्या शुभ नाम है आपका?
2: मेरा नाम रमेश चंद है।
1: रमेश जी कहाँ से आगमन हुआ है आपका?
2: ये बाद गांव से आए, जमुना पार से।
1: क्या कहना चाहेंगे नंदोत्सव को लेकर, इस मंदिर के विषय में क्या बताना चाहेंगे?
2: ये राजा ठाकुर जी का मंदिर है, मशहूर है, 550 साल हो गई इसको, 50 साल से तो हम देख रहे हैं। जमुना के उस पार चंदन का बगीचा था इनका, तो आप तो जानते ही हैं कितने आक्रमण हुए हैं, औरंगजेब ने एक बार तो वो सारा कटवा दिया। ये सर हमने आंखों देखा नहीं, बल ये बताते हैं कि वो भोले का मंदिर था, माँ उचलेश्वर महादेव कृष्ण भगवान जब आए या वो भोले बाबा दर्शन करने आए।
1: जो आपके परिवार के लोग हैं वो भी यहाँ पर आते रहे टाइम
2: टाइम पर आते रहे, दर पीढ़ी दर पीढ़ी। हमारी बिरादरी से अटैच है ना राजा ठाकुर के नाम से, तो हम तो सर आते ही आते।

गोकुल के सभी ठाकुर द्वारिन में और गलियन में जय हल्ला जय जय घोष हतो। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीनी पाल की। और बधाई गीत गाए जा रहे हते।

0: आज के आनंद की जय, गुरुदेव भगवान की जय।
1: मंत्री श्री नवनीत प्रिया जी में लाला के नंदोत्सव की तैयारी पिछले 3 दिनांते आरंभ है गई हती। झूलनोत्सव पे जानकारी देते आप मंदिर प्रबंधक भीकू भाई।
2: सबों को जय श्री कृष्णा। आज नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 3 दिन पहले से पंचमी से भट्टी पूजा हो जाती है, छठी होती है, सप्तमी अष्टमी, तो उस तरह से पूरा गांव उस समय यशोदा जी के पास आ गए और कहे कि भाई जन्मोत्सव मनाओ। तो विविध प्रकार से यशोदा जी ने, ठाकुर जी प्रसन्न मुद्रा में झूला में विराज रहे हैं और गोपियाँ उनके आगे गायन कर रही हैं, और जो पुरुष वर्ग है जो ग्वाल वाल कहे जाते हैं तो उनके पास जो द्रव्य दही था वो एक दूसरे के परस्पर मुख पर लिपटा रहे हैं और छांट रहे हैं कि आज के दिन गोकुल में छुट्टी थी, सब अपना काम भूल गए थे, सब नंद बाबा के दरवाजे पर खड़े हैं, एक टक उस ब्रह्म को निहार रहे हैं। हम आप सब भाग्यशाली हैं कि ऐसे दर्शन श्री कृष्ण हमको और आपको दे रहे हैं। जैसे वर्णन मिलता है कि सूर्य चंद्रमा ने अपनी गति रोक दी, क्योंकि ब्रजवासी तो पहुँच गए थे, जब देवताओं में हलचल हुई क्या अरे ऐसा नंद महोत्सव यशोदा के यहाँ नंद के घर में हो रहा है, तो सुर विमान थके, उन देवताओं के विमान गोकुल के ऊपर आकर थक गए, खड़े रह गए, और सूर्य चंद्र अपनी गति भूल गए। जब पूरा वर्ष निकल गया तो एक गोपी ने कहा, अरे यशोदा पूरा पंचांग बदल गया, आज तो छठ है, परसों लाला साल भर का हो जाएगा, इसलिए हमारे यहाँ अष्टमी से पहले सप्तमी को भगवान की छठी पूजती है। अपने लौकिक व्यवहार में बच्चे की छठी छठे दिन पूजती है, परंतु यहाँ श्री कृष्ण की छठी उनके जन्म से पहले पूजी है। उसका हेतु, उसका कारण ये है कि पूरे वर्ष पर्यंत नंद महोत्सव रहा, किसी को शारीरिक दैहिक आपदा या कृति हुई नहीं, दे ऑल वर एक्टिव टू द श्री कृष्ण। सब भूल गए, सूर्य चंद्र अपनी गति भूल गए थे, न रात हुई न दिन हुआ, अलौकिक समय था उस समय पर, और देवताएं विमान में एकत्र होकर के दृष्टि कर रहे हैं और कह रहे हैं, अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजो कसाम यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन। इन ब्रजवासियों के भाग्य कैसे हैं कि कृष्ण को पल्ली में झुला रहे हैं, वो देव अभिमान है उनको, वो देवताएं पुरुषों में कैसे आएंगे। तो फिर विविध प्रकार से स्वरूप अपना रूप बदल के ब्रजवासियों और श्रद्धालुओं के स्वरूप में उपस्थित हैं। आज की मानना ये है कि जितने भी यहाँ आप जो स्त्री पुरुष देख रहे हैं ये सब गोपी ग्वाल और देव रूप में यहाँ पर आए। आज का दिन बहुत ही धन्य है, हम आप सब भगवान कृपा करें बार बार आप आते रहें। श्री कृष्ण के जन्म हेवे के पश्चात गोकुल के समस्त ब्रजवासी

0: नंद बाबा के घर बधाई देवे गए तो उनके पास जो सामग्री वा समय में दही दूध मेवा मिष्ठान हते तो वो उत्साहित रहकर लुटान लगे और नंद बाबा ने सबको समाधान करो तो ऐसो नंद महोत्सव करो नंद बाबा ने गोकुल में कि कुबेर छाती फट गई। जो धनपति कुबेर हैं वो देख के कहने लगे कि इतना द्रव्य नंद बाबा के पास कहाँ से आया। तो कहते हैं कि यह धन धर्म ही ते पायो नीको राख जसोदा मैया नारायण घर आयो। तो कुबेर कहता है कि तुमने ऐसा दान धर्म किया कि जो परम धन तुम्हारे झूले में झूल रहा है। तो ये नवनीत प्रिया जी का मंदिर है, बल्लभ संप्रदाय नाथद्वारा मंदिर से संबद्ध है। दधि कांदो के दधि एक शुभ प्रतीक है और उस समय ब्रजवासी अपनी जो मटकियों में भर भर के दधि लाई तो एक गोपी जन जो पूरन मासी नाम से विख्यात थी उन्होंने कहा कि श्वेत वस्तु नहीं आएगी तो उसमें केसर मिश्रित की गई। जब ये उत्साह चारों तरफ 84 कोस में हुआ कि नंद बाबा के यहाँ नंद महोत्सव हो रहा है तो जब पूरा होने को आया तो कहने लगे कि लाला की छीछी है लाला की छीछी है। तो लोगों ने श्रद्धा पूर्वक उस दही को दधि कांदे को अपने सर पर चढ़ाया पूरा प्राण में मिलता है। तो आज का दिन गोकुल का ही है और विविध प्रकार से गोपियों ने भगवान के पलना को सजाया रत्न जड़ित और नंद यशोदा ने समस्त जो उनके जो उस समय ब्रजवासी थे उन सबको सम्मानित किया और सब बधाई दे देकर कृतकृत्य हो गए। यशोदोत्संग लालिता श्री कृष्ण जो संसार को अपनी गोद में लेके बैठे हुए हैं ऐसे ब्रह्म यशोदा की गोदी में बैठे हुए और बार बार माँ उनके ऊपर उनकी नजर उतार रही है। गोपी जन इतनी सुरक्षा कर रही है कि दूर रहो दूर रहो दूर रहो और आज गोपियों का यहाँ वर्चस्व कि नहीं हम जैसे कि आपको इस तरह से नियम पालने हैं और लाला के दर्शन करने हैं। तो लाला प्रसन्न मुद्रा में झूला में झूल रहे हैं और ब्रजवासी सब भूल गए सूर्य चंद्रमा अपनी गति भूल गए और एक दिन एक वर्ष के समान हो गया। यहाँ
1: झांझ मजीरा ढोल पे होए करे हैं प्रातः काल ते ही समाज गायन की परंपरा को निर्वाहन। लड्डू जलेबा पेठा माखन मिश्री और फलन को लाला पे उसार के श्रद्धालुन पे लुटवाए जाए है। कहाँ से आना हुआ है?
2: एमपी।
1: एमपी से? एमपी में कहाँ से आए हैं?
2: जिला भिंड।
1: भिंड से आए जो ग्वालियर के पास पड़ता है।
2: हाँ।
1: कैसा लग रहा है यहाँ पर? पहले भी आए क्या? पहली
2: 44 साल है महीना
1: 44 साल से यहाँ
2: साल से
1: नंदोत्सव पर।
3: बहुत बढ़िया
4: हम भक्ति में हो जाते हैं सब कुछ भूल के एकदम बस राधे राधे राधे राधे राधे।
1: आनंद आता है यहाँ पर
4: अगर कहीं स्वर्ग है तो बस यही है।
1: श्रद्धालु ने मंदिर प्रांगण में यह प्रसादी को पाए के आनंद लियो और खूब झूमे और नाचे।

0: यह अवसर पे श्रद्धालुन पे दधी कांदो लुटायो गयो। हल्दी केसर दही ते तैयार दधी कांदो या परंपरा पे जानकारी देते आप मंदिर प्रबंधक भीखू भाई।
1: दधी कांदो के दधी एक शुभ प्रतीक है और उस समय ब्रजवासी अपनी जो मटकियों में भर भर के दधी लाई तो एक गोपी जन जो पूरनमासी नाम से विख्यात थी उन्होंने कहा कि श्वेत वस्तु नहीं आएगी तो उसमें केसर मिश्रित की गई। जब ये उत्साह चारों तरफ 84 कोस में हुआ कि नंद बाबा के यहाँ नंद महोत्सव हो रहा है तो जब पूरा होने को आया तो कहने लगे कि लाला की छीछी है, लाला की छीछी है, तो लोगों ने श्रद्धा पूर्वक उस दही को दधी कांदे को अपने सर पर चढ़ाया। पूरा प्राण में मिलता है तो आज का दिन गोकुल का ही है और विविध प्रकार से गोपियों ने भगवान के पलना को सजाया रत्न जड़ित और नंद यशोदा ने समस्त जो उनके जो समय ब्रजवासी थे उन सबको सम्मानित किया। और
0: नंदोत्सव पे श्रद्धालुओं ने अपने भाव को कछु जातरिया धरो। नंदोत्सव का लेने आनंद दूर दूर से श्रद्धालु ब्रज में पधारते हैं। हमारे साथ में ऐसी श्रद्धालु, आप कहाँ से आई हैं?
2: राजस्थान जालौर से।
0: राजस्थान से कैसा लगता है यहाँ पर आकर?
2: अच्छा लगता है।
0: कैसा अनुभव होता है ठाकुर जी?
2: बहुत अच्छा है यहाँ, ठाकुर जी का बचपन भी थी। यहाँ पहली बार आए गोकुल। अच्छा, में पहली बार आए
0: गोकुल। अच्छा लग रहा है आपको?
2: हाँ, बहुत अच्छा।
3: नंद उत्सव में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है कान्हा जी का उत्सव यहाँ पर। और यहाँ ब्रज मंडल में सबसे ज्यादा गोकुल के अंदर जो आनंद होता है वो ब्रज मंडल में आपको कहीं नहीं देखेगा। जो जन्म होता है कान्हा जी का वो तो मथुरा के अंदर होता है और जो उत्सव मनाया जाता है कान्हा जी का जन्म का मेन उत्सव नंद उत्सव वो गोकुल में मनाया जाता है। यो कान्हा ने यहाँ पर बहुत सारी गायें दान करी थी और यहाँ गायों का और गोकुल का आनंद है। यहाँ तो राधे राधे करते रहिए और जीवन में आनंद लेती रहिए आप। लेकिन आज का जो उत्सव है वो नंद बाबा का उत्सव है, यशोदा माता का उत्सव है, क्योंकि यहाँ यशोदा माता नंद बाबा ने और यहाँ आज नंद बाबा के घर में कान्हा का उत्सव मनना है और भंडारे हो रहे हैं यहाँ।
0: यह अवसर पे जानकारी देते आप हते भरत शर्मा।
4: ब्रज में तो आनंद सबका चकाचक आनंद ही आनंद है।

0: आनंद घर आनंद भयो और जय कन्हैया लाल की, तो यहाँ तो सब आनंद लेने ही आए। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि नंद जी के आनंद भयो तो आज तो सब पब्लिक के आनंद लेवे आइए, भावना में सरोवर है वे आइए, भगवान की भक्ति प्राप्त करवे आइए, मनोकामना पूर्ण करवे के लिए आइए। और
1: सर हम ठाड़े भए हैं नवनीत प्रिया जी के यहाँ मंदिर प्रांगण में, और हम देखे कि प्रसाद की भिन्न भिन्न प्रकार की यहाँ मिठाइयाँ हैं और पर्व को लेकर तैयारी परंपरा है।
0: हाँ जी, परंपरा अभी जो नंदोत्सव जो चालू होगा में दही में हल्दी मिलाई जाएगी, और दही में हल्दी मिलाए के बाद लाला की छिछी को रूप दी हो जाएगा, और वो सबके ऊपर प्रसादी के ऊपर छींटा मारे जाएंगे, सब लोग वाक्य आनंद से अपने ऊपर ग्रहण करेंगे, वही को आनंद सब लेवे के लिए यहाँ सब दुनिया चारों तरफ से आ रही है, और वही मेन यहाँ को मुख्य आनंद है। जन्म तो मथुरा में भयो, और यहाँ को आनंद नंद उत्सव है, नंद घर आनंद भयो।
1: नंद राय जी की पौर पे नंद चौक में श्रद्धालु ने आनंद लियो, प्रस्तुत है एक झलक। हम यहाँ समय ठाड़े भए हैं गोकुल स्थित नंद चौक में, और यहाँ पे वर्षन पुरानी या परंपरा के विषय में बतियामते भाई हमारे साथ में आप हैं।
2: मेरा नाम मोनू सोनी है।
1: मोनू सोनी भैया हमारे साथ में है, भैया कहाँ परंपरा है भेजने नंदोत्सव की बताओ।
2: आप राज चौक पे खड़े हो गोकुल में, और यहाँ बहुत ही सुंदर और भव्य आयोजन होता है नंद उत्सव का, बहुत आनंद आएगा, लाखों आदमी का भीड़ रहता है। इसका तो आनंद कल से ही आता है, अष्टमी के रोज से इसका कार्यक्रम चालू हो जाता है, जन्म के उसके बाद से ही कार्यक्रम चालू हो जाता है, रात भर उमंग रहती है।
1: नंदोत्सव को ऐसो ही आनंद बरसो मौनी बाबा के आश्रम में, जहां खूब जलेवा लड्डू मिष्ठान फल दूर दूर से आए श्रद्धालुओं पे लुटाए गए।
3: यह समय हमारे हृदय में बहुत सुंदर भाव प्रकट है रहे हो, और ये तो यहां मौनी बाबा आश्रम पे श्री श्री गुरुदेव जी ने अपने द्वारा ये शुरू करायो, और यहां बड़ो आनंद आवे जब नंदोत्सव मने, और ये श्री कृष्ण जब यहाँ आए गोकुल में दे गए नंद बाबा के यहाँ, तो बाकी उपलक्ष्य में नंदोत्सव मने। जन्माष्टमी को त्यौहार तो मथुरा को है, लेकिन नंदोत्सव मुख्य रूप से गोकुल में मनाया जाए, तो वही परंपरा चली आ रही है। और यहाँ मौनी बाबा आश्रम पर भी बहुत दिन से गुरुदेव जी ने जो शुरू कराया, जब से अब तक ये परंपरा चल रही है।
4: यहाँ तो गुरुदेव की परम कृपा है।
1: कहाँ थे आगमन भयो आप?
4: आगरा से।
1: प्रत्येक वर्ष यहाँ पधारे
4: हैं। गुरुदेव के शिष्य हैं हम, जो है मौनी बाबा के शिष्य हैं। गुरुदेव ने 40 साल मौनदान किया था, यहाँ स्थापना की, और यही परंपरा चली आ रही है मौनी बाबा की।
1: स्वामी नित्यानंद स्वामी करुणानंद जी के आश्रम में गोकुल वासिन ने खूब कीर्तन भजन कर बधाई गीत गाई।

0: डॉक्टर शर्मा फिलहाल उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं, वे राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में डॉक्टर शर्मा ने कहा कि वे अपनी नई जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे।
1: जो निर्देश होगा जो भी प्रधानमंत्री जी का वो सबको स्वीकार है, और हमेशा मैं कार्यकर्ता की तरह रहा हूँ, तो जो भी हमारे पार्टी का नेतृत्व आदेश देता है वो सिद्ध करना हमारा काम है। जो प्रधानमंत्री जी का विश्वास है उसको पूरा करूँ, यही मेरी इच्छा है।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह 4 दिन की यात्रा पर कल सऊदी अरब की राजधानी रियाद पहुंचे। श्री सिंह की ये सऊदी अरब की पहली यात्रा है। वे सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्री, विदेश राज्य मंत्री और जलवायु पर्यावरण, जल तथा कृषि उप मंत्री से मुलाकात करेंगे। श्री सिंह सऊदी अरब में भारतीय मूल के लोगों, भारतीय व्यापार प्रमुखों, उद्यमियों तथा पेशेवरों से भी मिलेंगे। वे सऊदी में कार्यरत भारतीय कामगारों से भी बातचीत करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: नई दिल्ली में इस महीने की 12 और 13 तारीख को आई ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 500 से अधिक संस्थागत निवेशक, वित्त मंत्री और उद्योगपति शामिल होंगे। ये आयोजन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समानांतर होगा। सम्मेलन का उद्देश्य ब्रिक्स के 21 सदस्य देशों और साझेदार देशों में संप्रभु पूंजी का उपयोग, भरोसेमंद बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और डिजिटल क्षमता परियोजनाओं के लिए करना है। एक रिपोर्ट।
5: संप्रभु धन कोष, पेंशन कोष और परिवार कार्यालय कुल मिलाकर $1 ट्रिलियन मूल्य की संपत्ति का प्रबंधन करते हैं। सम्मेलन में सीमा पार निवेश, गैर डॉलर निपटान और भुगतान प्रणालियों पर चर्चा होगी। इसके अलावा भारत की यूपीआई भुगतान प्रणाली और ब्राजील की पिक्स भुगतान प्रणालियों को जोड़ने तथा डिजिटल मुद्राओं में कारोबार पर भी चर्चा होने की संभावना है। ये शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब ब्रिक्स देश व्यापार गतिशीलता, अमेरिकी शुल्क के दबाव और उच्च डॉलर लागत के समाधान के लिए स्वयं को अनुकूलित कर रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: छत्तीसगढ़ में जगदलपुर की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की विशेष अदालत ने झीरम घाटी में हुए माओवादी हमले के मामले में सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया है। इस मामले में कुल 11 आरोपी थे, जिनमें से एक की मृत्यु हो गई थी। अदालत ने दो महिलाओं सहित सभी 10 आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 को हत्या के प्रयास का दोषी पाया। सजा पर फैसला 16 सितम्बर को होगा। दिल्ली में नकली दवा कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि दिल्ली पुलिस की अपराध नियंत्रण शाखा ऐसी आपराधिक गतिविधियों की पहचान के लिए लगातार निगरानी कर रही है, जिससे गलत लेबल वाली और नकली दवाओं के निर्माण और वितरण को रोका जा सके।
6: केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO आपराधिक गतिविधियों से जुड़ी जानकारी मिलने पर दिल्ली पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों के साथ मिलकर काम करता है। इसी लगातार निगरानी और कार्रवाई के तहत दिल्ली अपराध शाखा ने इस साल अप्रैल में दिल्ली में बिना लाइसेंस वाली जगह से गलत लेबल वाली और खराब गुणवत्ता की रेबीज वैक्सीन जब्त की थी। पिछले महीने की 27 तारीख को एक सूचना के जरिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने सभी राज्यों के ड्रग्स कंट्रोलर से कहा कि वे अपने इंस्पेक्टर स्टाफ को अलर्ट करें।

0: और दवा के गलत लेबल वाले बैच की आवाजाही, वितरण और उपलब्धता पर कड़ी नजर रखें। डीसीजीआई ने यह भी पुष्टि की है कि संबंधित बैच का कोई भी हिस्सा किसी दूसरे देश में निर्यात नहीं किया गया था। अस्पतालों, क्लिनिकों और सरकारी हेल्थ केयर सेंटरों में दी जाने वाली वैक्सीन सिर्फ लाइसेंस वाली फार्मेसियों के जरिए ही दी जाती है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: महाराष्ट्र के मेलाघाट और पेंच बाघ अभयारण्य गिद्धों के पुनर्वास मामले में देश के सबसे सफल स्थलों के रूप में उभरे हैं। इन केंद्रों में गिद्धों को पाला गया और उनके जीवित रहने की दर उत्साहजनक रही है। एक रिपोर्ट।
2: बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS के अनुसार दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच दोनों अभयारण्यों में कुल 29 गिद्ध छोड़े गए थे। BNHS ने कहा है कि यह सफलता दर्शाती है कि गिद्धों को पर्याप्त शिकार और कम मानवीय हस्तक्षेप वाले बाघ अभयारण्यों में छोड़ना एक प्रभावी तरीका साबित हो सकता है। ये परिणाम देश में घटती गिद्ध आबादी के संरक्षण और पुनर्स्थापना के प्रयासों को महत्वपूर्ण प्रोत्साहन देते हैं। प्रार्थना के साथ माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: झारखंड सरकार के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू का दिल का दौरा पड़ने से गिरिडीह के मर्सी अस्पताल में निधन हो गया है। देर रात तबीयत खराब होने के बाद उन्हें रात करीब 2 बजे अस्पताल लाया गया, जहां सुबह करीब 4 बजे उनका निधन हो गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुदिव्य कुमार सोनू के निधन को अपनी व्यक्तिगत क्षति बताते हुए कहा कि उन्होंने अपना जीवन झारखंड की अस्मिता, अधिकार और स्वाभिमान की लड़ाई को समर्पित कर दिया। ईरान की नौसेना ने होर्मुज जल डबरू मध्य से गुजर रहे 3 तेल टैंकरों और अमरीका से जुड़े 3 जहाजों पर हमले का दावा किया है। इससे पहले अमरीका ने फारस की खाड़ी और ओमान सागर में 3 ईरानी तेल टैंकरों पर हमला किया था। महिला क्रिकेट में दुबई में T20 एशिया कप के ग्रुप ए मैच में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है। पाकिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 18 ओवर और 1 गेंद में महज 55 रन बनाकर आउट हो गई। ये T20 में उसका अब तक का सबसे कम स्कोर है। भारत ने 8 ओवर 4 गेंद में ये लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत की ओर से स्पिनर श्रीचरणी और प्रेमा रावत ने 3-3 जबकि दीप्ति शर्मा ने 2 विकेट हासिल किए। ये मैच हरमनप्रीत का बतौर कप्तान 150वां T20 मैच था। वे पुरुष या महिला क्रिकेट में ये उपलब्धि हासिल करने वाली पहली कप्तान हैं। बैडमिंटन में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी तीसरी बार चाइना मास्टर्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में उनका मुकाबला आज चीन के हेजीटिंग और रेन जियांग यू की जोड़ी से होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
4: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज में दिए गए वक्तव्य को प्रमुखता दी है। युवा ही विकसित भारत बनाएंगे, मुझे पूरा भरोसा। दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री की युवाओं को सलाह को सुर्खी बनाया है, बड़े सपने देखें और पूरा करने में जान लगा दें। जनसत्ता ने खतरा शीर्षक से IIT मंडी के शोध को प्रकाशित किया है। हिमाचल में आकार में तेजी से बढ़ रही 9 हिमनद झीलों की पहचान हुई। एक दशक में हिमालय क्षेत्र में हिमनद झीलें करीब 30% बढ़ी। 457 साल बाद बदलेगा दुनिया का नक्शा, लिखता है राजस्थान पत्रिका। संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव पारित, भारत सहित 164 देशों का इक्वल अर्थ मानचित्र के पक्ष में वोट। वर्ष 1569 में बने मर्केटर प्रोजेक्शन की जगह वर्ष 2018 के इक्वल अर्थ प्रोजेक्शन को बढ़ावा देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। अमर उजाला ने न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर को प्रमुखता दी है। 1200 बेकाबू AI एजेंट्स ने इंटरनेट पर बना ली खुद की सरकार। पकड़े जाने के डर से मिटाए सबूत, ओपन AI और एंथ्रोपिक ने रोकी सबसे ताकतवर मॉडल की ट्रेनिंग। नवभारत टाइम्स ने परवरिश पृष्ठ पर AI की बढ़ती दखलंदाजी को प्रमुखता दी है। पेरेंट्स की जगह तो नहीं ले रहा AI, मम्मी पापा नहीं समझ पा रहे बच्चों को चैटबॉट से क्या हो रहे हैं नुकसान। पत्र ने बचाने के रास्ते भी दिए हैं। चैट हिस्ट्री जरूर देखें, अपना ज्यादा से ज्यादा समय दें, AI को दोस्त बनने से रोकें और हर जवाब तुरंत मत लेने दें।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली विश्वविद्यालय

0: विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील, भारतीय युवा परामर्श, लेखा, वित्त और कानून से जुड़ी ऐसी संस्थाओं का निर्माण करें जो वैश्विक स्तर की हों। भाजपा के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। एनआईए की विशेष अदालत ने 2013 में छत्तीसगढ़ के झीरम घाटी हत्याकांड में 10 माओवादियों को दोषी ठहराया। नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान आए ब्रिक्स सम्मेलन में 500 से अधिक संस्थागत निवेशक, वित्त मंत्री और उद्योगपति शामिल होंगे। और क्रिकेट में भारत ने दुबई में महिला टी20 एशिया कप मैच में पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Nishit Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi addresses centenary celebrations of Shri Ram College of Commerce at Delhi University, calls upon young Indians to build global consulting, accounting, financial and legal firms capable of leading the world. BJP Rajya Sabha MP Dinesh Sharma appointed Lieutenant Governor of Andaman and Nicobar Islands. NIA Special Court convicts 10 Maoists in 2013 Chhattisgarh Jhiram Valley Massacre case. IBRICS Summit to be held in New Delhi. On the sidelines of BRICS Summit on the 12th and 13th of this month, over 500 institutional investors, finance ministers and business leaders to participate in the two-day event. And in cricket, India beat Pakistan by 7 wickets in the Women's T20 Asia Cup match in Dubai. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has urged young Indians to dream even bigger than previous generations and build global consulting, accounting, financial and legal firms capable of leading the world. Mr. Modi said, today Indians are leading the top companies of the world, so why can't companies built by Indians lead the world? Prime Minister was addressing the centenary celebrations of Shri Ram College of Commerce SRCC at Delhi University yesterday evening.
2: कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें?
1: Mr. Modi said India's 7.8% quarterly growth amid global uncertainty reflects its economic strength. He said India has come a long way from policy paralysis to policy dynamism. He said the world is watching India become the fastest growing major economy. Mr. Modi shared that smartphone exports now exceed 2.5 lakh crore rupees, while domestic defense production has hit an all-time high of nearly 2 lakh crore rupees.
2: Deshi defense manufacturing अपने ऑल टाइम हाई पर है। आज भारत करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपए का डिफेंस प्रोडक्शन कर रहा है। 2013-14 में हम 600-700 करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट करते थे। आज ये आंकड़ा करीब करीब 40,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है।
1: The Prime Minister said the SRCC has given generations of students the opportunity to learn, grow and make a difference over the years. Mr. Modi said the college has distinguished itself over the years, making a mark for academic excellence. He stated that former Finance Minister Arun Jaitley was an alumnus of SRCC. He said SRCC alumni has left their mark in every sector from arts to politics. Mr. Modi added that together 140 crore Indians will make India both Viksit and Atmanirbhar.
2: हम 140 करोड़ भारतीय मिलकर अपने देश को विकसित भी बनाएंगे, आत्मनिर्भर भी बनाएंगे। आने वाले समय में भारत मैन्युफैक्चरिंग का हब होगा। आने वाले समय में रिसर्च एंड इनोवेशन का हब हिंदुस्तान होगा। भारत एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की सुपर पावर होगा।
1: The Prime Minister highlighted the profound significance of this 100-year milestone for both the college and the nation's education sector and paid tribute to founder Shri Ram and bowed to his enduring vision. Education Minister Prahlad Joshi in his speech praised SRCC for maintaining its high standard over the years. He said today India is the third largest startup ecosystem under the leadership of Prime Minister Modi. He said that there is a requirement of skilled human resources

0: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: प्रस्तुत है चित्रपट संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। आइए सुनते हैं कार्यक्रम गीतांजलि का ये पहला गीत, प्रीति उत्तम सिंह रविंद्र साठे की आवाज में, फिल्म युग पुरुष से। इस गीत को लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीत है राजेश रोशन का।

पेश है कार्यक्रम का ये अगला गीत फिल्म याराना से। गीत को लिखा है अनजान ने, संगीत राजेश रोशन का और आवाज किशोर कुमार की।

0: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
1: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
2: आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि, और आइए सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर, आशा भोसले और साथियों की आवाजों में फिल्म मैं तुलसी तेरे आंगन की से। इस गीत को लिखा है अमीर खुसरो ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों, लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बन जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

जॉनी मेरा नाम। इस फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में। गीत को लिखा था इंदिवर ने, संगीत था कल्याण जी आनंद जी का। आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण के स्वर में आपने सुना कुर्बान फिल्म का ये गीत। इस गीत को लिखा था समीर ने, संगीत था आनंद मिलिंद का। और इसी गीत के साथ चित्रपट संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि अभी ही पर समाप्त हुआ। FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 9 बजे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। आज के इस कार्यक्रम की कलाकार हैं अंबिका मलिक। आइए सुनते हैं इनके स्वर में ये कुछ रचनाएं।

अंबिका मलिक की आवाज़ में आपने सुने आज कुछ भजन। इसी के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 9:15 होने वाले हैं। आपसे थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे सामयिक चर्चा, जिसे हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं।

0: सामयिक चर्चा। सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे, प्रदेश में इन्फ्लुएंजा ए यानी H1N1 के बढ़ते मामलों के बीच इस संक्रामक बीमारी से बचाव और लखनऊ के अस्पतालों में की गई व्यवस्थाओं के बारे में लखनऊ जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर NB सिंह से खास बातचीत। वार्ताकार हैं राघवेंद्र त्रिपाठी।
1: लखनऊ में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों के साथ अन्य संक्रामक बीमारियों को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों के विषय में बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर NB सिंह सर। सर, आकाशवाणी लखनऊ में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद आप।
1: सर, जनपद में स्वाइन फ्लू के मामले बढ़ते जा रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कुछ दिनों पहले ही इसको लेकर व्यापक दिशा निर्देश जारी किए थे। इसी संबंध में जो मामले बढ़ रहे हैं उसमें सरकारी अस्पतालों में जांच, उपचार और दवाओं को लेकर के क्या व्यवस्था की गई?
2: पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्वाइन फ्लू है क्या। ये कॉमन फ्लू इन्फ्लुएंजा बोलते हैं। इस इन्फ्लुएंजा ए टाइप इसका कॉजेटिव वायरस है, जो RNA वायरस। ये 2009 में इसको वायरस का नाम स्वाइन फ्लू पड़ा। पहले इसको RNA इन्फ्लुएंजा ए वायरस बोला जाता था। इसका स्ट्रेन H1N1 है। इस समय 2009 के बाद से ये वायरस पैंडेमिक हो गया है। ये वायरस हमेशा इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, लेकिन हर आदमी को इससे घबराने या चिंता करने की बात बिल्कुल भी नहीं है। ये जो बुजुर्ग हैं या 5 साल से छोटे बच्चे हैं या जिनको गंभीर बीमारियों से पीड़ित या HIV इन्फेक्शन है या लंबे समय से कॉर्टिकोस्टेरॉइड पे ट्रीटमेंट वो चल रहे हैं या ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुए हैं, किन्हीं भी कारणों से उनकी इम्यूनिटी लो है, उन लोगों को विशेष प्रिकॉशन एहतियात लेने की जरूरत है। ऐसे लोगों को सलाह मैं ये देना चाहूँगा जो अति गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं या छोटे बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, उनको अपनी जो पहले से दवाएं चल रही हैं उन दवाओं को यथावत अपने डॉक्टर की सलाह पे लेते रहेंगे। और अगर उनको सर्दी जुखाम जैसा कुछ लक्षण लग रहा है तो अपने उन्हीं डॉक्टर से या किसी सरकारी अस्पताल में चिकित्सक से सलाह लेंगे। सरकारी

0: अस्पतालों में इनकी जांचें और दवाएं बिल्कुल पूरी तरह से निःशुल्क हैं। लखनऊ में 10 जिला स्तरीय चिकित्सालय हैं और हमारी CSCs हैं 20, वहाँ पे इनकी जांच की और दवाओं की भी व्यवस्था है। तो हम अपने नगर वासियों से और जनपद वासियों से ये अपेक्षा करते हैं, सही जगह सही सलाह लें और सही उपचार करें।
1: सर, एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अगर स्वाइन फ्लू के मामलों में अचानक तेजी आती तो उसको लेकर के क्या बैकअप प्लान तैयार किया गया?
0: हमारे यहाँ लखनऊ में जनवरी से अब तक लगभग 119 मामले आए हैं, जनवरी से लेके अब तक। तो अचानक तेजी कहना उचित नहीं है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हर साल बरसात के मौसम में बैक्टीरियल, वायरल, फंगल इन्फेक्शन बढ़ते हैं, तो उसी क्रम में इन्फ्लुएंजा भी इस समय जो H1N1 है उसी रूप में है। इस समय का जो स्वाइन फ्लू या H1N1 या इन्फ्लुएंजा ए, ये तीनों नाम उसी के हैं, फैला हुआ है, एक कॉमन फ्लू जैसा ही है। इससे बिल्कुल भी घबराने या डरने की बात नहीं है। अगर इनको लक्षणों के, भारत सरकार ने दिशा निर्देश एडवाइजरी जारी की है, उसमें इस बीमारी के लक्षणों के आधार पे कैटेगराइज किया गया है, कैटेगरी ए, कैटेगरी B1, कैटेगरी B2 एंड कैटेगरी C। इसमें कैटेगरी ए एंड B1 में किसी भी तरह का कोई दवा, केवल पैरासीटामॉल एंड बी कम्प्लेक्स के अलावा कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। B2 कैटेगरी में एसल्टामीन या लेना है 75 mg या अकॉर्डिंग टू द वेट अन्य दवाओं के साथ। कैटेगरी सी में, कैटेगरी सी उनको बोला जाता है जिनको सांस की दिक्कत है, बहुत उल्टी हो रही है, ब्लड प्रेशर रिकॉर्डेबल नहीं है, बेचैनी हो रही है, ऐसे मरीजों को भर्ती किया जाता है। अभी तक हमारे लखनऊ में कोमॉर्बिड कंडीशन की वजह से ही लोग भर्ती हुए हैं, क्योंकि अगर पहले से इम्यूनिटी लो है, लोग गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, उनमें छोटा सा बीमारी या वायरस भी बहुत बड़ा मेजर एक्सीडेंट हो सकता है। तो हम अपने नगर वासियों और जनपद वासियों से उम्मीद करते हैं, विशेषकर जो श्रेणी मैंने बताया हूँ, जो रिस्क जोन में है, और उनको पहले से जो भी एहतियात या दवाएं उनकी चल रही हैं उसमें कोई लापरवाही बिल्कुल ना करें। अपने ट्रीटिंग फिजिशियन से सलाह मशविरा जरूर करें। इस समय लापरवाही खतरनाक हो सकती है। अगर हम अपने गंभीर बीमारियों से जो पीड़ित हैं दवा नियमित ले रहे हैं, जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर, किडनी प्रोफाइल, हार्ट की जांचें सब हमारा नॉर्मल है, तो H1N1 पॉजिटिव होने के बाद भी भगवान की इच्छा से सब ठीक होगा, कोई गलत अनहोनी होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है।
1: सर, जैसा कि आपने बताया कि स्वाइन फ्लू या इन्फ्लुएंजा ये फ्लू वायरस की बीमारी है, इसी से मिलती जुलती बीमारी कोरोना भी थी, क्या पुष्टि हुई है कि कोरोना के भी कुछ मरीज पाए गए हैं, या दोनों में कैसे अंतर कर सकता है?
0: जैसा मैंने अब बताया कि ये 2009 में आउटब्रेक हुआ था, उसमें बहुत तेजी से फैला था, नया वायरस था उस समय, उसी तरह से पैंडेमिक हो गया, इस समय हमारे वातावरण में रह रहा है। उसी तरह से कोरोना 2021 में आया था, उस समय भी कोरोना की दो स्ट्रेन पहले से ही पैंडेमिक थी, 3 सालों में हर साल वो कोरोना का स्ट्रेन बदला। उसी तरह इस समय भी कोरोना के कुछ स्ट्रेन हमारे इन्वायरमेंट में हैं, लेकिन इसका है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें वो वाला 2021 वाला कोरोना हो गया। तो इसमें भी प्रिकॉशन वही ही लेने हैं जो हम H1N1 के लिए ले रहे हैं, जो हम इन्फ्लुएंजा के लिए ले रहे हैं, प्रिकॉशन वही है। अभी हम प्रिकॉशन से पे हम बात करेंगे क्या करें क्या ना करें, लेकिन अभी प्रिकॉशन कोरोना भी है तो बिल्कुल चिंता करने की कोई जरूरत नहीं।
1: सर, नए और संभावित मामलों को लेकर के स्वाइन फ्लू के या कोरोना के अस्पतालों में क्या अग्रिम व्यवस्थाएं लिखी गई हैं, ऑक्सीजन की, बेड की, दवाओं की?
0: हमारे यहाँ लखनऊ में 10 जिला चिकित्सालयों में और मेडिकल कॉलेज KGMU, SGPGI, RML में बेड आरक्षित कर दिए गए हैं। कुल मिला के लखनऊ में अभी लगभग 60 बेड आरक्षित है। वहाँ पर जांच भी हो रही है और दवाएं भी हैं। हमारे जिला स्तरीय चिकित्सालयों की बात करें तो हमारे 12 बेड सिविल हॉस्पिटल श्यामा प्रसाद मुखर्जी में और 8 बेड बलरामपुर हॉस्पिटल में, 10 बेड लोक बंधु में, 6 बेड RLB में और करीब 8 बेड RSM में। तो बेड आरक्षित किए हुए हैं, लेकिन भर्ती उन्हीं को किया जाएगा जो कैटेगरी सी में आएंगे और उन्हीं मरीजों

0: का H1N1 जांच कराना। बाकी अन्य जो उससे लोअर कैटेगरी हैं उनको अन्य बीमारियों के चलते तो भर्ती हम कर सकते हैं, लेकिन H1N1 के चलते भर्ती नहीं करें।
1: सर, बारिश का मौसम है, जलभराव की भी समस्याएं कुछ हो रही हैं, इस बीच में जो है डेंगू के भी मामले बढ़ते हैं जैसे और साल की तरह साल बीते हैं, उसको लेकर क्या योजना है? और अभी सरकार ने टीके की बात की थी डेंगू की, उसकी उपलब्धता क्या है इसके बारे में?
0: बरसात के मौसम में जैसा कि हम लोग बात किए हैं अभी, मच्छर भी बहुत तेजी से फैलते हैं। जहाँ भी जल भराव रहेगा वहाँ पे मच्छर पैदा होंगे, मच्छर पैदा होंगे तो मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया फैलेगा ही फैलेगा। लेकिन हम लोग भाग्यशाली रहे हैं, पिछले वर्ष जो था उसके विगत वर्षों की तुलना में काफ़ी कम डेंगू के केसेज, जो चिकनगुनिया के केसेज हुए वहाँ पे। इस साल भी हम अभी तक डेंगू के केसेज बहुत ज़्यादा नहीं हैं, पिछले साल की तुलना में करीब करीब लगभग बराबर, थोड़ा सा 2-4 केस बढ़े हुए हैं। लेकिन डेंगू के लिए भी हम लोगों ने जिला चिकित्सालयों में बेड आरक्षित किए गए हैं, अगर कोई ऐसा गंभीर बीमारी से पीड़ित आएगा तो भर्ती किया जाएगा। तो डेंगू का भी इलाज यही है कि लोग समय से अवेयर रहें, सही जगह इलाज कराएं। लखनऊ में 10 जिला स्तरीय चिकित्सालय हैं, तो उन चिकित्सालयों का लाभ उठाएं।
1: सर, जो केंद्र सरकार ने टीके की बात की थी क्यूडेंगा डेंगू को लेकर, उसकी क्या उपलब्धता है? क्या मतलब वो लखनऊ में उपलब्ध हो गया है?
0: केंद्र सरकार ने जो डेंगू के टीके की बात किया है वो अभी पब्लिक के लिए अभी रोल आउट नहीं, रोल आउट होगा तो हम लोग जरूर लगाएं।
1: सर, लखनऊ में बड़ी संख्या में दूसरे जिलों से गंभीर मरीज आते हैं इलाज करके, ऐसे मरीजों की जो है बढ़ती हुई संख्या को देख करके अस्पतालों में जो जांच बेड या आपातकालीन सेवाओं की सुविधाएं हैं उसको लेकर क्या तैयारी की गई?
0: लखनऊ इधर अगल बगल के कम से कम 25 जिलों से मरीज आते हैं। यहाँ पर प्रदेश का राष्ट्रीय स्तर के मेडिकल संस्थान है, जैसे SGPGI में तो दूसरे प्रदेशों से भी आते हैं, KGMU में भी दूसरे प्रदेशों से भी, अपने कम से कम आधा प्रदेश KGMU में आता है, दूसरे प्रदेशों से आते हैं। उनके वो बीमारियों के हिसाब से हमारे यहाँ हॉस्पिटल जो हैं, चिकित्सालय जो हैं, सतर्क अलर्ट मोड में ट्रीटमेंट उनके यथोचित किया जाता है।
1: सर, सरकारी अस्पतालों और निजी अस्पतालों के बीच की संक्रामक रोगों की निगरानी या मरीजों की जानकारी साझा करने के लिए कोई व्यवस्था या सेटअप तैयार किया गया है?
0: हमारे यहाँ पूरे प्रदेश भर में जो भी संक्रामक रोग हैं उनके बीमारियों को एक रूपता और समन्वय और मॉनिटरिंग के लिए एक पोर्टल बनाया गया है, UDSP। जितने भी सरकारी चिकित्सालय या पैथोलॉजी हैं, किसी के यहाँ अगर संक्रामक रोगों से संबंधित कोई जांच पॉजिटिव आता है तो UDSP पोर्टल पे अपलोड करना कंपलसरी है। तो उस पे अपलोड करता है तो हम लोगों को रिपोर्ट डेली मिल जाती है कि कितने और कहाँ पर हैं।
1: डेंगू, स्वाइन फ्लू या अन्य संक्रामक बीमारियों के मामलों की निगरानी के लिए सर्विलांस सिस्टम को कितना मजबूत किया गया और संदिग्ध मामलों की सूचना विभाग तक कैसे पहुँचे?
0: इस बारे में जैसा कि मैंने बताया कि हमारे यहाँ फीवर के या संक्रामक रोगों के जितने भी बीमारियां हैं, अगर कोई उसमें पॉजिटिव आता है तो जिला स्तर पे डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस अफसर है हमारे यहाँ, और UDSP पोर्टल है, उस पे जो भी अगर कोई संक्रामक रोग से ग्रसित पाया जाता है तो उस टीम जाती है, उसको निवारक कार्रवाई की जाती है वहाँ पे।
1: सर, लखनऊ की जनता को मौसमी और संक्रामक बीमारियों के बचाव के लिए आप क्या प्रमुख सावधानियां और क्या सलाह देंगे और कैसे लक्षण होने पर उनको तैयार रहना चाहिए कि हमें अब जांच करा लेनी चाहिए? और
0: अभी सबसे पहले तो इन्फ्लुएंजा ए, H1N1 / स्वाइन फ्लू से बचाव के तरीके पे मैं अभी बात करना चाह रहा हूँ। जो हम लोग 4 साल पहले कोरोना के समय जो प्रोटोकॉल हम लोग फॉलो कर रहे थे, जैसे कफ एटिकेट, खांसते और छींकते समय मुंह पे कपड़ा लगाना, वो हमने आदत सीखा था, फिर से उसको हमें आदत में लाना है। सोशल डिस्टेंसिंग, एक हाथ का डिस्टेंस रखें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पे अगर फ्लू के सिम्टम हैं तो ना जाएं, शेक हैंड ना करें, गुनगुना चीज खाएं और पिएं। अगर फ्लू के सिम्टम हैं तो 3-4 दिन 5 दिन घर में रहें, या जो गंभीर पीड़ित लोग हैं उनसे डिस्टेंसिंग बना के रखें जिससे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन ना हो उनको। और डेंगू के लिए हम कहना चाहेंगे, हमें अपने जनपद वासियों को अपने अगल बगल घर में कहीं भी पानी इकट्ठा ना हो।

0: ना पानी इकट्ठा होगा, ना मच्छर पैदा होगा, ना तो डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया होगा। तो हम लोग सभी जनपदवासी ये प्रण कर लेंगे कि अपने घर में और घर के बाहर पानी इकट्ठा नहीं होने देंगे, इसका हम लोग पूरा प्रयास करेंगे, तो हम लोग डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया से बिल्कुल बचे रहेंगे।
1: आम जनता दोनों में जैसे अगर किसी को होता तो वो अंतर कैसे कर पाए, फ्लू के सिम्टम और डेंगू के सिम्टम, तो वो कैसे बचाव उससे करें और तुरंत जांच करा लें?
0: डेंगू के सिम्टम होंगे हाई ग्रेड फीवर होगा और जोड़ों में मसल्स में पेन होगा, रिट्रोबल्बर आंख के पीछे दर्द होगा, उसको ब्रेक बोन फीवर भी बोला जाता है, हड्डी तोड़ बुखार डेंगू को। और कॉमन फ्लू में इतना सीवियरिटी फीवर की नहीं होती है, कॉमन फ्लू में गले में खराश, हल्का

0: फीवर की नहीं होती है। कॉमन फ्लू में गले में खराश, हल्का बुखार और उल्टी मिचली भी आ सकती है, जो कि डेंगू में नहीं होगा।
1: सर, आखिर में सवाल यह है कि लखनऊ में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के स्वास्थ्य विभाग की क्या प्राथमिकताएं हैं और आगामी महीनों में जो तैयारियां हैं उसके बारे में, कुछ उपलब्धियों के बारे में?
0: अभी हमारे जो लखनऊ में, हम लोग अपने हेल्थ सिस्टम को पूरा अलर्ट मोड में रखा हुआ है। अभी H1N1, डेंगू सबके लिए हम लोगों ने एडवाइजरी जारी कर दिया गया है। हमारे यहाँ हर CSC पे डेंगू का जांच होने के लिए वहाँ पे कार्ड टेस्ट हो जाएगा, सस्पेक्ट हो जाएंगे, फिर कन्फर्मेटरी के लिए एलाइजा टेस्ट के लिए मेडिकल कॉलेज और जिला स्तरीय पे उसकी जांचें होती हैं। H1N1 के लिए हम वो लोग वहाँ पे थ्रोट स्वैब लेके EBTM से मेडिकल कॉलेज, जहाँ पे रियल टाइम PCR उसका कन्फर्मेटरी जांच है। H1N1 का रियल टाइम PCR ही कन्फर्मेटरी जांच है, वो हमारे मेडिकल कॉलेज SGPGI और रामन लोहिया में कन्फर्म होते हैं, वहाँ पे हम लोग भेजते हैं। बाकी हमारी जो डेंगू के लिए और H1N1 के लिए दवाएं हर जिला चिकित्सालयों में और हर जगह उपलब्ध।
1: आकाशवाणी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, थैंक यू।
2: सामयिक चर्चा में आज आपने सुना, प्रदेश में इन्फ्लुएंजा ए यानी H1N1 के बढ़ते मामलों के बीच इस संक्रामक बीमारी से बचाव और लखनऊ के अस्पतालों में की गई व्यवस्थाओं के बारे में लखनऊ जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर NB सिंह से खास बातचीत। वार्ताकार थे राघवेंद्र त्रिपाठी।
3: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अभी आप सुन रहे थे सामयिक चर्चा। मीडियम वेव
4: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है बच्चों का कार्यक्रम बाल गोपाल। आज के कार्यक्रम को पेश कर रही हैं फरहा खान।

0: बच्चों जय हिंद
1: जय हिंद।
2: हमारे स्टूडियो में आज आप सभी का स्वागत है और हर बार की तरह इस बार भी बाल गोपाल कार्यक्रम में आप प्यारे प्यारे बच्चों के लिए हम लेकर आए हैं नई नई बातें, जानकारियाँ और ढेर सारा मनोरंजन। बच्चों मैं हूँ आपके साथ फरहा, तो चलिए करते हैं आपसे कुछ मस्ती भरी बातें। बच्चों आज आप हमें क्या सुनाने वाले हैं?
3: दीदी आज हम आपको पोयम, कविता, गीत, चुटकुले ये सब सुनाने वाले हैं।
2: सबसे पहले कौन आएगा?
3: गुनगुन।
4: क्या सुनाओगी गुनगुन?
3: एक पोयम
4: सुनाइए।
3: गर्मी आई घर घर में है पंखा, लाए सबको पास बुलाता, पंखा मीठी नींद सुलाता, पंखा ठंडी हवा खिलाता, पंखा गर्मी दूर भगाता पंखा। दीदी एक और सुनाऊंगी मैं। डब्बू जी की तोंद बड़ी, चीटी उस पर एक चढ़ी, शोर मचाया डब्बू राम, चीटी नीचे गिरी धड़ाम, फूट गया चीटी का सर, डब्बू भाग गया डरकर।
2: बच्चों हमारे स्टूडियो में बहुत छोटी सी बच्ची आई हुई है, अपना नाम बताइए। आपका नाम क्या है?
5: लवी।
2: क्या सुनाओगी?
5: पोयम
2: सुनाइए।
5: साला ची ने केला खाया, केला खाकर मुंह फिर खाया, साला ची के लिए थला मुंह से निकला है नाम।
2: आज हमारे स्टूडियो में एक प्यारा सा बच्चा आया हुआ है, बेटा अपना नाम बताइए।
6: तनुज कुमार।
2: तनुज कुमार आज आप हमें क्या सुनाने वाले हैं?
6: देशभक्ति गीत
2: सुनाइए।

0: नहीं।
1: और अब कौन आने वाला है हमें सुनाने के लिए?
2: दीदी मैं।
1: अपना नाम बताइए।
2: दीदी मेरा नाम कृष्णा है।
1: कृष्णा क्या सुनाओगे आज आप हमें?
2: मैं चुटकुला सुनाने वाला हूँ।
1: तो बच्चों आप हंसने के लिए तैयार हैं?
3: जी दीदी।
1: सुनाइए।
2: एक माँ पहली बार अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने गई तो अध्यापक से बोली, देखिए मेरा बच्चा बहुत नाजुक है, अगर यह कोई शरारत करे तो आप इसके सामने किसी दूसरे बच्चे को पीट दे, यह डर जाएगा।
4: मस्ती तो बहुत हो गई, अब करते हैं कुछ काम की बातें।
5: बच्चों आज का दिन बेहद खास है और आज हम बात करेंगे 8 सितंबर के बारे में, यानी विश्व साक्षरता दिवस। एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि अक्षरों की पहचान केवल पढ़ना लिखना भर नहीं है, बल्कि यह एक इंसान के भीतर आत्मसम्मान, समझ और आज़ादी की लौ जलाने जैसा है। आज जब पूरी दुनिया तेजी से तकनीक, नवाचार और विकास की राह पर दौड़ रही है, तब यह सवाल पूछना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि क्या हर हाथ में वह बुनियादी ताकत है जिसे हम साक्षरता कहते हैं। तो चलिए बच्चों सबसे पहले नज़र डालते हैं इस दिन की शुरुआत कैसे हुई। साल 1965 में यूनेस्को में ईरान की राजधानी तेहरान में दुनिया भर के शिक्षा मंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित किया था। विषय था दुनिया से निरक्षरता को कैसे मिटाया जाए। इसके ठीक एक साल बाद यानी 26 अक्टूबर 1966 को यूनेस्को ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि हर साल 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 1967 में पहली बार यह दिन मनाया गया। उस समय मकसद बिल्कुल साफ था, साक्षरता को केवल एक अधिकार नहीं बल्कि मानव विकास और गरिमा का सबसे अहम औजार माना गया। आज इतने दशकों बाद भी इस दिन की प्रासंगिकता कम नहीं हुई बल्कि और बढ़ गई। बच्चों अक्सर हम मान लेते हैं कि जिसने अपना नाम लिखना सीख लिया या अखबार की सुर्खियां पढ़ ली वह साक्षर हो गया, लेकिन 21वीं सदी में साक्षरता की परिभाषा बहुत बदल चुकी है। आज साक्षरता का अर्थ है सामाजिक चेतना, यानी अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझना, स्वास्थ्य और पोषण की समझ, परिवार की सेहत, स्वच्छता और बुनियादी दबाव के बारे में जागरूक होना, और वित्तीय साक्षरता यानी बैंक खाता चलाना, बचत करना और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचना, और लास्ट है डिजिटल साक्षरता यानी आज के दौर में स्मार्टफोन केवल बातचीत का जरिया नहीं बल्कि शासन, शिक्षा और सेवाओं से जुड़ने की खिड़की है। अगर कोई तकनीकी का सही इस्तेमाल नहीं जानता तो वह आधुनिक दुनिया में पीछे छूट जाता है। जब एक व्यक्ति शिक्षित होता है तो केवल उसकी ज़िंदगी नहीं बदलती, उसके पूरे परिवार और समाज की सोच बदलती है। किसी समाज शास्त्री ने सही कहा है, यदि आप एक पुरुष को शिक्षित

करते हैं तो एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं, लेकिन जब आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो पूरी पीढ़ी को शिक्षित करते हैं। अब बात करते हैं हमारे अपने देश भारत की। आज़ादी के समय 1947 में भारत की साक्षरता दर मात्र 12 से 18% के बीच थी। आज हम 77% से आगे निकल चुके हैं। यह सफ़र आसान नहीं था। देश में प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने वाला शिक्षा का अधिकार अधिनियम, सर्व शिक्षा अभियान और अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति जैसे कदमों ने व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। इसके अलावा जो वयस्क बचपन में स्कूल जा सके उनके लिए उल्लास, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम जैसी योजनाएं चल रही हैं ताकि उम्र का कोई भी पड़ाव सीखने में बाधा ना बने। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। आज भी हमारे ग्रामीण इलाकों, दूर दराज के क्षेत्रों और हाशिए पर खड़े समुदायों में निरक्षरता एक चुनौती है। लैंगिक अंतर यानी पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर के बीच की खाई को पूरी तरह पाटना अभी बाकी है। बच्चों, साक्षरता सिर्फ सरकारों, गैर सरकारी संगठनों या यूनेस्को का काम नहीं है, यह समाज के हर नागरिक की सांझी जिम्मेदारी है। सोचिए, हमारे घरों में, दफ्तरों में काम करने वाले लोग, चाहे वे हमारा घरेलू सहायक हों, सुरक्षा गार्ड हों या रिक्शा चालक, क्या हमने कभी यह जानने की कोशिश की कि वे अपना नाम लिख पाते हैं या नहीं? क्या हम अपने व्यस्त समय में से हफ्ते का 1 घंटा निकालकर किसी एक बच्चे या वयस्क को बुनियादी अक्षर ज्ञान नहीं दे सकते? यदि हर पढ़ा लिखा नागरिक केवल एक व्यक्ति को साक्षर बनाने में संकल्प ले ले तो कोई भी समाज निरक्षरता के अंधेरे में नहीं रहेगा। तो चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं शिक्षा का अधिकार, प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी। बच्चों, आमतौर पर हम कहते हैं कि शिक्षा देना राज्य की जिम्मेदारी है, स्कूल की जिम्मेदारी है और माता-पिता का कर्तव्य है। लेकिन क्या हमने कभी इस बात पर गौर किया है कि जो अधिकार हमें मिलता है उसे सार्थक बनाना खुद हमारी भी जिम्मेदारी होती है? अधिकार कभी एक तरफा नहीं होते। जब समाज और कानून एक बच्चे को यह भरोसा देता है कि तुम्हें पढ़ने का पूरा हक है, तो उसी पल बच्चे के नन्हे कंधों पर एक स्वाभाविक दायित्व भी आ जाता है कि वह उस हक की कद्र करे, उसे पहचाने और उसका सही उपयोग करें। बच्चों, अधिकार एक दरवाजे की तरह है जिसे कानून ने खोल दिया है, लेकिन उस दरवाजे के पार कदम बढ़ाना और ज्ञान के उस रास्ते पर चलना खुद विद्यार्थी की जिम्मेदारी है। अगर सरकार मुफ्त किताबें, यूनिफॉर्म और मिड डे मील दे दे, शिक्षक क्लास में आकर पूरी निष्ठा से पढ़ाएं, लेकिन बच्चा सीखने की इच्छा ही ना रखे, तो क्या शिक्षा पूरी हो सकती है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए शिक्षा का अधिकार केवल प्राप्त करने की वस्तु नहीं है, यह एक सक्रिय सहभागिता है। बच्चे की जिम्मेदारी यहाँ से शुरू होती है कि वह इस अधिकार को केवल एक औपचारिकता न समझे, बल्कि इसे अपने जीवन को संवारने का सबसे बड़ा अवसर माने। तो बच्चों, इस अधिकार के तहत एक बच्चे के स्तर पर क्या क्या जिम्मेदारियाँ बनती हैं? बच्चों, सीखने के प्रति ईमानदारी। सिर्फ उपस्थिति दर्ज कराना काफ़ी ही नहीं है। कक्षा में ध्यान देना, गृह कार्य समय पर करना और जो समझ न आए उसे निसंकोच पूछना, यह हर बच्चे का कर्तव्य है। समय की पाबंदी और अनुशासन। सुबह समय पर उठना, बैग तैयार करना और स्कूल के नियमों का सम्मान करना। अनुशासन ही वह ढांचा है जिस पर ज्ञान की इमारत खड़ी होती है। सवालों से न डरना। शिक्षा का अधिकार आपको सवाल पूछने की आज़ादी देता है। जब तक मन में जिज्ञासा जीवित है, तब तक शिक्षा जीवित है। एक बच्चे का दायित्व है कि वह अपनी जिज्ञासा को मरने ना दे। स्कूल संपत्ति का संरक्षण। जिस डेस्क पर आप बैठते हैं, जिस नल पर पानी पीते हैं, जो किताबें पुस्तकालय से लेते हैं, वे सब देश संपत्ति है। उन्हें नुकसान ना पहुंचाना और स्वच्छ रखना भी एक विद्यार्थी का नागरिक धर्म है। शिक्षा का अधिकार केवल इसलिए नहीं मिला कि हम बड़े होकर केवल एक नौकरी पा सकें। इसका उद्देश्य है एक संवेदनशील इंसान बनना। यहाँ बच्चों की एक बड़ी जिम्मेदारी सामने आती है, ज्ञान को साझा करना।
अगर क्लास में कोई सहपाठी किसी विषय में कमजोर है, उसका मजाक उड़ाने के बजाय उसकी

0: मदद करना। समानता का व्यवहार, स्कूल में हर पृष्ठभूमि, जाति और वर्ग के बच्चे आते हैं। सबके साथ बराबरी और दोस्ती का भाव रखना। सच्चाई और नैतिकता, परीक्षा में नकल ना करना, अपनी गलतियों को स्वीकार करना और बड़ों का आदर करना, यह सब उन जिम्मेदारी का हिस्सा है जो शिक्षा के साथ आती हैं। बच्चों, आज जो बच्चे स्कूल के कमरों में बैठे हैं, वही कल के वैज्ञानिक, शिक्षक, डॉक्टर, नीति निर्माता और सजग नागरिक हैं। जब एक बच्चा अपनी पढ़ाई को गंभीरता से लेता है, तो वह केवल अपना भविष्य नहीं संवार रहा होता, बल्कि वह इस देश के लोकतंत्र और अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा होता है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा। लेकिन उस ताकत का इस्तेमाल समाज की भलाई के लिए करना उस ताकत को संभालने वाले की जिम्मेदारी है। हर बच्चे को यह एहसास होना चाहिए कि उसे जो पढ़ने का मौका मिला है, वह उसके लिए एक अनमोल अमानत है, जिसे मेहनत और लगन से तराशना उसी का काम है।
1: तो चलिए बच्चों, इसी के साथ अब हम आपको सुनवाते हैं एक वार्ता। वार्ता है आओ बच्चों जाने पर्यावरण के बारे में। वार्ताकार हैं जय सिंह।
2: बच्चों, आप सभी अपनी छुट्टियों में घूमने जरूर गए होंगे। आपने हरे भरे मैदान, खेत, पोखर, तालाब, जंगल, पार्क आदि देखे होंगे। जरूर देखे हैं ना? कभी अपनी टेरिस या छत पर से आपने चलते हुए बादल, बहती हवा, पक्षियों का बोलना, तितलियों और अन्य जीवधारियों पर कभी गौर किया है? कितने खुश होते हैं बच्चे इस प्रकृति के बीच। बच्चों, आप जानते हैं हमारी पृथ्वी लगभग गोल है और इस पृथ्वी को अनेकों प्रकार की गैसों ने चारों ओर से ढक रखा है। इसे हम पृथ्वी का सुरक्षा घेरा या आवरण भी कह सकते हैं। बच्चों, इनमें प्रमुख है ओजोन गैस। उसके निचले स्तर पर इनमें प्रमुख है ओजोन गैस। उसके निचले स्तर पर बहुत ही मिलीजुली गैसें हैं, जिनमें जिनमें प्रमुख है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ये घेरा ही हमें बहुत से खतरों से बचाता है। बच्चों, जब बड़े उल्कापिंड धरती की ओर आते हैं, तो गैसों के इसी घेरे से गुजरते समय ये घर्षण से जलने लगते हैं और टूटते तारे के समान चमकते हुए नष्ट हो जाते हैं। तो है ना पृथ्वी का मजेदार सुरक्षा आवरण? बच्चों, अब बात करें पृथ्वी के वातावरण की, यानी कि पृथ्वी पर सजीव और निर्जीव घटक प्रमुख हैं, जिन्हें जैव कहा जा सकता है। इसी तरह निर्जीव वस्तुओं से, जिनमें मृदा यानी मिट्टी, चट्टान आदि से बनता है स्थल मंडल, और स्थल यानी धरती पर उपस्थित तालाब, कुएं, झील, नदी और सागरों से बनता है जल मंडल। और बच्चों, इसी तरह अनेक गैसों और जीवनदायिनी गैस ऑक्सीजन से मिले जुले रूप से जो गैसीय आवरण बनता है, उसे कहते हैं वायुमंडल। बच्चों, इसके बाद आते हैं सभी प्रकार के पौधे और प्राणी, ये जैव घटक कहलाते हैं। वहीं अजैव घटक वे हैं जो जैविक घटकों पर नियंत्रण रखते हैं, जिनमें अकार्बनिक पदार्थ जैसे पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया जैसी गैसें, धातुएं और खनिज प्रमुख हैं। इसी तरह बच्चों, इसी तरह कार्बनिक पदार्थ जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा प्रमुख हैं, जो जीवों और पौधों के लिए जरूरी हैं और उनसे प्राप्त भी होते हैं। बच्चों, इसी तरह से भौतिक घटक जैसे सूर्य का प्रकाश, वायु, ताप, ये सभी मिलकर ही तो पृथ्वी पर जीवन का आधार, उसकी गति और निर्माण में सहायता करते हैं। जो बात हमें आज आपको बतानी है कि इस धरती पर उपस्थित जीवधारियों यानी जीवन के लिए सभी पदार्थों का एक संतुलित मेल ही एक आवरण की रचना करता है। बच्चों, सामान्य रूप से आप सभी ने पढ़ा और सुना ही है एक शब्द, पर्यावरण। अगर साधारण शब्दों में कहें तो सभी घटकों का आपस में तालमेल और संतुलन, जिसमें प्राकृतिक, भौतिक, जैव और अजैव एक ऐसा आवरण बनाते हैं जो जीवन यानी हम सभी प्राणियों के रहने यानी जीवन के और वृद्धि के लिए जरूरी है, पर्यावरण कहलाता है। भूगोल में इसे एनवायरनमेंट कहा जाता है। बच्चों, यदि कहा जाए तो पर्यावरण यानी परि और आवरण। परि का अर्थ है चारों ओर से आवरण यानी ढका हुआ या पर्दा।

से ही पर्यावरण कहते हैं, जिसका सीधा संबंध प्रकृति से है। बच्चों, हमारी भारतीय संस्कृति में पर्यावरण को हमेशा से महत्व दिया गया है। इसीलिए हमारी संस्कृति में प्राकृतिक घटकों जैसे वृक्षों, जल, अग्नि यानी ताप, वायु और नदियों को पूजनीय माना जाता रहा है। इन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। इतना ही नहीं बच्चों, इतना ही नहीं, इस धरती को भी माता का दर्जा दिया जाता है। इस प्रकार हमारी संस्कृति पर्यावरण के विभिन्न स्वरूपों या घटकों को सम्मान देती आई है। यदि सरल शब्दों में कहा जाए तो पर्यावरण का संबंध प्रकृति से है और अपने परिवेश में उपस्थित तरह तरह के जीव जंतु, पेड़ पौधे और सजीव निर्जीव वस्तुओं और जीवन देने वाली दशाओं से है। बच्चों, जब पर्यावरण के इस बंधन या संतुलन में प्राकृतिक रूप से या मानवीय प्रयासों से असंतुलन या डिसबैलेंस हो जाता है, उस स्थिति को पर्यावरण प्रदूषण कह सकते हैं। यदि वैज्ञानिक भाषा में कहा जाए तो किसी पदार्थ या ऊर्जा का पर्यावरण में प्रवेश और उसका प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति हानिकारक होना, इस प्रकार की स्थिति प्रदूषण कहलाती है। बच्चों, इस प्रकार हमने जाना कि पर्यावरण में उपस्थित सभी जैविक और भौतिक तत्वों के अपने कार्य होते हैं, जिन्हें वे प्राकृतिक नियमों के अंतर्गत खुद करते हैं और बनाए रखते हैं, तभी पर्यावरणीय संतुलन बना रह पाता है। बच्चों, दूसरी बात, पर्यावरण एक भौतिक और जैविक संकल्पना है, जिसमें वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल, जैवमंडल और अजैवमंडल शामिल है। और बच्चों, अब कुछ चर्चा करें पर्यावरण के असंतुलन की, यानी पर्यावरण प्रदूषण की। प्राकृतिक रूप से असंतुलन या प्रदूषण की स्थिति तब होती है जब तापीय ऊर्जा में असंतुलन हो, यानी तापीय ऊर्जा का स्रोत है सूर्य। हम जानते हैं कि सूर्य का प्रकाश या ताप जीवन का आधार है। इसी प्रकाश से पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं, जो प्रथम उत्पादक भी हैं, जिनसे संपूर्ण खाद्य श्रृंखला का निर्माण होता है, जो अन्य आधारित जीवों के जीवन के लिए जरूरी है। सूर्य का प्रकाश सीधा पृथ्वी तक नहीं आता, बल्कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी ओजोन परत से छनकर लगभग 8 मिनट में पृथ्वी तक आता है। ओजोन परत सूर्य के तापीय विकिरण को काफी कम कर देती है और हमें उससे हानि नहीं होती, किंतु मानवीय कार्यों और हस्तक्षेप से ओजोन परत में भी काफी कमी आने से ग्लोबल वार्मिंग का सामना करना शायद हमारी मजबूरी है। बच्चों, इसका फल ये हुआ है कि सागरों की तापीय ऊर्जा बढ़ने से विशाल ग्लेशियर पिघलने लगे, समुद्री जल की वृद्धि दर अधिक होने से समुद्र तटीय नगरों पर खतरा होने की संभावना हो गई है, वहीं अनेक प्रकार के रोगों ने हमारी चौखट पर दस्तक दी है। बच्चों, मौसमों में परिवर्तन का प्रभाव फसल चक्र पर भी, अधिक अनाज और खाद्य उत्पादन में मजबूरी ने हमें रासायनिकों के प्रयोग का अभ्यस्त बना दिया है, जिससे मृदा और जल दोनों प्रदूषित हो गए हैं। बच्चों, इसी प्रकार बढ़ते वाहनों और कारखानों ने क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैसों की वातावरण में छोड़ देने से वायु प्रदूषण आज एक चुनौती का रूप ले चुका है। बच्चों, जिससे अनेक प्रकार के श्वसन रोग, फेफड़ों और श्वास नली का कैंसर के साथ ही मानसिक चिड़चिड़ेपन की सौगात हमें दी है। बच्चों, ठीक इसी प्रकार अनेकों जहरीले खनिज पदार्थ, जहरीली गैसें और जहरीला अवशेष भूमि, वायु और जल को प्रदूषित कर रहा है। बच्चों, मानवीय क्रियाकलापों में ध्वनि प्रदूषण एक चुनौती बना है। पर्वों, मेलों, धार्मिक और सामाजिक आयोजनों पर कान को फाड़ने वाला संगीत अब शोर बन चुका है। वाहनों ने और कारखानों ने भी ध्वनि प्रदूषण को मजबूती प्रदान की है। बच्चों, इससे हमारी सुनने की शक्ति, कार्य करने की शक्ति, हृदय की गति के साथ तंत्रिका तंत्र पर भी घातक प्रभाव पड़ा है। बच्चों, इसी क्रम में नए रूप में जीवन का शत्रु है रेडियोधर्मी प्रदूषण। जब परमाणु ऊर्जा का अनियंत्रित प्रयोग होता है या विनाशकारी अस्त्र निर्माण में प्रयोग किए जाते हैं या परमाणु परीक्षण किए जाते हैं, तब एक रेडियोधर्मी पदार्थ
उत्पन्न होते।

0: होता है जो वायुमंडल में प्रवेश कर भूमि, जल और वातावरण को प्रदूषित कर देता है। इससे निकलने वाली अनेकों विकिरण किरणें आंतरिक शक्ति और अंगों को प्रभावित करती है। इसके साथ ही ये वातावरण की तापीय ऊर्जा में वृद्धि कर उसे विषाक्त कर देती है। इससे जीवों में विकलांगता, वनस्पतियों का नष्ट होना इसके परिणाम हैं। बच्चों, आज भी स्थिति कितनी घातक बनती जा रही है आप समझ सकते हो। आज का मानव प्रदूषण रूपी दैत्य के आगे मजबूर दिखाई देने लगा है। इतना ही नहीं, कंप्यूटर स्क्रीन, टीवी स्क्रीन और मोबाइल के अधिक प्रयोग से भी विभिन्न रूपों में प्रदूषण में वृद्धि हुई है। बच्चों, इन सभी से बचाव हेतु करना क्या होगा? बस कुछ छोटे छोटे उपाय जो हम कर सकते हैं, जैसे आज से और अभी से हम संकल्प करें कि अपने जन्मदिन, किसी आयोजन या पर्व पर एक पौधा अपने आसपास जरूर लगाएं और उसकी देखभाल की जिम्मेदारी लें। वृक्षों के प्रति सम्मान और उनके महत्व को समझें और दूसरों को बताएं, क्योंकि वृक्ष मृदा, जल, वायु, ध्वनि और अन्य प्रकार के प्रदूषण रोकने में सहायक हैं और हमारी प्राणवायु ऑक्सीजन के जन्मदाता भी हैं। बच्चों, इसके अलावा पॉलीथीन का प्रयोग आज से और अभी से बंद करें। इसके स्थान पर कपड़े का थैला या जैव रेशों से बने बैग का प्रयोग करें। हम प्रकृति के नजदीक आए और रासायनिक रूप से निर्मित रोज काम आने वाली वस्तुओं के स्थान पर प्राकृतिक वस्तुओं जैसे दातुन, जैविक तेल आदि का प्रयोग करें। बच्चों, जल है तो कल है, यानी जल का उचित प्रयोग करें। अनावश्यक रूप से जल की बर्बादी ना करें। यदि हो सके तो बड़ों से अनुरोध करें कि वे घर पर वर्षा जल का पुनः धरती में वापस लाने वाले संयंत्र का प्रयोग करें, यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का प्रयोग करें। बच्चों, इस प्रकार हम अपने बड़ों से आग्रह करें कि वे भी घरेलू रूप से रसायनों से बचें, कृषि रसायनों के स्थान पर जैविक नियंत्रण को अपनाएं, जल को संरक्षित करें, साथ ही वृक्षों के हित में और उनके रोपण में सहायता अवश्य करें। तो प्रदूषण मुक्ति के इस यज्ञ में एक आहुति हम भी दे सकते हैं। बच्चों, विषय इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर लगातार अभी बहुत बात की जा सकती है, किंतु अभी आप इतने बड़े नहीं हैं कि और अधिक सहयोग कर सकें। हाँ, एक और प्रयास आप कर सकते हो, वो ये कि अपने आसपास गंदगी ना होने दें, यानी सूखे कूड़े को डस्टबिन में डालें और सब्जी फल जैविक कचरे को आप अपने गार्डन, गमलों आदि में खाद के रूप में प्रयोग जरूर कर सकते हैं। है ना काम की बात? बहते हुए नलके की टैप बंद करना, तेज साउंड में म्यूजिक ना सुनना, पॉलीथीन का प्रयोग बंद करना, पौधों से दोस्ती करना, दूसरों को ये बातें बताना, अभी आप इतना ही कर देंगे तो ये भी एक अच्छा कार्य होगा। अब आप चलते चलते ये सीख जरूर याद रखना, पर्यावरण की करो सुरक्षा, यही है सबसे बड़ी तपस्या। पर्यावरण को मत पहुंचाओ नुकसान, क्योंकि ये है जीवन का अपमान।
1: प्यारे बच्चों, अभी आपने सुनी ये वार्ता। वार्ता थी आओ बच्चों जाने पर्यावरण के बारे में। वार्ताकार थे जय सिंह। और इसी के साथ अब हम आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: प्यारे बच्चों, अभी आपने ये गीत सुना और अब घड़ी इशारा कर रही है आपसे विदा लेने का और हमारे कार्यक्रम का पता बताने का। तो जाते जाते बता देते हैं कार्यक्रम का पता। हमारा पता है बाल गोपाल कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी मथुरा, पिन 281003। बच्चों जय हिंद।
1: जय हिंद।
2: अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम बाल गोपाल FM 102.2 MHz पर। यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है साहित्यिक पत्रिका भंगिमा। आलेख स्वर एवं प्रस्तुति सहयोग चंद्रिका कुमार का है। प्रस्तुतकर्ता हैं ओम प्रकाश सिंह। आइए सुने साहित्यिक पत्रिका भंगिमा।
3: साहित्यिक पत्रिका भंगिमा।
4: नमस्कार, आकाशवाणी मथुरा वृंदावन की साहित्यिक पत्रिका भंगिमा के इस विशेष अंक में आपका स्वागत है। श्रोताओं, साहित्य केवल शब्दों का संसार नहीं है, बल्कि वो अपने समय की धड़कनों को सुनने और उन्हें स्वर देने का माध्यम भी है। समाज बदलता है, परिस्थितियाँ बदलती हैं, अभिव्यक्ति के माध्यम बदलते हैं और इन्हीं परिवर्तनों के साथ साहित्य भी नए प्रश्नों, नई संवेदनाओं और नए सरोकारों को अपने भीतर समेटता चलता है। आज की भंगिमा में हम इसी बदलते साहित्यिक परिदृश्य पर विचार करेंगे। श्रोताओं, जरा एक पल ठहर कर सोचिए, हम जिस समय में जी रहे हैं वो कितना तेजी से बदल रहा है ना? सुबह से शाम तक मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, नई नई जानकारियाँ और इनके बीच हमारी जिंदगी भी लगातार बदल रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इन बदलावों की आहट साहित्य तक भी पहुँचती है? बिल्कुल पहुँचती है, क्योंकि साहित्य कोई अलग दुनिया नहीं है। वो हमारे बीच से ही जन्म लेता है। हमारी खुशियाँ, हमारे दुख, हमारी चिंताएं, हमारे सपने और कभी कभी हमारी चुप्पियाँ भी साहित्य का हिस्सा बन जाती हैं। हर दौर का अपना एक स्वर होता है। आजादी के दौर में साहित्य ने लोगों के मन में जागृति जगाई। समाज में जब गरीबी, भेदभाव और अन्याय जैसे सवाल उठे तो साहित्यकारों ने अपनी लेखनी से उन सवालों को आवाज दी। और आज का समय भी कई सवालों से भरा हुआ है। बदलते रिश्ते, भागती दौड़ती जिंदगी, तकनीक का बढ़ता प्रभाव और एक नई पीढ़ी जो अपनी बात अपने ढंग से कहना चाहती है। आज कोई डायरी में कविता लिख रहा है तो कोई मोबाइल पर

0: कोई कहानी किताब में पढ़ रहा है तो कोई उसे डिजिटल मंच पर सुन रहा है, यानी माध्यम बदल गए हैं। लेकिन क्या संवेदनाएं बदल गई हैं? शायद नहीं। आज भी प्रेम है, पीड़ा है, संघर्ष है, उम्मीद है, और जब तक ये भावनाएं हैं, साहित्य की जरूरत भी बनी रहेगी। हाँ, एक चिंता जरूर है, इस तेज रफ्तार जिंदगी में क्या हमारे पास इतना समय है कि हम ठहर कर कुछ पढ़ें, कुछ सोचें और शब्दों के भीतर छिपे भावों को महसूस करें? यही आज साहित्य के सामने एक चुनौती भी है, लेकिन दूसरी ओर ये एक अवसर भी है, क्योंकि नए माध्यमों ने साहित्य को घर घर तक पहुंचाने का रास्ता खोल दिया है। अब कोई भी युवा अपनी पहली कविता दुनिया तक पहुंचा सकता है, कोई अपनी कहानी सुन सकता है, कोई विचारों पर चर्चा कर सकता है, और शायद यहीं से साहित्य का एक नया संसार भी बन रहा है। श्रोताओं, साहित्य केवल समय के साथ चलने का नाम नहीं है, साहित्य कभी कभी समय को रोककर उससे सवाल भी करता है। वो पूछता है, हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, और इस तेज दौड़ में कहीं कुछ जरूरी पीछे तो नहीं छूट रहा? यही साहित्य की आवाज है, एक ऐसी आवाज जो कभी कविता बनकर सामने आती है, कभी कहानी बनकर, कभी गीत बनकर, और कभी एक ऐसे प्रश्न के रूप में जिसका उत्तर हमें स्वयं तलाशना पड़ता है। और समय बदलता रहेगा, पीढ़ियां बदलती रहेंगी, माध्यम बदलते रहेंगे, लेकिन जब तक इंसान के भीतर संवेदना जीवित है, तब तक साहित्य की आवाज भी जीवित रहेगी, और साहित्य अपने समय की धड़कन सुनता रहेगा। श्रोताओं, आज के दौर में हिंदी साहित्य नई पीढ़ी के बीच किस रूप में अपनी जगह बना रहा है? बदलती रुचियों, सोशल मीडिया और डिजिटल माध्यमों ने साहित्य के स्वरूप और पाठकीय संस्कृति को किस तरह प्रभावित किया है, और इन नए अवसरों के साथ हिंदी साहित्य के सामने कौन सी चुनौतियां हैं? इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों पर केंद्रित है ये विशेष रिपोर्ट, हिंदी साहित्य और नई पीढ़ी, बदलती रुचियां, नए माध्यम और नई चुनौतियां। इस विषय पर हमारे साथ अपने विचार साझा किए चर्चित लेखिका एवं संपादिका दिव्या सिन्हा ने।
1: नमस्कार दिव्या जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका, और आप एक लेखिका हैं तो अपना परिचय दीजिए।
2: शब्द उसी के, लेखनी उसी की, पर मनोदशा मेरी बता रही है, आरंभ से अंत की ओर, अंत से फिर आरंभ की ओर ला रही है, अब चेतन मन में किसका निरूपण, आत्मा को परमात्मा से मिला रही है, कौन हूँ मैं ये जानने की चाह मुझे अज्ञात से ज्ञात बना रही है। आमंत्रण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रिका जी, साथ ही कार्यक्रम सुन रहे आकाशवाणी के सभी प्रिय श्रोताओं को भी नमस्कार।
1: बहुत खूबसूरत पंक्तियों के साथ आपने अपने परिचय का आगाज किया, तो हम जानना चाहेंगे कि हिंदी साहित्य और नई पीढ़ी, बदलती रुचियां, नए माध्यम और नई चुनौतियां, इस विषय के बारे में आपसे थोड़ी सी बातचीत करना चाहेंगे। सबसे पहले इसी विषय पर मेरा पहला प्रश्न है आपसे कि आज की जो नई पीढ़ी है और हिंदी साहित्य के संबंध को आप किस रूप में देखती हैं?
2: संदीपा जी, आज की नई पीढ़ी और हिंदी साहित्य का संबंध विच्छेद नहीं हुआ है, अपितु रूपांतरण की अवस्था में है। ये संबंध पहले गुरु शिष्य जैसा था, अब मित्रवत हो गया है। पहले की पीढ़ी के लिए साहित्य आदर्श था, अनुकरणीय था। आज की पीढ़ी के लिए साहित्य संवाद है, वो प्रेमचंद से प्रश्न करती है, महादेवी वर्मा से तर्क करती है, और साहित्य को अपने माथे पर नहीं बिठाती बल्कि साथ में लेकर चलना चाहती है। इस पीढ़ी ने साहित्य को अलमारी से निकालकर मुट्ठी में रख लिया है। प्रतिलिपि, कुकू FM, YouTube पर हिंदी कहानियों की लाखों श्रोता इस बात के प्रमाण है कि संबंध टूटा नहीं है, केवल माध्यम बदला है और अधिक व्यापक हुआ है।
1: क्या खूबसूरत बात कही आपने कि नई पीढ़ी और हिंदी साहित्य, इन दोनों का जो संबंध आपने बयां किया वो वाकई काबिले तारीफ है। आप जिस स्तर पर इसको देखते हैं कि मित्रवत इन दोनों में संबंध बना है, तो वो अभी बरकरार रहे, आगे भी बरकरार रहे, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। तो इसी क्रम में मेरा दूसरा सवाल है आपसे कि नई पीढ़ी की साहित्यिक रुचियों में किस प्रकार का और नया परिवर्तन दिखाई देता है आज आपको?
2: सबसे पहली बात तो है कि आकार में परिवर्तन हो गया है। वृहद उपन्यासों के स्थान पर लघु कथा, छड़िका, हाइकू और एक अनुच्छेद की कहानियों में रुचि बढ़ी है। ये समयाभाव नहीं है, अभिव्यक्ति की एक नई लय है। विषय में परिवर्तन हुआ है।

0: साहित्य के केंद्र में राष्ट्र था, समाज थे, आदर्श था। आज के केंद्र में स्व है, मानसिक स्वास्थ्य, अवसाद, एकाकीपन, प्रेम में विफलता, करियर का द्वंद, महानगर का अकेलापन, लैंगिक समानता, ये सब नए विषय हैं। नायक में परिवर्तन हुआ है। पहले का नायक त्यागी था, महान था। आज का नायक अपूर्ण है, द्वंद्वग्रस्त है और वो टूटता भी है, पराजित भी होता है। भाषा में परिवर्तन हुआ है। तत्सम प्रधान हिंदी के स्थान पर बोलचाल की उर्दू और अंग्रेजी मिश्रित जीवंत हिंदी ने स्थान ले लिया है।
1: जो परिवर्तन आज आप देख रही हैं, परिवर्तन हालांकि सृष्टि का नियम भी है, और जब रचनाओं में परिवर्तन होने लगे, जब साहित्य में परिवर्तन होने लगे, तो हमें कुछ नया ही देखने को मिलता है, कुछ ऐसा देखने को मिलता है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती है। ऐसी ही आशा है हमारी जो नई पीढ़ी आई है उससे और हिंदी साहित्य को लेकर। इसी क्रम में एक और सवाल मेरे मन में आता है कि सोशल मीडिया जो कि आज की पीढ़ी यूज करती है, जिसके माध्यम से हम अपनी रचनाओं को भी प्रेजेंट करते हैं और बहुत सारी जानकारी हमें मिलती है, तो इस सोशल मीडिया और डिजिटल माध्यमों ने हिंदी साहित्य को किस प्रकार प्रभावित किया है, ये आप बताइए।
0: श्रुतिका जी, सबसे पहले सकारात्मक प्रभाव के बारे में बात करते हैं। तो लोकतांत्रिकरण हुआ है, प्रकाशक की दहली समाप्त हो गई है। अब कोई भी युवा सीधे पाठक से जुड़ सकता है। प्रतिभा को मंच मिलने लगे हैं। श्रव्य क्रांति आई है, जो पीढ़ी पहले पढ़ती नहीं थी वो सुनने लगी है। पॉडकास्ट और ऑडियो बुक ने हिंदी साहित्य को रसोई और यात्रा तक पहुँचा दिया है। तक्षण प्रक्रिया हुई है, लेखक को तुरंत पता चलता है कि उसकी रचना कहाँ हृदय को छू रही है। और नकारात्मक प्रभाव की बात करें अगर, तो गहनता का संकट हुआ है। 30 सेकंड में सब कुछ कहने की होड़ में चिंतन की गहराई कम हो गई है, प्रसिद्धि की लुप्ता बढ़ गई है। कई बार रचना साहित्यिक मूल्य के लिए नहीं बल्कि लाइक और फॉलोअर के लिए लिखी जाती है। साहित्यिक चोरी के मामले बढ़ गए हैं, मौलिकता का संकट भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है, ये चिंतनीय विषय भी है एक। लेकिन जो हिंदी साहित्य है और उस हिंदी साहित्य को नई पीढ़ी से जोड़ने में सबसे बड़ी चुनौतियां, जैसे आपने बताया, इसके अलावा और कौन कौन सी चुनौतियां हैं आज के दौर में?
0: हिंदी साहित्य को नई पीढ़ी से जोड़ने में सबसे बड़ी चुनौतियों में से है ध्यान का संकट। ये सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि चलचित्रों या रील्स ने युवा के मन को ध्यान की अवधि से अघटित कर दिया है। 10 पृष्ठ तक मन को टिकाए रखना काफी कठिन हो गया है। भाषा संस्कार का लोप हो गया है। विद्यालयों में केवल हिंदी परीक्षा उत्तीर्ण करने का विषय बन गई है। घरों में भी अंग्रेजी को प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। आज भी हम नई पीढ़ी को वही रचनाएं पढ़ा रहे हैं जो 40 वर्ष पूर्व पढ़ाई जाती थी। समकालीन लेखक को पाठ्यक्रम में स्थान नहीं मिल रहा है। आजीविका का भी प्रश्न उठ रहा है। युवा वर्ग व्यवहारिक है, वो पूछता है कि हिंदी पढ़ने लिखने से रोजगार मिलेगा क्या? जब तक हिंदी को रोजगार और प्रौद्योगिकी से नहीं जोड़ेंगे, आकर्षण नहीं बढ़ेगा।
1: बिल्कुल, ये बात तो है ही। जब तक हम अपने साहित्य में रोजगार नहीं ढूंढेंगे या रोजगार की प्राप्ति नहीं होगी, तो कितने भी हम साहित्य का अध्ययन कर ले, लेकिन एक न एक दिन हमें रोजगार की जरूरत पड़ेगी ही। और जब हमारा हिंदी साहित्य या कोई भी साहित्य हुआ वो रोजगार से जुड़ने लगेगा, तो साहित्य को एक नए स्तर पे हम देख पाएंगे। बहुत अच्छी अच्छी बात है आज आपने हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से व्यक्त की, और हमारे श्रोताओं ने भी उन बातों को सुना हिंदी साहित्य को लेकर, और नई पीढ़ी के संबंध में जो चुनौती आपने बताई और जो लक्ष्य हमें और ढूंढने चाहिए उनके बारे में भी आपने हमारे साथ बातचीत की। जो भी हमारे श्रोता साथी सुन रहे हैं वो भी विचार मंथन करेंगे और हिंदी साहित्य को नए स्तर पर ले जाने में अपने अपने स्तर की भूमिका निभाएंगे। आपने हमसे बातचीत की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिव्या जी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद जी।
2: और अब समय है हमारी विशेष श्रृंखला साहित्य जिनका ऋणी है का। आज की कड़ी में स्मरण दो ऐसे महान रचनाकारों का जिन्होंने हिंदी साहित्य को अपनी विशिष्ट संवेदना और सशक्त अभिव्यक्ति से समृद्ध किया। विषय है ओज और करुणा के दो शिखर, दिनकर और महादेवी। आलेख एवं स्वर है अरविंद कुमार के। सुनिए।
3: श्रोताओ, साहित्य केवल शब्दों का संसार नहीं है, वो अपने समय की धड़कनों को सुनता है, उन्हें शब्द देता है और फिर आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसी संवेदनात्मक विरासत छोड़ जाता है जिसमें युग की चेतना भी होती है और मनुष्य के अंतर्मन की आहट भी। इसीलिए कुछ रचनाकार केवल साहित्य के इतिहास का हिस्सा नहीं होते, वे स्वयं साहित्य की आत्मा बन जाते हैं। साहित्यिक पत्रिका भंगिमा की श्रृंखला साहित्य जिनका ऋणी है में आज हम स्मरण कर रहे हैं हिंदी साहित्य के दो ऐसे शिखर व्यक्तित्वों को, जिनकी काव्य धाराएं भिन्न होते हुए भी मनुष्य की गरिमा और संवेदना की एक ही भूमि से निकलती हैं। एक ओर हैं रामधारी सिंह दिनकर, जिनकी कविता में राष्ट्र का स्वाभिमान, संघर्ष की आग और अन्याय के विरुद्ध विद्रोह का स्वर है।

दूसरी ओर हैं महादेवी वर्मा, जिनके काव्य में वेदना, करुणा, विरह और आत्मानुभूति इतनी गहराई से उतरती है कि निजी पीड़ा सार्वभौम संवेदना बन जाती है। एक के यहाँ ओज है, दूसरे के यहाँ करुणा। एक की कविता बाहों में शक्ति भरती है, दूसरी की कविता आंखों में नमी और हृदय में मनुष्यता जगाती है। इसीलिए आज का विषय है ओज और करुणा के दो शिखर, दिनकर और महादेवी। श्रोताओं, रामधारी सिंह दिनकर उस समय हिंदी कविता के आकाश पर उभरे जब देश राजनीतिक पराधीनता, सामाजिक असमानता और राष्ट्रीय आत्मसम्मान की चुनौती से गुजर रहा था। दिनकर ने कविता को केवल सौंदर्य का माध्यम नहीं माना, उनके लिए कविता जीवन संघर्ष में मनुष्य के साथ खड़ी होने वाली शक्ति थी। उनके शब्दों में खेतों की मिट्टी भी है, रणभूमि की गर्जना भी, इतिहास की स्मृति भी है और भविष्य का स्वप्न भी। उनकी प्रसिद्ध पंक्ति है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यह सिर्फ एक काव्य पंक्ति नहीं है, बल्कि जनशक्ति के जागरण का उद्घोष है। दिनकर के काव्य में राष्ट्रवाद भावुक नारा नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की चेतना है। उनकी रचना ओंकार में विद्रोह की ऊर्जा दिखाई देती है, तो कुरुक्षेत्र में युद्ध और शांति के प्रश्नों पर गहरी नैतिक दृष्टि दिखाई देती है। और जब वे रश्मि रथी में कर्ण को केंद्र में रखते हैं, तब वे महाभारत के एक पात्र को नहीं, बल्कि उस मनुष्य को आवाज देते हैं जिसे जन्म, व्यवस्था और सामाजिक पूर्वाग्रहों ने उसके अधिकार से वंचित कर दिया। कर्ण के माध्यम से दिनकर का प्रश्न आज भी हमारे सामने खड़ा है, क्या मनुष्य का मूल्य उसके जन्म से तय होगा या उसके कर्म और व्यक्तित्व से? यही दिनकर की शक्ति है। वे इतिहास में जाते हैं, लेकिन वर्तमान के प्रश्न लेकर लौटते हैं। उनकी कविता में वीरता है, पर केवल शस्त्र की वीरता नहीं, वो अन्याय के सामने खड़े होने की अनैतिक वीरता भी है। इसलिए दिनकर को पढ़ना केवल जोश से भर जाना नहीं है, उन्हें पढ़ना अपने भीतर के कायरता बोध को चुनौती देना भी है। यदि दिनकर की कविता बाहर की दुनिया में परिवर्तन का आह्वान करती है, तो महादेवी वर्मा की कविता भीतर की दुनिया के उन अंधेरे कोनों में प्रवेश करती है जहां मनुष्य अपने सबसे गहरे अकेलेपन से मिलता है। महादेवी छायावाद की प्रमुख स्तंभ है, लेकिन उन्हें केवल छायावाद कवित्री कह देना उनके विशाल रचनात्मक व्यक्तित्व को सीमित कर देना होगा। उनकी कविता की वेदना पलायन नहीं है, वो अनुभूति की वो गहराई है जहां से करुणा जन्म लेती है। उनकी प्रसिद्ध काव्य पंक्ति है, मैं नीर भरी दुख की बदली। यहां दुख केवल कवित्री का निजी दुख नहीं रह जाता, वो मनुष्य की उस शाश्वत अनुभूति का प्रतीक बन जाता है जिसमें प्रेम है, प्रतीक्षा है, विछोह है और किसी अनाम सत्य की खोज भी। महादेवी की कविता में दीपक है, बादल है, रात्रि है, आंसू है, पथ है और प्रतीक्षा है, लेकिन इन प्रतीकों के पीछे एक गहरी आध्यात्मिक बेचैनी और आत्मान्वेषण सक्रिय है। उनकी रचनाओं में वेदना को दुर्बलता नहीं बनाया गया, उन्होंने पीड़ा को संवेदना की शक्ति में रूपांतरित कर दिया। और यही कारण है कि महादेवी का साहित्य केवल कविता तक सीमित नहीं रहता, उनका गद्य, विशेषकर अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं और पथ के साथी मनुष्य और समाज के उन पक्षों को सामने लाता है जिन्हें अक्सर इतिहास की मुख्य धारा अनदेखा कर देती है। उनकी पशु आधारित संस्मरणात्मक रचनाएं भी हमें बताती हैं कि करुणा मनुष्य तक सीमित नहीं है, महादेवी के लिए संवेदना जीवन दृष्टि है। उनके साहित्य में स्त्री केवल करुणा की प्रतिमा नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व, स्वतंत्रता और आत्मसम्मान के प्रति सजग व्यक्तित्व है। इस अर्थ में महादेवी का साहित्य अपने समय से आगे जाकर आज के प्रश्नों से भी संवाद करता है। दिनकर और महादेवी को पहली दृष्टि में देखें तो दोनों बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। दिनकर के यहाँ हुंकार है, महादेवी के यहाँ आह है। दिनकर के यहाँ रणभूमि है, महादेवी के यहाँ अंतर्मन का एकांत। दिनकर का स्वर पूछता है, अन्याय के विरुद्ध कब खड़े होंगे? महादेवी का स्वर पूछता है, दूसरे के दुख को कब महसूस करेंगे? लेकिन यदि हम थोड़ी गहराई में उतर कर देखें तो दोनों की मंजिल एक ही है, मनुष्य को अधिक मनुष्य बनाना,
साहित्य इन दोनों का ऋणी इसलिए नहीं है कि उन्होंने बहुत

0: लिखा। साहित्य उनका ऋणी इसलिए है कि उन्होंने जीवन को देखने की हमारी दृष्टि को व्यापक किया। दिनकर ने हमें सिखाया कि ओज केवल गर्जना नहीं, अन्याय के विरुद्ध खड़े होने का साहस है। और महादेवी ने बताया कि करुणा केवल आंसू नहीं, दूसरे के दुख को अपना मान लेने की मनुष्यता है। इसलिए दिनकर की हुंकार और महादेवी की करुणा हिंदी साहित्य की दो ऐसी अमर प्रतिध्वनियां हैं जो समय बीत जाने के बाद भी हमारे भीतर सुनाई देती रहेंगी।
1: अब प्रस्तुत है राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की ओजस्वी वाणी में उनकी कालजयी रचना एक बार फिर स्वर दो।
2: एक बार फिर स्वर दो, अब भी वाणी हीन जनों की दुनिया बहुत बड़ी है। अब भी वाणी हीन जनों की दुनिया बहुत बड़ी है। आशा की बेटियां आज भी नीड़ों में सोती हैं, सुख से नहीं, विवश उड़ने के पंख नहीं होने से, और मूक इसलिए कि उनके कंठ नहीं खुलते हैं। सोचा है यह कभी कि गूंगापन कैसी पीड़ा है, भीतर भीतर दर्द भोगना लेकिन बटा न पाना, उसे किसी से कहकर मेरे मन को चोट लगी है। बोल नहीं सकता जो उसका भी दुख कोई दुख है, कितने लोग समझते हैं भाषा उदास आंखों की। एक बार फिर स्वर दो, जो अदृश्य से निकल जन्म लेने के लिए विकल हैं, आगाही दो उन्हें यहां जीवन की कनकपुरी में। पहले दरवाजे पर भी सांपों की कमी नहीं है, आगे तो ये दुष्ट और भी बढ़ते ही जाते हैं। और दुख तो यह कि यहां पता नहीं करुणा का, डसे एक को सर्प अगर तो दस मिलकर हंसते हैं। कहो जन्म लेने वालों से सोच समझ कर आए, यहां भेड़िए गुर्राते हैं बिना किसी कारण के, या इसलिए कि हम अपना शोणित उन्हें देते हैं।
0: आइए अब सुनते हैं रामधारी सिंह दिनकर की कविता व्याल विजय का एक अंश उन्हीं के स्वर में।
2: झूमे जहर चरण के नीचे मैं उमंग में गाऊं, तान तान फन ब्याल की तुझ पर मैं बांसुरी बजाऊं। यह बांसुरी बजी माया की मुकुलतया कुंचन में, यह बांसुरी बजी माया की मुकुलतया कुंचन में, यह बांसुरी बजी अविनाशी के संवेश गहन में, अस्तित्वों के अनस्तित्व में, महाशांति के तल में, यह बांसुरी बजी शून्यासन की समाधि निश्चल में, कंपहीन तेरे समुद्र में जीवन लहर उठाऊं, तान तान फन ब्याल की तुझ पर मैं बांसुरी बजाऊं। अक्षय बट पर बजी बांसुरी गगन मगन लहराया, अक्षय बट पर बजी बांसुरी गगन मगन लहराया, दल पर विधि को लिए जलधि में नाभि कमल उग आया। जन्मी नवचेतना सिहरने लगे तत्व चल दल से, स्वर काले अब लंब भूमि निकली प्लावन के जल से, अपने आर्द्र बसन की वसुधा को फिर याद दिलाऊं, तान तान फन ब्याल कि तुझ पर मैं बांसुरी बजाऊं। फूली सृष्टिनाद बंधन पर अब तक फूल रही है, फूली सृष्टिनाद बंधन पर अब तक फूल रही है, बंसी के स्वर के धागे में धरती झूल रही है। आदि छोर पर जो स्वर फूंका पहुंचा अंत तलक है, तार तार में गूंज गीत की कण कण बीच झलक है, आलापों पर उठा जगत को भर भर पैंग झुलाऊं, तान तान फन ब्याल की तुझ पर मैं बांसुरी बजाऊं।
1: और अब समय है एक ऐसी कहानी का जो जीवन की सहज धारा में बहते रिश्तों, संवेदनाओं और अनकहे भावों को अपने साथ लेकर चलती है, कभी शांत कभी गहरी।

0: और कभी मन के किसी कोने को छूती हुई। प्रस्तुत है कहानी नर्मदा, कहानीकार अनुपमा श्रीवास्तव। सुनिए नर्मदा।
1: नदी नहीं थी तब भी, चट्टानों से टकराती बल खाती, नूपुर कणों से इन नील वादियों में मोहक संगीत रचती, उच्छृंखल उन्मुक्त सी यूं ही दौड़ती थी नर्मदा, जैसे आज सचमुच की नदी होकर सर्पिल घाटियों के इस सुरम्य बिछौने पर कल कल निनाद करती दौड़ा करती है। कहीं संगमरमर की चट्टानों को काटती हुई, तो कहीं बलुआ पत्थर की विशाल श्रृंखला को भेदती हुई, और कहीं कोयले के भीषण अवरोधों को चीरती हुई, ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से गुजरती, सघन वन प्रांतर के बक्ष पर नाचती कूदती बहने वाली इस नर्मदा ने धीर गंभीर होना सीखा ही कहाँ है। अगर सीखा होता तो रेवा क्यों कहलाती। कहने को नर्मदा आज भी नर्मदा ही है, लेकिन इस नर्मदा में और उस नर्मदा में कितना साम्य है, इस अजाने भेद को कोई अमरकंटक से आकर पूछे। सतपुड़ा, मैकल और विंध्य की अवेध्य पर्वत श्रृंखलाओं की अलभ्य सुषमा के मिलन बिंदु पर खड़ा यह अकेला अमरकंटक ही तो है जिसने नर्मदा के हर जाने अजाने सच को जाना है। नर्मदा के प्रेम को, नर्मदा की प्रतिज्ञा को, नर्मदा की प्रतीक्षा को और नर्मदा के नारी से नदी होने तक के अपूर्व प्रारब्ध को अमरकंटक ने ही तो उसके साथ जिया और भोगा है। राजा मैकल के यहाँ जन्मी थी नर्मदा। रूप रंग ऐसा कि जो देखता बस देखता रह जाता। न जाने कितने पुण्य किए थे कि प्रकृति ने अपने इतने सारे रंग इस अकेली कृति में भर दिए थे। कभी दामिनी सी चपल चंचल, तो कभी बासंती समीर सी स्नेहिल सरल। हर बार विस्मित होकर रह जाता राजकुमार शोणभद्र। आँखों में नेह की तरलता ओढ़कर कुछ देर निष्पंद निर्वाक देखता सोचता रह जाता, फिर पूछता, मैं तुम्हें कब समझ पाऊँगा नर्मदा। तब सर्प सी सुरीली लय में उठती सांसों को थामकर नर्मदा कुछ कहते कहते चुप हो जाती। अनकहे शब्दों के क्षितिज पर सिंदूरी स्तब्धता देर तक छाई रहती। कुछ सुनने की अधीरता में जहाँ तहाँ खड़े पेड़ पौधे भी रूप रस गंध भुलाकर उस स्तब्ध क्षण की माधुरी में लीन हो जाते। ठीक तभी किसी पंछी के फड़फड़ाते पंखों से एक हंसी सुदूर दिग्दिगंत को सुरभित करती बिखर बिखर जाती। पर्वतमालाओं के शिखरों को चूम चूम कर, पुष्पों की शाखाओं पर झूम झूम कर, सर्पिल घाटियों में गूंजती खनकती वो आवाज़ सीधे शोणभद्र के हृदय में उतर जाती। बड़े भोले हो तुम सोन, इतना भी नहीं जानते कि कुछ बातें बिना समझे ही समझी जा सकती हैं। शोण बस मुस्कुराकर रह जाता, आह इसी पर तो मुग्ध थी नर्मदा। हर बार अपने किसी प्रश्न या उत्तर के प्रत्युत्तर में मिलने वाली इसी मधुर मधिर मुस्कुराहट पर पता नहीं कौन सा दिन था, कौन दुर्लभ घड़ी जब नर्मदा ने शोण को देखा। अब तक दूसरों को विस्मय विमुग्ध कर देने वाली सौंदर्य गर्विता नर्मदा उस दिन स्वयं शोणभद्र के सौंदर्य की चकाचौंध से अभिभूत होकर निस्पंद खड़ी देखती रह गई। समय के क्षितिज पर जन्मा यह वही दिन था जब न पहले ने कुछ कहा न दूजी ने कुछ सुना, फिर भी सब कुछ खुल गया था उनके बीच। अमरकंटक के पावन अंक में बीता यह वही दिन था जो नर्मदा के दुखद अंत का सुखद आरंभ था। नेह के अमंद प्रवाह में सब कुछ भूलकर बहते गए दोनों, गहन से गहन अतलांत की ओर एक दूसरे का हाथ थामे एक सुखद स्वप्न को साथ साथ जीते रहे दोनों। और फिर अचानक एक दिन राजा मैकल की घोषणा ने नर्मदा के भाग्य का फैसला कर दिया। जो भी व्यक्ति एक माह के अंदर गुलबकावली का दुर्लभ पुष्प मुझे भेंट करेगा वही मेरी इस अद्वितीय कन्या नर्मदा का वर होगा। राजा का घोषणा पत्र हर तरफ चर्चा का विषय बन गया। गुलबकावली का फूल दुर्लभ अवश्य था, लेकिन नर्मदा जैसी अनन्य नारी के समक्ष वह नितांत तुच्छ था। यही सोचकर न जाने कितने उत्साही युवक राजा की शर्त को पूरा करने का निश्चय करके निकल पड़े, लेकिन शोणभद्र जैसा भाग्य किसे मिला था, उसे तो स्वयं नर्मदा ने शुभकामनाएं देकर भेजा था। जाओ शोण, नर्मदा का हृदय तो तुम जीत ही चुके हो, अब तात की कामना पूर्ण करके उनकी स्नेह निधि भी पालो, फिर हमें प्रेम की अर्गला में सदा सर्वदा के लिए बंध जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। जाओ शोण, तब तक नर्मदा तुम्हारी प्रतीक्षा करेगी। शोण चला गया। स्मृतियों के गवाक्ष से शोण को देखती प्रतीक्षा करती रही नर्मदा।

नर्मदा, कभी पादप तल में छिपकर शोर मचाते पपीहे से, तो कभी पहाड़ी शैवाल की चिकनी हरी चादर तले सोए नवजात विरवे से, हर रोज पूछती रही नर्मदा, बोलो आज मेरा शोर आएगा ना। यूं ही युगों की तरह पल पल बीतता रहा, कब तक प्रतीक्षा करती नर्मदा। धैर्य टूटने लगा, दिन दिन बढ़ती उद्विग्नता इतनी बढ़ी कि उसने निरुपाय होकर अपनी प्रिय सखी जोहिला को शोर का पता लगाने भेज दिया। जोहिला को शोर मिला भी, लेकिन शोर ऐसा मोहक, इतना मधुर होगा यह तो उसकी कल्पना में भी नहीं था। वह स्वयं भी कहाँ कम थी, अत्यंत सुरुचि से गढ़ी गई किसी निपुण कलाकार की जीवंत कृति जैसी थी नर्मदा। अकथनीय सौंदर्य से परिपूर्ण, मंत्रमुग्ध कर देने वाली, यहाँ वहाँ भटक भटक कर विचलित हो

0: बढ़ी कि उसने निरुपाय होकर अपनी प्रिय सखी जोहिला को शोण का पता लगाने भेज दिया। जोहिला को शोण मिला भी, लेकिन शोण ऐसा मोहक, इतना मधुर होगा यह तो उसकी कल्पना में भी नहीं था। वह स्वयं भी कहाँ कम थी, अत्यंत सुरुचि से गढ़ी गई किसी निपुण कलाकार की जीवंत कृति जैसी थी नर्मदा, अकथनीय सौंदर्य से परिपूर्ण, मंत्रमुग्ध कर देने वाली। यहाँ वहाँ भटक भटक कर विचलित हो चुके शोण के सम्मुख जब मुग्धा जोहिला का सौंदर्य समर्पित हुआ तो सौंदर्य का सौंदर्य में सहज ही विलय हो गया। उधर जोहिला को विलम्ब होता देखकर नर्मदा शोण की खोज में स्वयं ही चल पड़ी। नर्मदा को ज़्यादा भटकना भी नहीं पड़ा। पर्वतीय कंदराओं के मनोहारी परिवेश में शोण का अचानक ही मिल जाना अचंभित कर देने वाला सच था। आंखों पर विश्वास ही न कर पाई नर्मदा, अब सन्नसी शोण और जोहिला को देखती रह गई। उनकी संवेद हंसी की महक नुकीले तीरों की तरह उसके हृदय को चीरती चली गई। ये सच नहीं हो सकता शोण, लेकिन शोण क्या कहता, कैसे स्वीकारता अपने विश्वासघात को। वो कुछ भी नहीं बोला, उसके मौन में चीखती उसकी स्वीकारोक्ति को चुपचाप कैसे सह सकती थी नर्मदा। मृत्यु जैसे शांत ठंडे स्वर में उसने कहा, मौन क्यों खड़े हो शोण, यह तो नर्मदा की प्रकृति थी, तुम तो सदा ही मुखरते, लेकिन देखो ना, आज तुमने मौन होकर मेरी यह निधि भी मुझसे छीन ली। जानती हूँ कुछ नहीं बोलोगे तुम, फिर भी पूछती हूँ शोण, क्या एक पल के लिए भी तुम्हें मेरा विचार नहीं आया। लेकिन मैं तुम्हें दोष कैसे दे सकती हूँ शोण, प्रेम मैंने किया था तुमसे, तो फिर प्रायश्चित भी मैं करूँगी चिरकुवारी रहकर, इतना अधिकार तो मुझे है ना शोण। मौन अमरकंटक का पाषाण हृदय प्रकंपित हो गया। कोमल कलिकासी नर्मदा का प्रलयकाली साहस देखकर नर्मदा का प्रायश्चित ऐसा होगा यह कहाँ समझ पाया था कोई। बेगवती नदी सी शिखर की ओर बेसुध दौड़ती चली गई नर्मदा और पर्वत शिखर से कूदकर अपनी प्राणाहुति दे दी। जिस कुंड में नर्मदा गिरी उसमें अचानक भयानक तूफान उठा और एक मणिनी मोदन निर्मल जलराशि का अथाह प्रवाह पश्चिम की ओर बहने लगा। आत्मग्लानी से भरे शोण भद्र ने भी तत्क्षण नर्मदा की तरह अपने प्राण त्याग दिए। विश्वासघातिनी जोहिला भी आत्मशापित हुई। बहुत कम लोग जानते हैं कि नर्मदा और सोन के निकट ही एक पंकिल जलधारा आज भी बह रही है। जी हाँ, यह जोहिला के सिवाय और कौन हो सकती है।
1: अभी आप सुन रहे थे कहानी नर्मदा। कहानीकार थी अनुपमा श्रीवास्तव। साहित्यिक पत्रिका भंगिमा के आज के अंक में बस इतना ही। आपको बता दें, इस कार्यक्रम को आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र की ओर से आपकी सेवा में प्रस्तुत किया ओम प्रकाश सिंह ने। अगले अंक में आपसे पुनः भेंट होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
2: साहित्यिक पत्रिका भंगिमा।
3: अभी आप सुन रहे थे साहित्यिक पत्रिका भंगिमा। आलेख स्वर और प्रस्तुति सहयोग चंद्रिका कुमार का था। प्रस्तुतकर्ता थे ओम प्रकाश सिंह।
4: प्लीज जल्दी,
5: दूसरा कोई मैच है क्या?
4: ऐसे ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके।
5: हाँ यार, उम्र हो जाती है तो रनर तो लगता ही है,
4: पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी RBI कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं, डिफरेंटली एबल्ड है और आप बैंक नहीं जा सकते, तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर।
5: सीनियर सबसे पहले, RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: पेश है फिल्म संगीत।

किशोर कुमार की आवाज़ में मजबूर फिल्म का ये गीत आपने सुना। शब्द रचना आनंद बख्शी की थी, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने सुना लम्हे फिल्म का ये गीत। आनंद बख्शी की रचना को संगीतबद्ध किया शिवहरि ने। आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से इस समय आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का।

बेमिसाल इस फिल्म का ये गीत आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीतबद्ध किया राहुल देव वर्मन ने।

0: अनुराधा पौडवाल और उदित कुमार सानू के गए हुए सड़क फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। दिन के 11 बजे हैं। पेश है फरमाइशी फिल्म संगीत का फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। आज की प्रस्तुति चंद्रिका कुमार की है।
1: हेलो आकाशवाणी।
2: हेलो आकाशवाणी सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम को लेकर उपस्थित हूँ मैं आपके रेडियो साथी चंद्रिका कुमार। श्रोताओं, कार्यक्रम आरंभ करने से पूर्व हम बताना चाहेंगे कि जो श्रोता हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम से जुड़कर अपनी पसंद का फिल्मी नगमा सुनना चाहते हैं, वो हमें हमारे टेलीफोन नंबर 0565-2530-135 पर कॉल करके अपनी फरमाइश हम तक पहुंचा सकते हैं। कॉल रिकॉर्डिंग प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को प्रातः 10:30 पर होती है, जिसका प्रसारण रविवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 11 बजे किया जाता है। तो आइए देखते हैं हमारे पहले कॉलर कौन है। हेलो आकाशवाणी, कौन से साथी बात कर रहे हैं?
3: मैं विजय पांडे बात कर रहा हूँ। दो लाइन पहले सुना दूं।
2: जी स्वागत है।
3: हर तमन्ना आपकी ही पूरी हो जाए, सपनों की दुनिया हकीकत हो जाए, हो जाए आपका मुकद्दर कुछ इस कदर कि वोट खुलने से पहले हर दुआ आपकी कबूल हो जाए।
2: क्या बात है।
3: साहिबा को विजय पांडे का प्यार भरा नमस्कार।
2: आपको भी हमारा खूबसूरत सा नमस्कार। और इन खूबसूरत सी पंक्तियों के साथ इस कार्यक्रम में अपने फोन की शुरुआत करने के लिए बेहद शुक्रिया आपका। तो कैसे हैं आप विजय जी?
3: बहुत अच्छे हैं। जन्माष्टमी के पर्व पर आप सभी श्रोताओं को और सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा।
2: हमारी ओर से भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं इस पावन पर्व की। तो आज क्या कहना चाहेंगे श्रोताओं से इस पर्व पर?
3: जी, इस पर्व पर तो कहना चाहेंगे सभी लोग मनाते हैं कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव बड़े धूमधाम से, और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और शिक्षक दिवस हमारे लिए बहुत ही खुशी का संदेश देता है। परंपरा रही है कि शिक्षक को गुरु का दर्जा दिया गया है। शिष्य की जो परंपरा रही है वो हमारे शास्त्रों में भी गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है। गुरु का भारतीय जीवन में बहुत महत्व रहा है। राम और विश्वामित्र के विषय में कौन नहीं कहता है, चाहे गुरु संदीपन और कृष्ण का जिक्र हो, चाहे गुरु द्रोणाचार्य और पांडवों का वर्णन हो। एकलव्य ने तो गुरु द्रोणाचार्य को अपना अंगूठा काट कर गुरु दक्षिणा भेंट कर दिए।
2: बहुत खूबसूरत बात कही आपने और एक सुंदर से संदेश के लिए आपका बहुत बहुत आभार। गुरु हमारे जीवन में सर्वोपरि है, हम सभी के जीवन में, क्योंकि जन्म तो माता पिता जरूर देते हैं लेकिन जो जन्म लेने का हमारा असली मकसद है वो पूरा करते हैं हमारे गुरु। तो शिक्षक दिवस पर आपका ये संदेश, हमारे जो भी श्रोता साथी सुन रहे होंगे अपने गुरुओं को नमन करेंगे उस दिन। तो आज अपनी फरमाइश बताएं, क्या फरमाइश है आज के दिन आपकी?
3: फिल्म का नाम है गुड्डी और गीत के बोल हैं हमको मन की शक्ति देना। ये गीत हमारे हर दिल अजीज ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति के लिए समर्पित रहेगा, टेक चंद्र अग्रवाल और सभी दोस्तों के लिए।

0: हेलो आकाशवाणी, तो कौन से साथी बात कर रहे हैं आज हमारे?
1: हाँ नमस्कार मैम
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। नाम
1: जी।
0: बताइए अपना।
1: धन्यवाद मैम। हाँ रोशन देवांगन बोल रहा हूँ, बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से।
0: स्वागत है रोशन जी आपका। कैसे हैं आप और क्या करते हैं?
1: बस बढ़िया है मैम। मैं हाथ कारीगर से संबलपुरिया साड़ी बनाता हूँ मैम, कॉटन का।
0: अच्छा, और कहाँ
1: जी
0: बेचते हैं साड़ियाँ? अपना व्यापार है या किसी को बेचते हैं आप?
1: ये हम व्यापारियों के लिए काम करते हैं मैम,
0: अच्छा, कैसा चल रहा है इस
1: और
0: समय?
1: हमारा तो सब दिन चलता है काम, 12 महीना चलता है काम हमारा, पुरखौती काम है,
0: चलिए अच्छा
1: बाप
0: है,
1: दादा परदादाओं वाला है, और जैसे जैसे दिन जाते जा रहे हैं वैसे वैसे डिजाइन भी बदलते जा रहा है।
0: बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही आप दिन दोगुनी रात चौगुनी मेहनत करें और सफलता हासिल करें अपने कारोबार में। तो आज क्या
1: जी
0: कहना
1: जी
0: चाहेंगे श्रोताओं से जो इस समय आपको सुन रहे हैं?
1: आज जन्माष्टमी है, और आपको और आपके पूरे आकाशवाणी परिवार को, हमारे जितने भी श्रोता बंधु सबको मैं जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूँ मैम।
0: आपको भी हम सभी की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं जन्माष्टमी की।
1: जी।
0: तो अपनी पसंद बताएं, आज किस गीत की फरमाइश है आज?
1: हाँ आज फिल्म हम साथ साथ हैं, और गीत के बोल है मैया सुदाए तेरा कन्हैया।
0: जन्माष्टमी पर इस
1: जी
0: खूबसूरत सी पेशकश को जो आपकी फरमाइश की है सुनते हैं। और कार्यक्रम में
1: जी
0: आपने
1: जी
0: फोन किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद धन्यवाद। तो
0: हेलो आकाशवाणी,
1: दीदी राधे राधे,
0: राधे राधे, अपना नाम बताइए।
1: मैं विजय कुमार कश्यप बोल रहा हूँ, पेशावर से। हाँ
0: विजय जी कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है, अभी अभी रंजीत राहुल जी से आए हैं थाना जी के कपड़ा लेके।
0: क्या बात है क्या बात है, कार्यक्रम में आपने फोन किया, भगवान जी के दर्शन किए, तो प्रार्थनाएं तो की होंगी सभी के लिए।
1: जी हाँ मैं कपड़ा लेके आया ठाकुर जी के लिए, 5 जोड़ी कपड़े।
0: क्या बात है, तो आज किन किन को आप देंगे? ये सभी अपने ठाकुर जी के लिए लाए हैं या किसी को देंगे भी आप?
1: नहीं अपने ठाकुर जी के लेके आया हूँ।
0: अच्छा, तो किसी को देते नहीं आप?
1: नहीं देते हैं पर मेरा एक बच्चा है उसके लिए ले आया हूँ, अपने बच्चे के लिए।
0: अच्छा, तो आप अपने अपने बेटे को भगवान का रूप धारण कराएंगे?
1: जी हाँ जी हाँ।

0: को कराएंगे ही।
1: बहुत अच्छी बात है। और जब हम बच्चों में भगवान के दर्शन करने लगते हैं तो हमें वाकई भगवान के दर्शन होते भी है, बस जरूरत है हम सच्चे मन से एक बार दर्शन करें अपने बच्चों में।
0: 1100 रुपए के कपड़े लेके आया हूँ बहन जी मैं आज।
1: क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। और बच्चे खुश हैं?
0: हाँ बच्चे तो मेरे बहुत खुश है बहन जी। ये पापा ये दिलवाला मुझे को सामान बहुत अच्छा लगा आपसे
1: जी, एक पापा से ही उम्मीद होती है बच्चों को, क्योंकि पापा में बच्चों को भगवान दिखते हैं। ये खूबसूरत सा रिश्ता बना होता है कि बच्चों को पापा में और पापा को बच्चों में भगवान नजर आते हैं जब बाल्यावस्था होती है तब।
0: अपने जो मेरे घर पर ठाकुर जी हैं उनके लिए एक बुल्ले के यहाँ झूला झूलने का मतलब 300 रुपए का झूला आया है वो।
1: चलिए तो आज भगवान जी के दर्शन कराइए अपने लालों को, उसमें बैठाइए और दर्शन कीजिए, एक शुद्ध होकर के एक तरफ अपने ध्यान को लगा करके, भगवान के चरणों में ध्यान लगा करके जब आप भगवान के दर्शन करेंगे तो आपको भगवान दर्शन भी देंगे आज के दिन।
0: जी हाँ बहन जी देंगे, शाम को देंगे भगवान जी हमको दर्शन।
1: तो आज फरमाइश बताएं अपने कार्यक्रम में।
0: फरमाइश फिल्म का नाम है हम साथ साथ।
1: हम साथ साथ का कौन सा गीत आज सुनना चाहेंगे?
0: पहले मेरे श्रोता है उनका नाम दे दूँ मैं कुछ। हाँ
1: स्वागत है
0: मेरे बच्चे भी हैं ईसु हर्ष खुशी, मेरे बच्चे हैं और मेरा भतीजा तन्नू और
1: जी।
0: श्रोता है मेरे विपिन कुमार छोली से।
1: तो अब
0: हेलो
1: फरमाइश बताएं हम साथ साथ फिल्म कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज?
0: मैया।

0: हेलो आकाशवाणी, कौन से साथी बात कर रहे हैं आज?
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। अपना नाम बताइए।
1: हाँ, जय श्री कृष्णा।
0: जय श्री कृष्णा, कैसे हैं आप और अपना नाम भी हमें बताइए।
1: जी जी बिल्कुल, हम बहुत बढ़िया हैं। टेकचंद अग्रवाल बोल रहे हैं, परांठिया छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश। सबसे पहले आपको जन्माष्टमी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: आपको
1: हमारे
0: भी
1: सभी श्रोता
0: ढेर सारी
1: श्रोताओं का
0: शुभकामनाएं इस पावन पर्व की।
1: जी जी जी और आप हमारे बाकी बिहारी के नगरी से बोल रहे हैं, तो हमारी आज जब आप दर्शन करने जाएं तो हमारी भी कुछ अर्जी लगा दीजिए वहां पर।
0: बिल्कुल, बाकी बिहारी यहाँ बसने के साथ साथ सब जगह विराजमान है। वो अपने
1: जी
0: पूर्ण
1: जी
0: रूप में
1: बिल्कुल
0: विराजते हैं
1: बिल्कुल
0: हर जगह। बस जरूरत है हम सच्चे मन से, सच्चे हृदय से उन्हें
1: जी जी
0: जहाँ याद
1: आप
0: करेंगे वो वहाँ प्रकट होकर दर्शन
1: बिल्कुल
0: देंगे।
1: बिल्कुल,
0: और
1: हाँ
0: जैसा
1: सही
0: कि आपने अपनी
1: कहते
0: फरमाइश की है, तो
1: हैं।
0: हमारी तो दुआ ही है, हमारी प्रार्थना ही है अपने सभी सुनने वालों के लिए।
1: जी,
0: तो आज फरमाइश बताइए, क्या फरमाइश है आपकी?
1: मोहम्मद रफी साहब की आवाज में सुनवा दीजिए। पुरानी फिल्म है शम्मी कपूर साहब की, ब्लॉक मास्टर, गोविंदा आला रे आला।
0: सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत। कार्यक्रम में आपने फोन किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: शुक्रिया जी।

0: हेलो आकाशवाणी, कौन से साथी बात कर रहे हैं?
1: नमस्ते,
0: नमस्ते, अपना नाम बताइए।
1: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: प्रेम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कैसे हैं आप?
1: जी थैंक यू सो मच, मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए आप कैसे हो?
0: जी हम भी बहुत अच्छे हैं। और आज क्या कहना चाहेंगे श्रोताओं से जो इस समय आपको सुन रहे हैं?
1: जी सभी श्रोताओं को नमस्ते कहेंगे और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की सभी श्रोताओं को शुभकामना रहेगी।
0: आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं आज के इस पवित्र उत्सव की।
1: जी मैं बताना चाहूंगा, हमारे यहाँ श्री कृष्ण जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से मनाते हैं शाम को,
0: जी
1: और एक छोटे बच्चे जो होते हैं ना उनको, और उससे भी छोटा एक 4-5 महीने का बच्चा लेते हैं, उसको कृष्ण जी बना के वासुदेव जी बनते हैं और उन्हें टोकरी में लेके मतलब निकाला जाता है। इससे मतलब जो कृष्णा जी की जो लीला हुई थी ना, उस तरह से मतलब बताया जाता है सभी को।
0: बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपके परिवार में कोई छोटा बच्चा है?
1: जी
0: अपने परिवार से किसे बनाते हैं आप?
1: जी हो गए हैं, अभी तो नहीं बने, लेकिन जब छोटे उसको हमने कृष्णा बनाया था, उसका नाम भी कृष्णा ही
0: बहुत
1: है।
0: अच्छी बात है। अगर हम भगवान के नाम पर नाम रखते हैं तो कहीं ना कहीं हम पुण्य ही कमा रहे होते हैं और दूसरों को भी पुण्य अर्जित करने का संदेश देते हैं। अजामिल की
1: जी
0: कहानी
1: बिल्कुल,
0: आपने सुनी ही होगी कि मरते वक्त
1: हाँ
0: उसने
1: जी
0: अपने पुत्र का नाम लिया तो साक्षात भगवान प्रकट हो गए। तो आज क्या
1: जी
0: फरमाइश
1: बिल्कुल।
0: है कार्यक्रम में आपकी?
1: संजोग फिल्म का सुनवा दीजिएगा आप, यशोदा का नंदलाला, ब्रिज का उजाला है, मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिलाए।
0: सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत कार्यक्रम में। आपने फोन किया
1: जी
0: उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: जी धन्यवाद।

0: हेलो आकाशवाणी
1: जी मैम, जय श्री महाकाल।
0: जय श्री महाकाल। कौन से साथी बात कर रहे हैं?
1: शिवा लोहट MP विदिशा से बात कर रहा हूँ, आपका नियमित श्रोता।
0: स्वागत है कार्यक्रम में आपका। कैसे हैं आप?
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद, मैं बहुत अच्छा हूँ मैम। आपको और सभी सुनने वालों को और सभी हमारे जितने भी लिसनर हैं सबको कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं मैम।
0: आपको भी आज के उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। और क्या करते हैं, क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर आप?
1: मैम मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी हाजिरी उस जगह पे आपके माध्यम से लग रही है जहाँ से कृष्ण जी बिलोंग करते हैं मैम।
0: जी, भगवान चाहे जहाँ भी हो वो सब जगह अपने भक्तों को देखते हैं। हम जब भी उन्हें सच्चे हृदय से पुकारते हैं तो वो किसी न किसी रूप में आकर हमें दर्शन देते हैं, मार्ग दिखाते हैं, और हमारे रास्ते को जब हम द्वंद में होते हैं तो उस रास्ते को बिल्कुल क्लियर करते हैं और उस रास्ते को हमें आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं। तो आज कार्यक्रम में किस गीत की फरमाइश रहेगी आपकी?
1: मैम एक मूवी है खानदान, उसमें एक गाना रहेगा तुम ही मेरे मंदिर तुम ही मेरी पूजा। हेलो,
0: सुनवाते हैं आपको खानदान फिल्म का ये गीत। कार्यक्रम में आपने फोन किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: राधे राधे मैम, जय श्री कृष्ण।
0: राधे राधे।

अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। प्रस्तुति चंद्रिका कुमार की थी। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। श्रोताओं, कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में आज हम आपसे बातें करेंगे कि बच्चों की परवरिश कैसे करें विषय पर। श्रोताओं, ये तो आप सभी जानते होंगे यदि आप पेरेंट्स हैं कि बच्चों की परवरिश करना कितना कठिन है, क्योंकि ये आसान काम नहीं है। इसमें आपको हर एक कदम पर बहुत सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि बच्चे एक कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं। उन्हें हम जैसा गढ़ते हैं वो वैसा ही बन जाते हैं। इसलिए बचपन से बच्चों में अच्छे संस्कार और मर्यादा उन्हें सिखाएं, बच्चों को प्यार से समझाएं, क्योंकि बच्चों की सही परवरिश प्यार, अनुशासन और सही मार्गदर्शन का एक बेहतरीन संतुलन होती है। बच्चों को भरपूर स्नेह दें, उन्हें मानसिक रूप से सुरक्षित महसूस कराएं, उनकी भावनाओं की इज्जत करें। बच्चों को शुरुआत से ही अच्छे संस्कार और मर्यादा सिखाएं, प्यार के साथ साथ ही सही और गलत का फर्क भी उन्हें समझाएं। उन पर चीखने या डांटने के बजाय अच्छे व्यवहार से मार्गदर्शन करें उनका।

श्रोताओ, बच्चे के सफल होने और अच्छी ज़िंदगी जीने में उसके माता पिता का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि बच्चों की परवरिश करना कोई आसान काम नहीं होता। छोटे होने पर बच्चे अपने आप को अपने माता पिता की नज़रों से देखते हैं। आप बच्चों से किस तरह से बात करते हैं और आपका हर एक एक्सप्रेशन बच्चा देखता है। आपके शब्द और आपके काम करने का जो तरीका होता है वही बच्चा कॉपी करता है। इसीलिए आपके शब्द और आत्मविश्वास को काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं। आपको बच्चों को छोटी छोटी बातों पर प्रोत्साहन देना चाहिए। इससे उन्हें खुद पर गर्व महसूस होता है और वे अपनी चीज़ें अपने आप करना शुरू करते हैं। बच्चों की दूसरों से तुलना तो कभी नहीं करनी चाहिए और ये गलती कभी ना करें।

श्रोताओ, हर घर में अनुशासन होना बहुत ज़रूरी है। इससे बच्चों को सही और गलत के बीच फर्क समझ आता है। उसे पता चलता है कि उसे कहाँ खुद पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है और किस तरह के व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। घर में कुछ नियम बनाने से बच्चों को आपकी उम्मीदें समझ आती हैं और वह आत्मनियंत्रण सीखता है। इसके कुछ नियमों में होमवर्क खत्म होने तक टीवी न देखना और घर या बाहर गलत शब्दों का इस्तेमाल न करना भी शामिल है। साथ ही आजकल दोनों ही जो है माता पिता होते हैं वो वर्किंग हो गए हैं और ऐसे में बच्चों के लिए समय निकाल पाना काफ़ी मुश्किल हो गया है। हालांकि आप इस बात को भी इनकार नहीं कर सकते कि बच्चों को उनके माता पिता का समय बहुत कीमती और ज़रूरी होता है। अगर आप बच्चों के साथ लंच नहीं कर सकते तो सुबह 10 मिनट जल्दी उठकर उनके साथ नाश्ता अवश्य करें। रात को भी खाने के बाद बच्चों के साथ 10 मिनट वॉक पर जाएं, उनसे बातें करें और उनसे कोशिश करें कि वो बच्चा आपसे कुछ ना छुपाए, आपसे हर बात शेयर करें।

बच्चे अपने माता पिता को देखकर ही सीखते हैं, इसीलिए आपको कम से कम बच्चों के सामने अच्छी तरह से पेश आना चाहिए। आपका गुस्सा और आपके बात करने का तरीका, हर एक चीज़ बच्चे बड़ी बारीकी से देखते हैं और फिर उसे सीख लेते हैं। कहा भी जाता है कि जिन बच्चों में ज़्यादा गुस्सा देखा जाता है, उनके घर पर अक्सर नेगेटिव माहौल होता है, या फिर माता पिता अक्सर जो है लड़ते झगड़ते हैं, बहुत बच्चों पर गुस्सा करते हैं। इन सब का असर जो है धीरे धीरे बच्चों पर भी गहरा जाता है।

श्रोताओं, आप बच्चों के लिए बस कोई एक रूल नहीं बना सकते, बल्कि आपको उसे बताना होगा कि आपने कोई रूल क्यों बनाया है और उसका क्या फ़ायदा है। इससे बच्चे समझ पाते हैं कि उनके लिए क्या सही है।

और क्या गलत है और उन्हें किस तरह से व्यवहार करना है। आप अपने बच्चों को स्पष्ट शब्दों में समझाएं कि आप उनसे क्या चाहते हैं। श्रोताओं, यदि हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे और बच्चों की अच्छी परवरिश करेंगे तो निसंदेह हमारे बच्चे सफल, संस्कारी और एक बेहतरीन इंसान बनने की नींव डालेंगे। और जब हम बच्चों को सही संस्कार, प्यार और मार्गदर्शन देते हैं तो न वे केवल जीवन में ऊंचाइयों को छूते हैं बल्कि समाज के लिए वे एक मिसाल बनते हैं। अच्छी परवरिश बच्चों में आत्मविश्वास और सही गलत की पहचान करना सिखाती है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। हमारे आज के कार्यक्रम का विषय था बच्चों की परवरिश कैसे करें विषय पर। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं फिल्मी कव्वालियाँ।

0: अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम और भूपेंद्र सिंह की गाई हुई ये कव्वाली। फिल्म का नाम था चांदी सोना। और इसी के साथ ही हमारा आज का फिल्मी कव्वाली का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर।
1: आएंगे हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन HIV का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
2: HIV को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के ICTC केंद्र पर HIV टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।

0: अपनाए।
1: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
2: पुलिस?
3: मिस सीमा
2: जी,
3: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
2: क्यों? लेकिन मैं
3: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
2: डिजिटल अरेस्ट?
3: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
2: इतने पैसे?
3: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
2: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
4: हेलो मम्मा।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: प्रस्तुत है ब्रज लोकगीत। आज की कलाकार हैं सीमा मोरवाल।

अभी आप सुन रहे थे ब्रज लोकगीत। आज की कलाकार थी सीमा मोरवाल। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: देखने तथा लेखा, वित्त, कानून और परामर्श से जुड़ी ऐसी संस्थाओं के निर्माण की अपील की है जो वैश्विक स्तर की हों। वे कल दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय मूल के कई लोग दुनिया की शीर्ष कंपनियों का नेतृत्व कर रहे हैं।
1: भारत की ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स क्यों नहीं हो सकती? हमारी अकाउंटिंग फर्म, हमारी लीगल फर्म, हमारी फाइनेंशियल फर्म, ये सब ग्लोबल लीडर्स क्यों नहीं बन सकती? हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें?
0: श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद भारत की तिमाही वृद्धि दर 7.8% रही है, जो इसकी बढ़ती आर्थिक क्षमताओं को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत मामलों में गतिरोध से गतिशीलता तक का लंबा सफर तय किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज सबसे तेजी से आर्थिक प्रगति करता हुआ देश है।
1: दुनिया भारत को फ्रजाइल 5 बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही है। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है।
0: मध्य प्रदेश के सागर जिले में जहरीली शराब पीने से 9 लोगों की मौत हो गई है। 12 से अधिक लोगों का उपचार चल रहा है। प्रशासन ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। छत्तीसगढ़ में जगदलपुर की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की विशेष अदालत ने झीरम घाटी में माओवादी हमले के मामले में सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया है। अदालत ने आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 अन्य की हत्या के प्रयास का दोषी पाया। इनकी सजा पर अंतिम फैसला 16 सितंबर को होगा। मई 2013 में झीरम घाटी में कांग्रेस नेताओं के काफिले पर हमला हुआ था। इसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं सहित 29 लोग मारे गए थे। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 1,344 हो गई है। 590 विदेशी नागरिकों सहित लगभग 5,000 लोग अभी भी लापता हैं। अब तक 13,100 से अधिक लोग बचाए जा चुके हैं। मृतकों की पहचान के लिए डीएनए परीक्षण की सहायता भी ली जा रही है। चीन के चियांगशी प्रांत में तेज बारिश के बाद भूस्खलन में 2 लोगों की मौत हो गई है। तूफान सॉडेल से कई दिनों की मूसलाधार बारिश के कारण ये आपदा आई। ईरान के कुर्द शहर सरंदज में एक ईंधन टैंकर में विस्फोट होने से 11 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग घायल हुए हैं। ये टैंकर कई कारों से टकराने के बाद आग की चपेट में आ गया। रिपोर्ट के अनुसार ब्रेक प्रणाली में खराबी के कारण यह दुर्घटना हुई। डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। वे अवकाश प्राप्त एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी का स्थान ग्रहण करेंगे। डॉक्टर शर्मा फिलहाल उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं और वे राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर आई ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री और 500 से अधिक संस्थागत निवेशक तथा उद्योगपति शामिल होंगे। आई ब्रिक्स का उद्देश्य ब्रिक्स के 21 सदस्य और साझेदार देशों में संप्रभु पूंजी का उपयोग, विश्वसनीय बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और डिजिटल क्षमता परियोजनाओं के लिए करना है। इस सम्मेलन में सीमा पार निवेश, गैर डॉलर निपटान और भुगतान प्रणालियों पर भी चर्चा होगी। भारत की अध्यक्षता में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में संपन्न होगा। सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी तीसरी बार चाइना मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गए हैं। खिताबी मुकाबले में आज दोपहर 1:50 पर भारतीय जोड़ी का सामना चीन के हे जी टिंग और रेन जियांग यू से होगा। उधर दुबई में 2020 महिला क्रिकेट एशिया कप के ग्रुप ए मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है। पाकिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 19वें ओवर में महज 55 रन पर ही सिमट गई। जवाब में भारत ने 8 ओवर और 4 गेंद में ये लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम। रविवार सरी अखिल भारतीय संगीत सभा का कार्यक्रम रात्रि 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। इन दोनों ही कार्यक्रमों को हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

अब से कुछ ही देर में यानी कि 1:15 पर आप सुनेंगे एसपी सिंह की लिखी हुई झलकी घर परिवार, प्रस्तुति राजेश सिंह की होगी। संध्या 5:30 पर युवा साथियों का कार्यक्रम होगा युववाणी। इसमें आज की बात होगी स्वास्थ्य के लिए योग अपनाएं और दिव्यांग बच्चों की शिक्षा और छात्रवृत्ति का अवसर विषयों पर।

संध्या 6:50 पर ब्रज गार्डन में कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। इसमें चर्चा होगी बाह्य परिजीवियों से पशु सुरक्षा और पशु पोषण में खनिज लवण। साथ ही श्रोता मन भावन के अंतर्गत ब्रज लोकगीतों का भी आनंद ले सकेंगे।

रात्रि 8:30 पर एक ही फिल्म से कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। फिल्म संगीत श्रोता रात्रि 8 बजे और रात्रि 9:15 पर भी सुन सकेंगे।

अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं इस मास का गीत, बोल है अपनी बोली प्यारी बोली। आइए सुनते हैं संवेद स्वरों में ये गीत, संगीत सुरेश गुप्ता का है।

0: अभी आप सुन रहे थे समवेत स्वरों में ये गीत। गीत लिखा था यतीन्द्र चतुर्वेदी ने, संगीत सुरेश गुप्ता का था। आइए सुनते हैं एसपी सिंह की लिखी हुई झलकी, घर परिवार, प्रस्तुति राजेश सिंह की है।
1: प्रस्तुत है एसपी सिंह की लिखी झलकी, इसके प्रस्तुतकर्ता हैं राजेश सिंह।

0: है बीबी के गुलाम। मेरी प्यारी छोटी भाभी, भैया यानी ये जोरू के गुलाम आज नीचे ही अपनी प्यारी बहन भाभियों के साथ चाय पियेंगे। क्यों गुलाम जी?
1: मार खाएगी शैतान कहीं की।
0: लो जी, चढ़ गई अटारी पर। हम तो कुछ है ही नहीं, हमारे लिए चाय तक नहीं बनाई। जाओ भैया, तुम भी जाओ। तुम्हारा भी बीबी बिना जी नहीं लग रहा होगा। अगर अभी नहीं गए तो देख लेना, रात के खाने में सबको तेज नमक ही खाना पड़ेगा।
2: अरे चुप भी कर, जा बेटे, तू ही ऊपर जा। पता नहीं क्यों तेरी बहू हम सबसे नाराज सी रहती है।
3: माँ जी, यह तो आप गलत कह रही हैं। हम सब यहाँ क्या गैर हैं जो हमें छोड़कर अकेले ऊपर चाय पी जाएगी? यहाँ इस घर में वही रानी बहू हैं जो अटारी पर चढ़ी रहती हैं, हमारे साथ कभी भी घुल मिलकर नहीं बैठती। बस सारा रिश्ता विजय लाला से ही है, हमसे तो कोई नाता ही नहीं।
0: नहीं भाभी, वह पढ़ी लिखी ऊंचे घराने की हैं, उनके भाई जनरल मैनेजर हैं, वे सभ्य लोग हैं, हम क्या जाने रहने की तमीज। चाय तो भाई डाइनिंग टेबल पर पी जाती है। तुम बड़ी भाभी एकदम फूहड़ हो, बैठ जाती हो पसर कर पलंग पे। तुम्हारे साथ कैसे पी सकती हैं वो चाय?
1: खबरदार आशा, जो आगे कुछ बोली, बहुत जवान चलाना सीख गई है। जब यहाँ ये हाल है तो शादी के बाद क्या करेगी? राधा को देखा है, कितना सुनाते हो तुम सब उसे, एक शब्द भी विरोध में बोली है वह कभी?
0: हाँ जी, वह आपकी राधा नक्षत्र है और आप उनके चांद। जाओ भाई ऊपर। बड़े भैया अब तक आते ही भाभी के साथ कभी कमरे में नहीं घुसते, एक तुम हो कि शर्म नहीं आती?
3: सही बात तो कह रही है आशा दीदी। अम्मा जी, आपने ही विजय को छूट दे रखी है। देखो बीच वाले देवर भी ऐसा नहीं करते। अगर अभी से बीबी के गुलाम बनकर रहे तो जिंदगी नहीं चलेगी।
1: तुम लोग तो बस।

0: राधा, तुमने बुरा तो नहीं माना?
1: नहीं जी, जब आपके घर वालों को मैं बुरी लगती हूँ तो मायके ही चली जाती हूँ। हमारे घर में तो इतनी शांति रहती है कि कहीं हाय तौबा या बेहूदगी दिखाई तक नहीं पड़ती। ये आशा दीदी कितना बोलती हैं, मैं तो कभी अपनी भैया भाभी से ऐसी बदतमीजी से बोल ही नहीं सकती। बड़ी भाभी भी तो उन्हें शह देती रहती हैं, यहाँ तो मुझे बाहर की लड़की समझकर पराया ही माना जाता है।
0: राधा, छोड़ो भी इन बातों को, इसे हमारे घर की रीति ही समझ लो। ये सब लोग तुम्हारे साथ घुल मिलकर बैठना चाहते हैं, तुम तो शायद इन्हें अभी समझ ही नहीं सकी हो जो इतनी कटी कटी रहती हो। अरे, हमारी दूसरी भाभी जब आई थी तब हम उन्हें भी चढ़ाते थे, पर कभी भी बुरा नहीं माना उन्होंने, हमेशा हंसती ही रहती थी।
1: लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब मुझसे जलन मानते हैं।
0: तुम्हें इन सबके साथ हिलमिलकर बैठने की आदत डालनी चाहिए। तुम उबती नहीं अकेले ऊपर बैठे बैठे? तुम्हारे घर में तो मुझे ऐसा लगता है इंसान नहीं मशीनें रहती हैं, सभी अपने आप में लीन, किसी को किसी की फिक्र नहीं। जहां आदमी होंगे, बोलेंगे, हंसेंगे और लड़ेंगे भी। अच्छा जाओ, एक कप चाय ले आओ। अच्छा, तुम यहीं बैठो, मैं मंगवाता हूँ चाय।
1: नहीं, मुझे लाने

0: वरना वो लोग बोलेंगे कि बीबी ने सिखाया होगा।
1: नहीं, तुम नहीं जाओगी। बड़ी भाभी, आशा, अरे कोई है, मेरे लिए चाय बनाकर भेजो।
2: क्यों, अपनी महारानी से नहीं कह सकते?
1: महारानियां तो बैठकर राज करने के लिए होती हैं। चल नौकरानी, तू ही चाय बना।
2: देख लो माँ, मान ली ना भैया, छोड़, कान छोड़ना। इतनी बड़ी लड़की के कान पकड़ता है, शर्म नहीं आती तुझे?
1: बड़ी भाभी, अब तुम मेरा जरा भी ख्याल नहीं रखती। पहले उठकर मुझे खाना देती थी, अब बैठी रहती हो। जब तुम मुझे नहीं पूछोगी तो बनूंगा उसी का गुलाम। मैं तो खाने का गुलाम हूँ, जो मेरा पेट भरेगा मैं तो उसी का ही गुलाम बनूंगा।
2: लगता है महारानी से लड़ाई हो गई है, तभी आ गए नीचे भाभी के पास थाली के बैगन।
1: लड़ाई हो मेरे दुश्मनों की, फाड़ में जाओ तुम सब औरतें, मैं खुद ही बना लेता हूँ चाय, और कहो तो तुम सबको बनाकर पिला दूं। बस तुम लोग सज धज कर बैठी रहो, और मर्दों के घर आते ही तानाकशी करो, खूब लड़ाई करो। ठीक है, कल से ही मैं घर पे ही नहीं आया करूंगा, बाहर होटल में चाय पी लिया करूंगा, फिर कुछ मत कहना।
2: किस लिए गुस्सा होते हो विजयलाला? चाय मैं अभी बना देती हूँ, मूड क्यों खराब कर रहे हो? जाओ, अगर फिल्म जाने का मन है तो चले जाओ, अब भी समय है, 6:45 ही तो बजे हैं।
0: भैया आज ही चले जाओ, नहीं तो कल मजले भैया भाभी बिजनौर से आ रहे हैं, और गजेंद्र भैया भी दिवाली की छुट्टियों में कल आ रहे हैं, फिर जाना नहीं होगा।
1: शैतान कहीं की, पहले ही ना लड़ती तो क्यों देर होती। राधा, ओ राधा, आओ नीचे, चलो जरा घूम के आते हैं।
2: हाँ नहीं भाभी, चाय नाश्ता मैं ला रही हूँ, तुम झटपट तैयार हो जाओ।
0: अरे अभी तो इतना लड़ रहे थे और अब लाड़ हो रहा है, पता नहीं ये लोग कैसे हैं।

0: ये लीजिए, ये टॉकीज भी हाउसफुल। देख लिया आपने अपने घर वालों का रवैया? अरे अगर पहले ही जाने दिया होता तो क्यों देरी होती? पहले लड़ते हैं फिर प्यार करते हैं, ये भी कोई बात है? सब नाटक करते हैं।
1: ओ राधा, ये नाटक नहीं, सच पूछो तो यह भी उनका मजाक और छेड़छाड़ है। तुम्हारे विवाह को कुल 2 माह हुए हैं, धीरे धीरे समझ जाओगी कि इनके दिलों में कपट नहीं है। कल छोटी भाभी आ रही हैं, देखना हम सब कैसा तंग करते हैं उन्हें। और सच पूछो तो वह भी खूब आनंद लेती हैं, देखा नहीं तुमने? मैंने बड़ी भाभी के मुंह पर टिकट फाड़ कर फेंक दिए थे, वह तो बुरा नहीं मानी।
0: सब बकवास है, मुझे ऐसे बेहूदे मजाक अच्छे नहीं लगते।
1: खैर छोड़ो, आओ तुम्हारे भैया भाभी को दिवाली की शुभकामनाएं अग्रिम दे आए। परसों दिवाली है, घर में चहल पहल हो गई तो जाना मुश्किल हो जाएगा।
0: क्यों, दिवाली के दिन भी मैं अपने घर नहीं जाऊंगी क्या?
1: ऐसी बात नहीं है राधा, तुम्हारी पहली दिवाली है, तुम्हारे कारण तो बिजनौर वाले भैया भाभी आ रहे हैं। देखना गजेंद्र आएगा तो कितना मजा आता है यहाँ।
0: तुम्हें मुबारक हो तुम्हारा मजा, मैं तो जरूर मायके जाऊंगी उस दिन।
1: अच्छा भाई, परसों की बात परसों देखेंगे, चलो बाजार घूमते हुए तुम्हारे घर चलते हैं।

0: अरे रामू काका, कैसे हो? और ये रुआंसी सी सूरत क्यों बना रखी है?
1: बीबी जी, आप आ गए? आप ही चल के देख लीजिए, मालकिन काफी बीमार हैं, पर कोई उनकी तरफ ध्यान नहीं देता। सब अपने अपने मजे में मस्त हैं। आप ही कुछ कीजिए बीबी जी, आप ही कुछ कीजिए।
0: ठीक है रामू काका, तुम चलो, मैं देखती हूँ। कैसी हो? सच तुम लोगों में से कोई भी मुझे देखने नहीं आया। वो तो अच्छा हुआ कि आज फिल्म देखने निकले तो मुझे ये यहाँ ले आए।
2: अरे बेटी, तू आ गई, अच्छा किया अच्छा किया। ये सामने अलमारी की चाबी रखी है, जरा मुझे दे दो। बेटे विजय, ये 1200 रुपए हैं।

0: राधा की पहली दिवाली के लिए मेरी तबीयत खराब है, सो मैं बाजार से साड़ी नहीं ला पाई, तो खुद ही अपने लिए दिवाली की साड़ी, फल और मिठाई ले लेना। क्या करूं, मजबूरी है। और ये जोड़ों का दर्द सर्दी शुरू होते ही।
1: माँ जी, हम रुपए लेने नहीं, आपसे इसे मिलाने आए हैं। जब राधा के भैया कार में ताश खेलने जा सकते हैं तो हमारे घर सामान भी ला सकते हैं। मेरी माँ इस तरह से नहीं लेगी, दिवाली का शगुन कायदे से भेजा जाता है।
0: क्या करूं बेटा, सब अपने आप में मस्त हैं, न बड़ा सुनता है न छोटा। बहू को तो ताश खेलने और किसी पार्टियों से ही फुर्सत नहीं।
2: बीबी जी, ये लीजिए चाय।
3: लो विजय, चाय पियो, ये लो।
1: चलो राधा, देर हो जाएगी।
3: अच्छा माँ, मैं चलती हूँ, तुम अपनी तबीयत का ध्यान रखना। माँ चुप बेटे, माँ चुप हो जा।
1: अरे चलो भी राधा। अच्छा माँ जी, नमस्ते।
0: नमस्ते बेटे।

0: देख लिया तुमने तुम्हारे घर में कैसी शांति है। तुम्हें ही मुबारक हो ऐसी शांति। किसी को किसी की परवाह नहीं। बीमार सास को छोड़कर ताश फेंकना जरूरी है। तुम्हारे भैया कार में दुनिया में तो घूम सकते हैं। मैं तो स्नेहवश आ गया था। जब उन्हें फुर्सत नहीं तो हम भी इतने गिरे हुए नहीं हैं।
1: छोड़ो फिर विजय अब।
0: क्यों भाई, मेरी तरफ से कुछ चाहिए दिवाली का तोहफा तो अभी ले लो। साड़ी तो अम्मा तुम्हें देंगी ही। आज के दिन बड़े भैया सबके लिए कपड़े लाते हैं। धनतेरस जो है। हाँ, कोई और तोहफा चाहिए तो बोलो।
1: नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए।
0: अच्छा राधा, तुम घर जाओ। मैं सामने विनय को उसका पत्र दे आऊं। आज शाम को उसके बॉस ने मुझे उसे देने को दिया था। मैं बस अभी एक मिनट में घर आया।
1: ये वाली कैसी रहेगी? फिरोजी कलर की?
2: अरे साड़ी तो बस दो ही इसमें, भैया दो ही लेके आए।
3: नहीं, इसका कलर ज्यादा ठीक है।
2: वो वाली वापस करा दो।
1: अम्मा, यही राधा भाभी पर अच्छी लगेगी।
4: अम्मा, नई भाभी बिल्कुल गुड़िया सी लगेगी।
3: हाँ माँ जी, नई बहू है और है भी काफी गोरी। गुलाबी रंग खिलेगा, आप यही ले लीजिए।
1: पर है भी तो 1000 रुपए की, वो 700 रुपए वाली ठीक रहेगी।
4: नहीं अम्मा, तुम मेरा सूट ये 300 वाला मत लो। मेरे पास बहुत कपड़े हैं, तुम भाभी के लिए ले लो। पहली दिवाली है इस घर में उनकी।
1: एक वो घर है जहां पैसा है, शोहरत है, पर सब दिखावा है। जहां परिवार के सदस्यों के लिए किसी को फुर्सत नहीं है, प्यार नहीं है। सच ही कहता है विजय, वो घर मशीनों का घर है। यहां कितना प्यार है, कितना त्याग है। सच, गलती मेरी ही है। अब मैं इन सबके साथ घुल मिल के रहूंगी, सबके साथ मिलजुल के रहूंगी।
5: नमस्ते नई भाभी।
4: ओ गजेंद्र भैया, आप हैं?
5: हाँ जी, हमने सुना कि जोरू को गुलाम अपनी जोरू के साथ फिल्म देखने गए हैं, तब हमने सोचा कि उन्हीं के कमरे में सफर की थकान उतार लें। नीचे तो सो नहीं सकते, बड़ा शोरगुल है।
4: क्यों घबराते हो देवर जी, पढ़ाई कर लो, आपको भी जल्दी से जोरू का गुलाम बना देंगे। हमें पता चला था कि हमारे प्रिय इकलौते देवर छुट्टियों में आ रहे हैं, तो बस हम उनके स्वागत में फिल्म छोड़कर चले आ रहे हैं।
5: वाह भाभी, बड़ी जल्दी ही रंगी हमारे रंग में।
4: देख लो।
0: भाई ऐसी हंसी की क्या बात है, हम भी तो सुने। और तू तो कल आने वाला था, आज कैसे अटपका?
5: हैरान करना चाहता था, पर तुम तो अपनी
4: जोरू के साथ गुलामी कर रहे थे, है ना?
0: अरे वाह राधा, तुम तो।
5: क्यों भाभी, सारी फुलझड़ियां हंसी की आज ही छुड़ा लोगी या कुछ दिवाली के लिए भी रखोगी?
4: अरे भैया, उस दिन तो पटाखे छूटेंगे, पटाखे।

0: अभी तक आप सुन रहे थे एसपी सिंह की लिखी झलकी घर परिवार। इसमें भाग लिया देवेंद्र प्रसाद शर्मा, नवनीत भटनागर, नीलम सिंह, मनीष श्रीवास्तव, साधना भार्गव, रेणुबाला द्विवेदी और मनीषा माथुर ने। इस झलकी को प्रस्तुत किया राजेश सिंह ने।
1: आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

अभी आपने सुना फिल्म कसूर का ये गाना, और इस गाने को गाया था अलका याग्निक और उदित नारायण ने। बोल लिखे थे समीर ने, संगीत दिया था नदीम श्रवण ने। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं अलका याग्निक की आवाज़ में। फिल्म का नाम है साजन, संगीत नदीम श्रवण का, बोल समीर के हैं।

अभी आपने सुना लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज़ में ये गाना। फिल्म का नाम था मुझसे दोस्ती करोगे। इस गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीत दिया था राहुल शर्मा ने। और आइए अब सुनते हैं फिल्म क्रिएचर का ये गीत, जिसे गाया है फरहाद सईद और तुलसी कुमार ने। वो लिखे हैं मिथुन ने, संगीत भी मिथुन का ही है।

0: कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में अभी आपने सुना फिल्म एक रिश्ता का ये गाना, जिसे लिखा था समीर ने, संगीत दिया था नदीम श्रवण ने। और इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
1: दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम लालिमा अनेजा डैंग विद द मिडडे न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India's economic strength and policy dynamism is driving nation towards Vikasit Bharat, calls upon Indian companies to aspire to lead the world. India backs UN resolution on equal area world map, reiterates Jammu and Kashmir and Ladakh must be depicted as per Indian official map as sovereignty and territorial integrity are non-negotiable. 10 people dead, several hospitalized after consuming suspected spurious liquor in Sagar district of Madhya Pradesh. Iran strikes 3 US tankers and vessels in Strait of Hormuz. Flood situation worsens in Bihar and Uttar Pradesh after heavy rainfall. IMD forecasts heavy rain over Haryana.

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की आर्थिक क्षमता और नीतिगत गतिशीलता देश को विकसित राष्ट्र की ओर ले जा रही है। भारतीय कंपनियों से वैश्विक नेतृत्व का आह्वान किया। भारत ने समान क्षेत्रफल वाले विश्व मानचित्र को अपनाने के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का समर्थन किया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारतीय मानचित्र के अनुसार दर्शाने की बात दोहराई। कहा, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से कोई समझौता नहीं। मध्य प्रदेश के सागर जिले में जहरीली शराब से 10 लोगों की मौत, कई अस्पताल में भर्ती। ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य में अमरीका के 3 टैंकरों और जहाजों पर हमला किया। तेज बारिश के बाद बिहार और उत्तर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति

0: गंभीर हुई। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में आज सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना चीन के हे जी टिंग और रेन यांग यू से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने और दुनिया का नेतृत्व करने का आह्वान किया है। वे कल दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भारत के लोग दुनिया की बड़ी कंपनियों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं तो भारतीय कंपनियां भी दुनिया का नेतृत्व कर सकती हैं। उन्होंने युवाओं से यूनिकॉर्न बनाने, ड्रोन तकनीक में नवाचार करने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में आगे बढ़ने का आह्वान किया।
1: भारत की ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स क्यों नहीं हो सकती? हमारी अकाउंटिंग फर्म, हमारी लीगल फर्म, हमारी फाइनेंशियल फर्म, ये सब ग्लोबल लीडर्स क्यों नहीं बन सकती? हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें?
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया भारत की तेज आर्थिक वृद्धि और नीतिगत बदलावों की सराहना कर रही है। उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की 7.8% की तिमाही आर्थिक वृद्धि देश की क्षमताओं को दर्शाती है।
1: जो दुनिया तब भारत में पॉलिसी पैरालिसिस से चिंतित थी, वो दुनिया आज भारत के पॉलिसी डायनामिज्म की चर्चा कर रही है। तब दुनिया भारत को फ्रजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही है। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है।
0: श्री मोदी ने मेक इन इंडिया की सफलता का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत अब प्रमुख निर्यातक राष्ट्र बन रहा है। स्मार्टफोन का निर्यात 2,50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है, जबकि देश का रक्षा उत्पादन करीब 2,00,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री ने देश में तेजी से हो रहे बुनियादी ढांचे के विकास का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जिन परियोजनाओं को पूरा होने में पहले दशकों लगते थे, वे अब कुछ ही वर्षों में पूरी हो रही हैं। उन्होंने रेलवे के विद्युतीकरण का उदाहरण देते हुए कहा कि वर्ष 2014 तक 30% से भी कम रेल लाइनों का विद्युतीकरण हुआ था, जबकि पिछले 12 वर्षों में लगभग 100% रेलवे विद्युतीकरण किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह 3 दिवसीय गोवा दौरे पर हैं। वे कल रात गोवा पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री शाह आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे।
2: अमित शाह ने आज मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत के साथ गोवा से जुड़े अहम मुद्दों पर समीक्षा बैठक की। इसके बाद वे जल्द ही मीडिया से बातचीत करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। अमित शाह आज बीजेपी के नए प्रदेश कार्यालय अटल भवन का उद्घाटन भी करेंगे। वे पार्टी की स्टेट कोर कमेटी के सदस्यों से भी मुलाकात करेंगे। कल 28वें वेस्टर्न जोनल काउंसिल मीटिंग की बैठक में शामिल होंगे और गोवा पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस कलर प्रदान करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: मध्य प्रदेश के सागर जिले में जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि करीब 35 लोगों का अस्पताल में उपचार चल रहा है। इनमें कुछ की हालत गंभीर है। यह मामला बांदा थाना क्षेत्र के नौरोजा और घुगरा खुर्द गांवों का है। शुरुआती जांच में शराब में मिथाइल अल्कोहल होने की आशंका जताई गई है। कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्रालय ने समान क्षेत्रफल वाले विश्व मानचित्र को लेकर भारत का रुख स्पष्ट किया है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में समान क्षेत्रफल वाले मानचित्र से जुड़े प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है। उन्होंने कहा कि भारत के संप्रभु क्षेत्र जिसमें जम्मू कश्मीर और

0: लद्दाख भी शामिल हैं, उन्हें भारत के आधिकारिक मानचित्र के अनुसार ही दिखाया जाना चाहिए। किसी भी गलत या भ्रामक चित्रण को भारत स्वीकार नहीं करेगा। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को लेकर सरकार का रुख स्पष्ट तथा अडिग है। उन्होंने ये भी कहा कि ये प्रस्ताव किसी खास मानचित्र, प्रक्षेपण या किसी देश की सीमा के चित्रण का समर्थन नहीं करता। होर्मुज जल डमरू मध्य के आसपास अमेरिका ईरान संघर्ष में इस सप्ताह एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। दोनों पक्षों ने होर्मुज जल डमरू मध्य और उसके आसपास जहाजों पर हमले किए हैं। कल के ताजा घटनाक्रम में अमेरिका की केंद्रीय कमान सेंटकॉम ने कहा कि उसने ईरान के 3 तेल टैंकरों को निष्क्रिय कर दिया है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने भी दावा किया है कि उसकी नौसेना ने होर्मुज जल डमरू मध्य के संरक्षित क्षेत्र में घुसने का प्रयास कर रही रिमोट से संचालित अमेरिका की एक नाव को निशाना बनाया है। अमेरिका के दूत आज यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचेंगे। शांति प्रक्रिया के तहत अमेरिकी दूतों की यह यूक्रेन की पहली यात्रा है। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कल क्रेमलिन में अमेरिकी दूतों स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर से मुलाकात की थी। बातचीत के बाद राष्ट्रपति पुतिन ने कीव पर रूसी हमलों को 3 दिन के लिए रोकने का आदेश दिया। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन भी सोमवार तक मॉस्को पर हमले रोकने के लिए तैयार है। नेपाल में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या 1,344 हो गई है। 590 विदेशी नागरिकों सहित लगभग 5,000 लोग अभी भी लापता हैं। अब तक 13,100 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। मृतकों की पहचान के लिए डीएनए परीक्षण की सहायता ली जा रही है। 1,270 अज्ञात शवों का विवरण नेपाल पुलिस की वेबसाइट पर दिया गया है। भारत और चीन की टीमों की सहायता से कई पनबिजली परियोजनाओं में बचाव अभियान अब भी जारी है। उधर चीन के चियांगशी प्रांत में तेज बारिश के बाद भूस्खलन में 2 लोगों की मौत हो गई। तूफान सॉडेल से कई दिन की मूसलाधार बारिश के कारण यह दुर्घटना हुई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। उत्तर प्रदेश में तेज बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण 24 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज चित्रकूट जिले में स्थिति और राहत बचाव कार्यों का जायजा लिया।
2: राज्य की कई नदियां अभी भी उफान पर हैं। बदायूं, गाजीपुर और बलिया में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और फरुखाबाद में खतरे के निशान के नजदीक पहुंच गई है। वहीं लखीमपुर खीरी और बाराबंकी में शारदा तथा अयोध्या और तुर्तीपार बलिया में घाघरा नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान के पार पहुँच गया है। चित्रकूट के राजापुर में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वाराणसी में वरुणा नदी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ राहत शिविर में पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की और राहत सामग्री बांटी। उधर मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक प्रदेश के पूर्वी हिस्से और आगामी 2 दिनों तक पश्चिमी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: बिहार के कई हिस्सों में भी बाढ़ के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। इस बीच मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में कल तक बारिश की आशंका है। वहीं दिल्ली में भी लगातार दूसरे दिन बारिश हो रही है। इसके चलते कई इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक की रफ्तार धीमी हो गई है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, झारखंड और छत्तीसगढ़ में कल बिजली गिरने की भी संभावना है। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियां तेज हो गई हैं। ये विशेष सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को भारत मंडपम में आयोजित होगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि आयोजन की सुरक्षा तैयारियों के अंतर्गत आज सुबह दिल्ली पुलिस ने मोटर काफिले की रिहर्सल की और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।
3: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर NDMC क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को और भी मजबूत किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के अनुसार यमुना नदी के किनारे सुरक्षा उपायों की भी समीक्षा की गई है। इस बीच NDMC नई दिल्ली के प्रमुख इलाकों में सौंदर्यकरण और सड़कों के स्वरूप में सुधार से जुड़े कार्य कर रही है। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्रिक्स के सदस्य और साझेदार देशों के नेताओं, आउटरीच देशों तथा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख अनोखों को

0: एक मंच पर एकत्रित करेगा। समर्थ के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: हमारे संवाददाता ने बताया कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर आई ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री और 500 से अधिक संस्थागत निवेशक तथा उद्योगपति शामिल होंगे। आई ब्रिक्स का उद्देश्य ब्रिक्स के 21 सदस्य और साझेदार देशों में संप्रभु पूंजी का उपयोग, विश्वसनीय बुनियादी ढांचे, ऊर्जा तथा डिजिटल क्षमता परियोजनाओं के लिए करना है।
2: सम्मेलन में सीमा पार निवेश, गैर डॉलर निपटान और भुगतान प्रणालियों पर चर्चा होगी। इसके अलावा भारत की यूपीआई भुगतान प्रणाली और ब्राजील की पिक्स भुगतान प्रणालियों को जोड़ने तथा डिजिटल मुद्राओं में कारोबार पर भी चर्चा होने की संभावना है। ये शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब ब्रिक्स देश व्यापार गतिशीलता, अमरीकी शुल्क के दबाव और उच्च डॉलर लागत के समाधान के लिए स्वयं को अनुकूलित कर रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: भारतीय वायुसेना की सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम दूसरे अल अलामीन अंतर्राष्ट्रीय एयर शो में भाग लेने के लिए मिस्र पहुंच चुकी है। ये एयर शो 8 से 10 सितंबर तक अल अलामीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि टीम सुनियोजित प्रदर्शनों की श्रृंखला के माध्यम से सटीकता, पेशेवर अंदाज और उड़ान कौशल का प्रदर्शन करेगी। मंत्रालय ने यह भी बताया कि सारंग टीम देश में ही डिजाइन और निर्मित उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ध्रुव का संचालन करेगी। डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। डॉक्टर शर्मा फिलहाल उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं और वे राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि वे अपनी नई जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे।
3: जो निर्देश होगा, जो भी प्रधानमंत्री जी का, वो सबको स्वीकार है और हमेशा मैं एक कार्यकर्ता की तरह रहा हूँ, तो जो भी हमारे पार्टी का नेतृत्व आदेश देता है वो सिद्ध करना हमारा काम है। जो प्रधानमंत्री जी का विश्वास है उसको पूरा करूँ, यही मेरी इच्छा है।
1: आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में शहरी स्थानीय निकायों के साधारण चुनाव कराने के लिए सांविधिक नियम जारी किए हैं। ये नियम महापौर, अध्यक्षों और वार्ड सदस्यों के प्रत्यक्ष चुनाव के साथ साथ उप महापौर और उपाध्यक्षों के अप्रत्यक्ष चुनाव के लिए बनाए गए हैं। संशोधित कानूनों के तहत नगर निगमों के महापौर और नगर पालिकाओं तथा नगर पंचायतों के अध्यक्षों का चुनाव मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर किया जाएगा। सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी तीसरी बार चाइना मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गए हैं। भारतीय जोड़ी का मुकाबला चीन के हे जी टिंग और रेन जियांग यू से होगा। विश्व के पांचवें नंबर की भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल में मलेशिया के नूर मोहम्मद, अजरियन अयूब और टेन वी कियोंग को पराजित किया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की आर्थिक क्षमता और नीतिगत गतिशीलता देश को विकसित राष्ट्र की ओर ले जा रही है। भारतीय कंपनियों से वैश्विक नेतृत्व करने का आह्वान किया। भारत ने समान क्षेत्रफल वाले विश्व मानचित्र को अपनाने के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का समर्थन किया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारतीय मानचित्र के अनुसार दर्शाने की बात दोहराई। कहा, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से कोई समझौता नहीं। मध्य प्रदेश के सागर जिले में जहरीली शराब से 10 लोगों की मौत, कई अस्पताल में भर्ती। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य में अमेरिका के 3 टैंकरों और जहाजों पर हमला किया। और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में आज सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना चीन के हे जी टिंग और रेन जियांग यू से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत।

मजरू सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत को स्वर दिया था मोहम्मद रफ़ी ने। फिल्म का नाम था चिराग। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है बहू बेगम, बोल लिखे हैं साहिर लुधियानवी ने, संगीत रोशन का है।

अभी आपने सुना फिल्म एक सपेरा एक लुटेरा का ये गीत, जिसे गाया था मोहम्मद रफ़ी ने। बोल लिखे थे असद भोपाली ने, संगीत उषा खन्ना का था। और आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार के स्वरों में फिल्म फासले का ये गाना। इस गीत को लिखा है शहरयार ने, संगीत शिव हरी का है।

हसीना बड़ी खूबसूरत है तू। हसीना बड़ी खूबसूरत है तू, मुस्कुराती हुई कोई मूरत है तू।

मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में अभी आपने सुना फिल्म फ़र्ज़ का ये गीत। इस गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और इस गीत के साथ ही हमारा आज का सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर।

FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का यह मथुरा वृंदावन केंद्र है। अपराह्न के 3 बजे हैं। हमारी ये सभा अब यहीं संपन्न होती है। संध्या 5:30 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस समय शाम के 5:30 हुए हैं। इस मीटर पर हमारी दूसरी सभा अब आरंभ होती है। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: कुछ बातें किताबों से नहीं वक्त से सीखने को मिलती हैं। कौन अपना है, किसे छोड़ देना चाहिए और कब चुप रहना बेहतर है, ये सब वक्त सिखाता है। जो आज समझ नहीं आता वो कल सबसे बड़ी सीख बन जाती है। इसलिए हर मुश्किल से भागने की कोशिश मत करो। कुछ रास्ते मुश्किल होते हैं लेकिन वही हमें वो इंसान बनाते हैं जो हमें बनना

साथियों, आज की क्रम में आज हम बात करेंगे खुद की, यानी अपने स्वास्थ्य की। और स्वास्थ्य हमारा कब बेहतर रहता है ये हम सभी को पता है, योग से। जी हाँ, योग एक ऐसी साधना है जो शरीर, श्वास और मन को जोड़ती है। ये समग्र स्वास्थ्य को एक बेहतर बनाने की कोशिश में

ये समग्र स्वास्थ्य को एक बेहतर बनाने की कोशिश में लगी रहती है ताकि शारीरिक मुद्राओं, श्वास व्यायामों और ध्यान का ये उपयोग करती है ताकि हम बेहतर बन सकें। योग का विकास हजारों साल पहले एक आध्यात्मिक साधना के रूप में हुआ था। आज अधिकांश सभी लोग योग करते हैं, वे इसे व्यायाम के लिए या तनाव कम करने के लिए नहीं करते, वो खुद को फिट रखने के लिए करते हैं। योग आपके पूरे स्वास्थ्य को बेहतर बना सकता है और आपकी शारीरिक मुद्रा और लचीलेपन में सुधार कर सकता है, अपने रक्तचाप और हृदय गति को कम करें, आपको आराम करने में मदद करता है, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है, तनाव को कम करता है और आपको बेहतर शरीर स्वास्थ्य देता है, अपनी एकाग्रता में सुधार करता है, आपको बेहतर नींद दिलाने में मदद करता है और सबसे बड़ी चीज पाचन में सहायक होता है। अब बात करते हैं कि क्या सावधानी रखनी चाहिए। आमतौर पर अधिकांश लोगों के लिए ये सुरक्षित है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि जिनसे थोड़ा सा आप बचकर रहें, जैसे कि आप अगर प्रेग्नेंट हैं, गर्भवती हैं, तो थोड़ा सा हल्का फुल्का आप कर सकती हैं। आपको हाई बीपी रहता है तो थोड़ा डॉक्टर की परामर्श से आप कर सकती हैं। यदि आपको इनमें से कोई भी समस्या नहीं है तो आप रोज प्रतिदिन योग कर सकती हैं। योग प्रशिक्षक अगर आपकी नज़र में ऐसा कोई है तो आप उसे सलाह ले सकती हैं। एक योग्य योग प्रशिक्षक आपको ऐसे आसन ढूंढने में मदद कर सकता है जो आपके लिए सुरक्षित हो।

अगर किसी को तनाव है तो मेडिटेशन कर सकता है। अधिकांश जो योग की जो क्लासेस होती हैं वो 45 से 90 मिनट तक चलती हैं। योग की सभी शैलियों में 3 मूलभूत घटक शामिल होते हैं, जैसे श्वास लेना, योगासन और ध्यान। योग में श्वास पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। कक्षा के दौरान आपके शिक्षक आपको श्वास लेने के व्यायामों के बारे में निर्देश दे सकते हैं। योगासन यानी कि आसन ऐसी गतिविधियों की एक श्रृंखला है दोस्तों, जो शक्ति, लचीलापन और संतुलन बढ़ाने में सहायक होती है। इनकी कठिनाई का स्तर फर्श पर लेटने से लेकर संतुलन बनाने वाले कठिन आसनों तक भिन्न होता है।

धीरे धीरे योग की शुरुआत करें और खुद पर ज्यादा दबाव डालने से पहले बुनियादी बातें सीख लें। अपनी क्षमता के अनुसार कुछ ऐसी चीजें, अगर आपको ऐसा संशय हो रहा हो तो एक बार शिक्षक से जरूर पूछ लें। अपनी क्षमता से अधिक जोर न डालें। यदि आप कोई आसन नहीं कर पा रहे हैं तो अपने शिक्षक से उसे संशोधित करने की मदद मांगें। अगर आपको कोई आसन करने का तरीका समझ नहीं आता है तो भी आप पूछ सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि अब आप अपने शरीर में पानी की जो पर्याप्त मात्रा है वो ज़रूर रखें, खूब सारा पानी पिएं। पानी पीना बेहद ज़रूरी है। और योग करते समय हल्के फुल्के ढीले ढाले कपड़े पहने, ऐसे कपड़े पहने जिनमें आप आसानी से चल फिर सकें। अपने शरीर की सुने, अगर आपको दर्द या थकान महसूस हो तो रुकें और आराम करें। तो ये तो बात रही हमारी आज योग के बारे में, और अब ले चलते हैं आपको संगीत की दुनिया में और सुनवाते हैं आपको प्यारा सा गीत।

साथियों, इस खूबसूरत से गीत के बाद अब बात करते हैं आज की बात के क्रम में। एक और हम चर्चा लेकर आए हैं। चर्चा का विषय है दिव्यांग बच्चों की शिक्षा और छात्रवृत्ति का अवसर। इस विषय पर आज हम बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा दिव्यांग बच्चों की शिक्षा और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण छात्रवृत्ति योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करके उच्च श्रेणी

की शिक्षा के अवसर देना है। दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर और प्रमुख छात्रवृत्ति कुछ योजनाएं हैं, जैसे कि प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति। कक्षा 9वीं और 10वीं में पढ़ने वाले दिव्यांग छात्रों के लिए ये मिल सकती है। कक्षा 11वीं से लेकर स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन स्तर की पढ़ाई कर सकते हैं। फिर आती है उच्च स्तरीय शिक्षा यानी टॉप क्लास एजुकेशन स्कॉलरशिप। देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में उच्च शिक्षा या पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए वित्तीय सहायता, इसमें प्रतिवर्ष स्वीकृत छात्रवृत्तियां की संख्या निश्चित होती है और 50% सीटें छात्राओं के लिए आरक्षित होती हैं। योजनाओं का आप पूरी तरह से लाभ उठाएं।

साथियों, डिग्रियां तो शिक्षा में हुए खर्चे की रसीदें हैं, ज्ञान तो वो है जो आपके किरदार में झलकता है।

0: ऐसे क्या देख रहे हो?
1: सपना, बहुत दिनों बाद तुम्हें।
0: बहुत दिनों बाद क्या? आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू।
2: ना पूछो मुझसे मेरे अल्फाजों की कहानी, कुछ दर्द के बादल, कुछ यादें पुरानी।

कुछ रास्ते हैं जिन्हें मंजिल की तलाश है अभी, कुछ ख्वाब है जो आंखों से निकले नहीं कभी। इन्हीं पंक्तियों के साथ युववाणी कार्यक्रम को संपन्न करने की यही आपसे आज्ञा चाहते हैं। फिर आएंगे कुछ नई चर्चा के साथ। खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।

अभी युवा साथी अपना कार्यक्रम सुन रहे थे युववाणी एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। गृह मंत्री अमित शाह ने वर्ष 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए अगले 3 वर्षों रूपरेखा तैयार जारी की है। उन्होंने मादक पदार्थों के खिलाफ देशव्यापी समन्वित अभियान चलाने का आह्वान किया। गोवा में गृह मंत्रालय की बैठक में श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2019 से सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी पर कार्रवाई, खुफिया जानकारी साझा करने, वित्तीय जांच और पुनर्वास के उपायों को मजबूत किया है।
1: 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए एक रोड मैप बनाया है। 26 से 29 को हमने मिशन मोड अवधि के रूप में चिन्हित किया है, समय सीमाएं तय की है। 4 स्तंभों पर हमारा रोड मैप विजन डॉक्यूमेंट है। एक इंटेलिजेंस और ऑपरेशन आधारित एनफोर्समेंट, दूसरा प्रीकर्सर और सिंथेटिक ड्रग पर नियंत्रण, तीसरा डिमांड और हार्म रिडक्शन और चौथा क्षमता निर्माण और समन्वय।
0: श्री शाह ने बताया कि वर्ष 2014 से 2024 के बीच 1,19,00,000 किलो से अधिक मादक पदार्थ जब्त किए गए। इनकी कीमत करीब 1,89,000 करोड़ रुपए है। गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में सत्य निकेतन में बहुमंजिला पीजी आवास की इमारत ढहने की घटना के बाद अपने निर्धारित कार्यक्रम से एक दिन पहले ही गोवा से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। श्री शाह कल गोवा पहुंचे थे। दिल्ली में हुए हादसे के मद्देनजर गोवा भाजपा मुख्यालय में उनका निर्धारित कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। श्री शाह को कल 28वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होना था और गोवा पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलंकर प्रदान करना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने और दुनिया का नेतृत्व करने का आह्वान किया है। वे कल दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे।
2: भारत की ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स क्यों नहीं हो सकती? हमारी अकाउंटिंग फर्म, हमारी लीगल फर्म, हमारी फाइनेंशियल फर्म, ये सब ग्लोबल लीडर्स क्यों नहीं बन सकती? हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें?
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया भारत की तेज आर्थिक वृद्धि और नीतिगत बदलावों की सराहना कर रही है। उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत की 7.8% की तिमाही आर्थिक वृद्धि देश की क्षमता को दर्शाती है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार की तैयारी नहीं बल्कि जिम्मेदार नागरिक तैयार करना भी होना चाहिए। गुवाहाटी में गीता नगर कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह में उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुसंधान और चरित्र निर्माण देश की प्रगति के लिए जरूरी है। उपराष्ट्रपति ने उच्च शिक्षा में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को नारी शक्ति का प्रतीक बताया। श्री

0: राधाकृष्णन आज से असम के दो दिवसीय दौरे पर हैं। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियां तेज हो गई हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को भारत मंडपम में आयोजित होगा। कोयला मंत्रालय ने मीडिया की उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा गया है कि केंद्र से कोयले की पर्याप्त आपूर्ति नहीं होने के कारण पंजाब के ताप विद्युत संयंत्रों में कम बिजली उत्पादन हो रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि कोल इंडिया लिमिटेड पंजाब सहित पूरे देश में बिजली उत्पादन के लिए निर्बाध कोयला आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्रालय ने समान क्षेत्रफल वाले विश्व मानचित्र को लेकर भारत का रुख स्पष्ट किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में समान क्षेत्रफल वाले मानचित्र से जुड़े प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया है। न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी को बंबई उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति ने कल उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी। वे बंबई उच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। पुरुष डबल्स में फाइनल में भारतीय जोड़ी ने चीन के हे जीटिंग और रेन जियांग यू को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण।

रात 9:30 पर आप सुनेंगे रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम और रात 10 आप सुन सकते हैं रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। ये दोनों ही कार्यक्रम हम अनुप्रसारित करेंगे दिल्ली केंद्र से।

कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण आपके लिए लेकर हाजिर होंगे शाम 6:50 पर। आज इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय रहेगा बाह्य परजीवियों से पशु सुरक्षा और पशु पोषण में खनिज लवण। मन भावन क्रम में आप सुनेंगे कुछ ब्रज लोकगीत।

शाम 6:15 पर आप सुनेंगे ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे ब्रज काव्य मकरंद के अंतर्गत ममता गुप्ता द्वारा कुछ काव्य प्रस्तुति। कार्यक्रम संध्या वंदन प्रसारित किया जाएगा शाम 6:30 पर। फरमाइशी फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम शाम सुहानी लेकर हाजिर होंगे शाम 7:31 पर। कुछ देशभक्ति परक रचनाएं लेकर हाजिर होंगे अब से कुछ ही देर में यानी 6:10 पर और रात 8:20 पर। एक ही फिल्म से कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाएंगे तेरे नाम फिल्म के कुछ गीत। समय याद रखिएगा रात 8:30।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं संवेद स्वरों में देश गान।

0: अभी आप सुन रहे थे संवेद स्वरों में देशभक्ति परक रचना। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रज साहित्यिक। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे ब्रज काव्य मकरंद के अंतर्गत ममता गुप्ता द्वारा प्रस्तुत कुछ काव्य पंक्तियाँ।
1: सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण की बाल छवि और श्रृंगार रस को बहुत ही सुंदर बखान करते हुए

सोवत सूरिदास प्रभु की निरखत सूरी नरी मनी सब मोहत। जाइत रहते मीराबाई के मेह की।

करनी। स्वामी हरिदास जी कहते हैं कि ज्यो ज्यो तुम राखत हो त्यों तो रहियत हो हरी, और अचरजे पाई धरो सू तो कहो कौन के पेंड भरी। जद्यपि हो अपनो भायो क्यों चाहो कैसी कर सको जो तुम राख पकरी। कहे हरिदास पिंजरा जनावर लो तरफरारई उड़ो कर वे को कितो उकारी। जाई तरह ते कविदास जी कहवे की मत कर मोह तू हरि भजन को मान रे, नैन दिए दर्शन को श्रवण दिए गुण ज्ञान रे, बदन दिया हरि गुण गाने को हाथ दिए कर दान रे। कहते कबीर सुनो वही साधो कंचन निपजत खान रे।

डारी भार में भारी परम धन राधे नामी आधार। जाई तरह ते बलदेव जी की आराधना करते हुए ब्रज में कहो जावे है कि

0: आप सुन रहे थे ब्रज साहित्य कार्यक्रम। आज आपने आनंद लिया ब्रज काव्य मकरंद के अंतर्गत ममता गुप्ता द्वारा गाई कुछ काव्य पंक्तियां।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम संध्या वंदन।

लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में आपने सुना सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म का ये भजन। कार्यक्रम का अगला भजन हम आपको सुनवा रहे हैं हरिहरन के स्वर में। फिल्म का नाम है शिव महिमा।

हरी हरन और लता मंगेशकर की आवाज़ों में आपने सुना चार धाम फिल्म का ये भजन। कार्यक्रम का अंतिम भजन हम आपको सुनवा रहे हैं सुरेश वाडेकर के स्वर में। फिल्म का नाम है संत गानेश्वर।

संत ज्ञानेश्वर फिल्म के इस भजन के साथ ही संध्या वंदन कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण। आज का कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं मृदुल कुमार पांडे।

सब भैयान को हमारी राम राम। भैया पशुओं को परजीवन से बचाना बेहद जरूरी है। बाह्य परजीवी जैसे किलनी, जू, चीचड़ और मक्खी से पशुओं की सुरक्षा करना डेयरी फार्मिंग और पशुपालन में बहुत आवश्यक है जी। परजीवी न केवल पशुओं को खून चूसे हैं बल्कि दूध उत्पादन में कमी, वजन घटने और बवेसियोसिस व थेलेरियोसिस जैसी जानलेवा बीमारियों को कारण बने हैं। पशुओं को ऐसे परजीवन से बचावे को एक तो है रासायनिक और औषधीय उपचार, जहाँ में डॉक्टर की सलाह पर पशु को आइवरमेक्टिन को इंजेक्शन या दवा दी जा सके है, जो बाह्य और आंतरिक दोनों परजीवन को खत्म कर देवे है। साइपरमेथ्रिन या डेल्टा मेथ्रिन जैसी दवान को पानी में मिला के पशु के शरीर पर छिड़काव किया जाए है, या पीठ पर डारवे वाली दवान को प्रयोग हुए है। दवा लगाते समय ये ध्यान रखें कि पशु बाकू चाटे ना और थन व आंखन पर दवा न लगाएं। भैया घरेलू और प्राकृतिक उपायन में नीम के तेल में कपूर मिलाके पशु के शरीर पर लगाए हुए थे मक्खी और किलनी दूर भागे हैं। नीम के पत्तान को पानी में उबाल के व पानी से पशु को नहलाए के परजीवी नष्ट हुए हैं। सरसों के तेल में थोड़ा सा सल्फर गंधक मिलाए के लगाए हुए थे चीचड़ साफ है जाए है। भैया बाड़े की सफाई और प्रबंधन के माध्यम से हो जा समस्या से बचो जा सके है। जामे दीवारन की दरार और फर्श के कोनेन को सीमेंट से बंद कर दें। बाड़े में छिड़काव करके और भैया कचरा को निपटारो करके जाते बचो जा सके है। पशुशाला के आसपास मुर्गी पालवे थे बेजमीन और दीवारन पर मौजूद किलनी और कीड़ान को खाए के उनकी आबादी नियंत्रित रखे हैं। भैया जी बात ही बाह्य परजीवी ते पशु सुरक्षा की। अब बात आज के कार्यक्रम मन भावन की। भैया लाला को जन्म है गया है, सब ब्रजवासी तरह तरह ते बधाई दे रहे हैं। कार्यक्रम में हमू सुनवा में हैं जी लोकगीत सुनो।

दामोदर शर्मा के स्वर में भैया ने लियो आनंद जा लोकगीत को। भैया, पशु के पोषण में खनिज लवण बहुत ही आवश्यक हैं। जे पशु के स्वास्थ्य, शारीरिक विकास, दूध उत्पादन और प्रजनन क्षमता को बनाए रखवे को बहुत जरूरी है। भैया, खनिज लवण को दो भागन में बांटो जाए है। एक तो मुख्य खनिज और दूसरा सूक्ष्म खनिज। मुख्य खनिज की मात्रा शरीर को अधिक चाहिए, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम और सल्फर। सूक्ष्म खनिज की आवश्यकता बहुत कम, यानी कि मिलीग्राम में हुई है, जैसे जिंक, कॉपर, आयरन, आयोडीन, कोबाल्ट और सेलेनियम। पशु में खनिज लवण को बहुत महत्व है। भैया, रोजाना 50 से 60 ग्राम खनिज मिश्रण देवे थे दूध उत्पादन में 1 से 1.5 लीटर तक की बढ़ोतरी हुई है। जी, पशुओं के बांझपन और साइलेंट हीट को दूर करवे में मदद करे है। कैल्शियम और फास्फोरस पशुओं की हड्डी और दांतन को मजबूत बनावे है। भैया, इनकी कमी से मिल्क फीवर और कमजोर पाचन जैसे रोग है सके हैं। अब बात करेंगे खनिज लवण की कमी के लक्षण के बारे में, लेकिन पहले सुनने में है जी लोकगीत। स्वर हैं डोरीलाल।

भैया सुन रहे हैं जी लोकगीत स्वर दिया हो डोरीलाल गोला ने। भैया बात कर रहे हैं पशुन के खनिज लवण के बारे में, खनिज लवण की कमी के लक्षण के बारे में। भैया पशु को मिट्टी, दीवार या गंदो पानी चाटनो, दूध उत्पादन में अचानक कमी आनो, समय पे हीट में ना आ पानो, बाल रूखे होनो और हड्डियों को कमजोर होनो, जी लक्षण में खनिज लवण की कमी के जे लक्षण हैं। अब बात आवे है खनिज लवण देवे के तरीका के बारे में। तो भैया पशु को प्रतिदिन उनके दाने या चोकर के संग मिनरल मिक्सचर मिला के देना चाहिए। सामान्य पशु को रोजाना 30 से 50 ग्राम खनिज लवण देना पर्याप्त हुए है। तो भैया जी बात ही पशु पोषण में खनिज लवण की। अब सुनो मदन मोहन ब्रजवासी के स्वर में जी लोकगीत।

मदन मोहन ब्रजवासी के स्वर में भैया सुन रहे हैं जी लोकगीत। भैया लाला को जन्म तो है गयो, अब आए भी कू हैं ब्रजराज दाऊ दादा को जन्मोत्सव। सुनो अगलो लोकगीत शालिनी शर्मा के स्वर में।

0: भैया आनंद ले रहे हे जालो गीत को, स्वर दे रही ही सालनी शर्मा, जाई के संग करे हैं समापन आज के जा कार्यक्रम को। सब भैया को हमारी राम राम।
1: अभी आप सुन रहे थे ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम, प्रस्तुत कर रहे थे मृदुल कुमार पांडे। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम, कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चित्रकूट के बाढ़ग्रस्त इलाकों का किया दौरा। 800 परिवारों में बांटी राहत सामग्री। प्रदेश में नदियां उफान पर। भारी बारिश से 5 लोगों की मौत। राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा को अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नियुक्त किया गया उपराज्यपाल। प्रदेश में आगामी 1 दिसंबर से 4 जनवरी 2027 तक की जाएगी जनसंख्या गणना। 16 से 30 नवंबर तक स्वगणना का विकल्प भी रहेगा उपलब्ध। और प्रदेश में अलग अलग दुर्घटनाओं में 9 लोगों की मौत, कई घायल। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मोनिका चौहान, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज चित्रकूट में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण और रामघाट का स्थलीय निरीक्षण किया तथा बाढ़ प्रभावित 800 परिवारों को राहत सामग्री, आश्रयहीन परिवारों को आवास के लिए भूमि आवंटन प्रमाण पत्र और राहत राशि प्रदान की। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार आपदा की इस घड़ी में पूरी मजबूती और संवेदनशीलता के साथ आपके साथ खड़ी है।
2: आज आपदा की इस घड़ी में आप सबको राहत सामग्री के साथ साथ मैं आश्वस्त करने के लिए आया हूं, आप अकेले नहीं हैं, बल्कि डबल इंजन की सरकार आपके साथ खड़ी है। बाढ़ की चपेट में या अग्निकांड की चपेट में किसी गरीब का घर आता है, बाढ़ की चपेट में आके पूरा घर बह गया है, उसको प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्रता रखता तो प्रधानमंत्री आवास और नहीं तो मुख्यमंत्री आवास योजना में एक नया आवास और जमीन का पट्टा तत्काल दे दो।
1: मुख्यमंत्री ने कहा कि चित्रकूट में एसडीआरएफ और पीएसी की अतिरिक्त कंपनियों को बाढ़ नियंत्रण, राहत और बचाव कार्य में लगाया गया है। श्री योगी ने कहा कि फसल नुकसान का सर्वे भी करवाया जाएगा और आकलन के आधार पर राहत राशि मुहैया कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को राहत शिविरों में भोजन, स्वास्थ्य और सुरक्षा की समुचित और प्रभावी व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। इस दौरान श्री योगी ने बाढ़ प्रभावित लोगों से सीधा संवाद किया और उनकी समस्याएं भी सुनी। प्रदेश में बैराजों से पानी छोड़े जाने और भारी बारिश से राज्य के 24 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं और कई नदियां अब भी उफान पर हैं। भारी बारिश से कानपुर में मकान गिरने से 4, बदायूं में एक व्यक्ति की मौत हो गई। शाहजहांपुर जिले में गंगा और रामगंगा नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के करीब है। वहीं प्रशासन ने गर्रा और खखरा नदियों के किनारे और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। श्रावस्ती जिले की जमुनहा तहसील अंतर्गत वीरपुर लौकहिया में राप्ती नदी के तेज बहाव से आसपास की जमीनें जलमग्न हो गई हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
3: राज्य की कई नदियां अभी भी उफान पर हैं। बदायूं, गाजीपुर और बलिया में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और फरुखाबाद में खतरे के निशान के नजदीक पहुंच गई है। वहीं लखीमपुर खीरी और बाराबंकी में शारदा तथा अयोध्या और तुर्तीपार बलिया में घाघरा नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान के पार पहुँच गया है। चित्रकूट के राजापुर में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वाराणसी में वरुणा नदी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ राहत शिविर में पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की और राहत सामग्री बांटी। उधर मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक प्रदेश

0: पूर्वी हिस्से और आगामी दो दिनों तक पश्चिमी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल बनाया गया है। वो अवकाश प्राप्त एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी की जगह लेंगे। डॉक्टर शर्मा फिलहाल उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं। वो राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में डॉक्टर शर्मा ने कहा कि वो अपनी नई जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे।
2: जो निर्देश होगा, जो भी प्रधानमंत्री जी का, वो सबको स्वीकार है और हमेशा मैं कार्यकर्ता की तरह रहा हूँ, तो जो भी हमारे पार्टी का नेतृत्व आदेश देता है वो सिद्ध करना हमारा काम है। जो प्रधानमंत्री जी का विश्वास है उसको पूरा करूँ, यही मेरी इच्छा है।
1: उत्तर प्रदेश समेत चार राज्यों में जनसंख्या की गणना आगामी 1 दिसंबर से 4 जनवरी तक की जाएगी। पेश है एक रिपोर्ट।
3: यूपी, उत्तराखंड सहित 4 राज्यों के मैदानी इलाकों में जनसंख्या की गणना 1 दिसंबर से शुरू होकर अगले साल 4 जनवरी तक जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और गोवा राज्यों में 2027 के शुरू में प्रस्तावित विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए इस प्रक्रिया को समय से पहले कराया जा रहा है। भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने इस संबंध में जारी राजपत्र अधिसूचना में कहा है कि इन क्षेत्रों के लोग 16 नवम्बर से 30 नवम्बर तक स्वयं जानकारी दर्ज कराने का विकल्प अपना सकते हैं। गणना के बाद 5 जनवरी से 9 जनवरी तक संशोधन चक्र भी चलाया जाएगा। आकाशवाणी समाचार कक्ष से फजल इनाम।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्राविधिक शिक्षा अध्यापन सेवा परीक्षा 2025 आज सकुशल संपन्न हो गई। ये परीक्षा लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी और मेरठ में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों में कराई गई। परीक्षा की निष्पक्षता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी केंद्रों पर त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे और पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहा। राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में भर्ती के लिए कराई गई परीक्षा के क्रम में यांत्रिक अभियंत्रण, विद्युत अभियंत्रण, सिविल अभियंत्रण, इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण, केमिकल अभियंत्रण, कंप्यूटर, पेंट टेक्नोलॉजी, प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, फुटवेयर, टेक्सटाइल केमिस्ट्री, लेदर टेक्नोलॉजी, कर्मशाला अधीक्षक, वास्तुकला, भौतिकी, रसायन, अंग्रेजी और गणित शिक्षकों के पद शामिल हैं। ब्रिक्स समूह के सहभागी देशों के मुख्य न्यायाधीशों सहित 65 सदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक प्रतिनिधिमंडल ने आज ताजमहल और आगरा किला देखा। इस प्रतिनिधिमंडल में रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और इंडोनेशिया सहित 10 से ज्यादा देशों के मुख्य न्यायाधीश शामिल हुए। हल्की बारिश के बीच ताजमहल पहुंचे प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने ताज के सौंदर्य को निहारा और डायना बेंच पर फोटो सेशन कराया। ताजमहल की खूबसूरती से अभिभूत इन सदस्यों ने इसके इतिहास, निर्माण शैली और पच्चीकारी कला के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल की। बाद में प्रतिनिधिमंडल आगरा किला पहुंचे और वहां भी कई ऐतिहासिक स्थलों और मुगलकालीन स्थापत्य कला को देखा। मथुरा जिले में ग्रामीण इलाकों के विद्यार्थियों को बेहतर अध्ययन सुविधाएं मुहैया कराने के लिए जनपद की 120 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी संचालित की जा रही है। इन लाइब्रेरियों में अब तक 1536 विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ग्राम पंचायत सचिवालयों में बनाई गई इन डिजिटल लाइब्रेरियों में उपयोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जरूरी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा साहित्य, महापुरुषों का जीवन परिचय समेत कई विषयों पर उपयोगी पुस्तकें उपलब्ध हैं। इसी माह पुस्तकालयों में कंप्यूटर, प्रिंटर और एलईडी के बंदोबस्त के बाद ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू की जाएंगी। हज 2027 के लिए चयनित आजमीन हज के लिए मेडिकल स्क्रीनिंग और फिटनेस 2 चरणों में कराना अनिवार्य किया गया है। पहला चरण चयन के बाद और दूसरा हज यात्रा की उड़ान से पहले कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति के सचिव मोहम्मद तारिक ने बताया कि पहले चरण में आजमीन हज को सरकारी चिकित्सा केंद्र से एलोपैथिक डॉक्टर का मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होगा। इस सिलसिले में सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। प्रदेश में अलग अलग दुर्घटनाओं में 9 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। संभल जिले के बहजोई इलाके में आज सुबह ट्रक

0: और टेम्पो की टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि घायलों का स्थानीय और मुख्यालय अस्पताल में उपचार चल रहा है। उधर कौशाम्बी के महेवा घाट इलाके के भटपुरवा गांव के 3 बच्चे यमुना नदी में नहाने के दौरान तेज बहाव की चपेट में आने से गहरे पानी में चले गए, जिससे उनकी डूबकर मौत हो गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चित्रकूट के बाढ़ग्रस्त इलाकों का किया दौरा। 800 परिवारों में बांटी राहत सामग्री। प्रदेश में नदियां उफान पर, भारी बारिश से 5 लोगों की मौत। राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नियुक्त किया गया उपराज्यपाल। प्रदेश में आगामी 1 दिसंबर से 4 जनवरी 2027 तक की जाएगी जनसंख्या गणना। 16 से 30 नवंबर तक स्वगणना का विकल्प भी रहेगा उपलब्ध। और प्रदेश में अलग अलग दुर्घटनाओं में 9 लोगों की मौत, कई घायल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम शाम सुहानी।

ऐ जिंदगी जरा गम कुछ संभल कर बांट, यह कोई दर्द के किस्से सुनता कहाँ है। हम लिख भी दे दिल के सारे जख्म कागज पर, मगर वो अधूरे अल्फाज भी कोई पढ़ता कहाँ है। यूं तो बहुत तन्हा हो चुका हर एक शख्स इस जहां में, मगर फिर भी किसी को किसी को और किसी मन से वास्ता कहाँ है। इन्हीं कुछ पंक्तियों के साथ आज मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो मित्र खुशबू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम में। तो श्रोताओं, एक दूसरे से बात करते रहिए ताकि मन अकेला ना हो और आप अकेले ना हो। मिलजुल कर और प्यार से रहना हम मनुष्य को बहुत ही पसंद होता है। तो अब ले लेते हैं आप सभी के संदेश। तो सबसे पहला संदेश हमारे पास आया है जलगांव जंक्शन से, दिनेश काले वंदना आदेश और वसुधा वज्रसेन का। बहुत सारे संदेश हमारे पास आप सभी के हमें प्राप्त हो रहे हैं। ये संदेश हमें मिला है मोहम्मद रफी मस्ताना, झारखंड से अब्बास आलम, अमजद अली, लाडली निशा और परिवार के सभी सदस्य, मगनपुर झारखंड से अब्बास आलम, अमजद अली और परिवार के सभी सदस्य। अगली पसंदकर्ता रेडियो श्रोता हैं कृष्ण कुमार डाभी, भूवत, राधा तंवर, विक्रम, अर्चना और साक्षी। इन सभी का मैसेज हमें मिला है बालूतरा राजस्थान से। ये मैसेज ले लेते हैं। ये मैसेज आया है हमारे पास मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतन माला सुरलकर का। जाखोद राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत सुंदर, योगेश दीपक और कुमारी पूजा खटक का। संदेशों की श्रृंखला में और इजाफा हुआ है। अगले अनुरोध करता है तखतपुर छत्तीसगढ़।

से मिश्रीलाल, विश्वकर्मा मीरा देवी, विशाल मानस, चेतन गंगा देवी, विश्वकर्मा। अगला मैसेज ले लेते हैं, भिलाई छत्तीसगढ़ से ये संदेश हमें मिला है, मुकेश शर्मा, गौरव गरिमा शर्मा का। मंदसौर मध्य प्रदेश से रामलाल चंद्रवंशी और कृष्णा चंद्रवंशी हमसे जुड़े हैं। भागलपुर से दिलीप।

भागलपुर से दिलीप कुमार सोनी का ये मैसेज हमें मिला है। प्रेम साय राजवाड़े, सोमार साय, मेर साय, भगत हेमंत कुमार, राम खिलावन, पैकरा, किसी भी गीत की फरमाइश इन्होंने लिख भेजी है, सूरजपुर छत्तीसगढ़ से। अगले पसंद करने वाली श्रोता हैं कल्याण मुंबई से किशोर हिवराले, सुजाता और प्रतीक हिवराले। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला, ओम भैया और आरती। सुन लेते हैं सबसे पहले आप ही की फरमाइश का ये गीत, फिल्म का नाम है मोहरा।

पंकज उधास और साधना सरगम की आवाजों में आपने सुना मोहरा फिल्म का ये गीत। और अब ले लेते हैं आप सभी के संदेश। जाखोद राजस्थान से हमारे पास ये संदेश आया है शंभू दयाल खटक, विमला देवी अमरजीत सुंदरलाल, योगेश दीपक और कुमारी पूजा खटक का। ये संदेश उमाली से हमारे पास आया है अनूप कुमार और उद्धव पाटिल का। मध्य प्रदेश लखनादौन से लाडली जी चौबे रिमझिम और सक्षम चौबे हमसे जुड़े हैं। किसी भी गीत की फरमाइश करते हुए आदर्श नगर मलोर पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश निवान, मैंडी सौरव और साइना शर्मा ने हमें ये मैसेज लिखा है। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमला अनेजा का संदेश अभी हमें प्राप्त हुआ है। और एक और संदेश ले लेते हैं राजस्थान से भोपालगढ़ से, इन्होंने ये संदेश लिखा है धर्मेंद्र, कपिल, ईशा और पूजा परिहार का। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका और भानु प्रकाश का ये संदेश हमें मिला है। सैयद आलम हाशमी, गुलनाज हाशमी, असद अरहाम और समस्त हाशमी परिवार हमसे जुड़ा है अजमेर शरीफ से। सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा अदीब, नाजिया, आफिया इब्राहिम और सद्दाम हमसे जुड़े हैं। किसी भी गीत की फरमाइश करते हुए ऊपरकोट मोहल्ला चौखुनट्टी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहद परवीन अब्बासी, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। नेहरू चौक पैठण से सुरेश जाधव, अनीता, आरती प्रसाद, सोनन, बेबी सिया जाधव और पूरा जाधव परिवार का संदेश हमें प्राप्त हुआ है। सनावाद से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बोडाना हमसे जुड़े हैं। जबलपुर मध्य प्रदेश से अगला संदेश हमें मिला है सोनाली दुबे, मोनिका तिवारी और रानू का। किसी भी गीत की फरमाइश हम तक आई है बिजनौर शहर नजीबाबाद मोहल्ला धर्मदास से गुलाम हसन, निशाद बानो, साबरा खातून, मोहम्मद सलमान, फरमान, नजमीन परवीन, शहजादी, शराफत अली, अब्दुल रहमान, नाजुक परवीन, रवि फातिमा, बेबी फातिमा, हिना फातिमा और रानी बिटिया मदीहा। ये संदेश हमें मिला है हर्षिता रामेश्वर, परमेश्वर, मीनाक्षी, कान्हा, श्री मनोहर बाई बागरी, प्रभुलाल बागरी का। रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से इन सभी का हमें संदेश मिला है। विलासपुर छत्तीसगढ़ से श्रीवंत गुणवंत श्रीवास, करुणा श्रीवास, आयुष विवेक और बेबी आयुषी ये मैसेज ले लेते हैं आप सभी का। चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहा, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ और निलोफर फातिमा का हमारे पास ये संदेश आया है। संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, खुश नसीब अब्दुल हक डावर, जियाउल हक, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी जी हमसे जुड़े हैं।

ये संदेश उज्जैन मध्य प्रदेश से आया है। भेरूलाल वाक्तरिया धाकड़, भोला वाक्तरिया, प्रवीण रियांश और प्रतीक वाक्तरिया, किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव, भानुप्रिया, कीर्ति भारती, वर्षा, सुमन, देवाश्री, मेघा राशि और माधुरी किरण का ये संदेश हमें मिला है। अगले पसंद करने वाले श्रोता हैं मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, रोहित और पीयूष कुमार, सैयद आलम हाशमी, गुलनाज हाशमी, असद अरहाम और समस्त हाशमी परिवार अजमेर शरीफ से, सुधाकर राजे जाधव देशमुख, प्रशांत राजे, जगुताई राजे जाधव देशमुख, कुमार संचित देशमुख, प्रथमेश सर्वत, हर्षिता सानवी और प्रणाली देशमुख हमसे जुड़े हैं जाफराबाद से। सुन लेते हैं आप सबकी फरमाइश का ये गीत। फिल्म का नाम है परदेसी बाबू। इस गीत को गाया है उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति ने।

कविता कृष्णमूर्ति और उदित नारायण की आवाजों में आपने सुना परदेसी बाबू का ये गीत। और अब ले लेते हैं आप सभी के संदेश। ये संदेश हमारे पास आया है राजकोट गुजरात से रश्मि झरना भरत कुमार का। अगला संदेश हमें मिला है सत्यनारायण कपिल शोभा फुंडीबाई बागरी का, झालावाड़ राजस्थान से इन्होंने हमें संदेश लिखा है। ये संदेश हमारे पास आया है पहारा दुर्ग छत्तीसगढ़ से पोषण बंछोर चंद्रकिरण प्रीति और छाया बंछोर का। किसी भी गीत की फरमाइश करते हुए अगला मैसेज हमारे पास आया है जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा पूनम विशाल दिशानी और निमित आहूजा का। उत्तम कुमार भगत श्वेता भगत किसु तासु अर्नव आनंद सत्यम आनंद का संदेश हमें मिला है पाकुड़ झारखंड से। यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से हमसे जुड़े हैं। मामुलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान आड़ोकार पीएस नभारकर और वसंत राव भोजने का संदेश अभी हमें प्राप्त हुआ है। अगला संदेश खंडवा से हमारे पास आया है मोहम्मद रफीक पवार बेनजीर कौसर मोहम्मद साकी पवार अलमास बानो पवार मोइन छोटू और मोहम्मद हसनैन पवार। बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव सार्थक नामदेव हमसे जुड़े हैं और किसी भी गीत की फरमाइश करते हुए पाड़र बड़ा से अनिल बुरांडे उषा अनुश्री और धनश्री बुरांडे का संदेश हमें प्राप्त हुआ है। ये संदेश हमारे पास आया है किसी भी गीत की फरमाइश इन्होंने लिख भेजी है दिग्दर्शन और कविता गौड़ मेरठ कैंट से इन्होंने हमें संदेश लिखा है। शिवपुरम कॉलोनी से कमला देवी महोबिया अने अनाया सुन लेते हैं आप सबकी फरमाइश का ये गीत कुमार सानू की आवाज में। फिल्म का नाम है उफ ये मोहब्बत।

उफ ये मोहब्बत। अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म का गीत, स्वर दिया था कुमार सानू ने। और अब ले लेते हैं आप सभी के संदेश।

ये संदेश आया है चाईबासा झारखंड से। शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल, शिवांश, संगीता, लिपि और दीपाली गोप का। अगली फरमाइश हमारे पास आई है खंडवा मध्य प्रदेश से ममता बमारकंडे, संजय और बेबी किट्टू की। उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूड़त, नेहा जैन, दीपक मयंक, चेतन नहाटा, किसी भी गीत की इन्होंने फरमाइश हमें लिख भेजी है। अगली फरमाइश करता है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश।

वर्मा और करुणा वर्मा, रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से विजय सिंह महोबिया, कविता पेंटर बाबू, कुंडलेश्वर वार्ड खंडवा से योगेश गुजराती और संजय मारकंडे, मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद, सुहेल, अनम, यशफ और रसीद वारसी हमसे जुड़े हैं। नागपुर से नाना डोगर दीवे, रमाताई, दीक्षा, रीमा और राहुल डोगर दीवे हमसे जुड़े हैं। और अगला संदेश पलसी बुजरुक से आया है, विजय शेगोकार और ऋषिकेश डॉक्टर जयश्री। पंजाब से गुरदर्शन लाल चलोत्रा, सुनीता, शम्मी, रजनी, आकाशदीप, अनहद और पोत्रा गुरशबद। तो श्रोताओ, इसी के साथ आज का शाम सुहानी कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

श्रेया घोषाल के स्वर में आपने सुना सिंघम फिल्म का ये गीत। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं सुनिधि चौहान के स्वर में। फिल्म का नाम है चमेली।

कृपया ध्यान दें, दिल्ली से मुंबई आने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 12 के बदले प्लेटफॉर्म नंबर 36 पे आएगी।

अगर तुम ना होते, अभी आपने सुना इस फिल्म का गीत, स्वर दिया था किशोर कुमार ने। इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए अब सुनते हैं संवेद स्वरों में देश गान।

अभी आप सुन रहे थे संवेद स्वरों में देशभक्ति रचना। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज हम आपको सुनवाएंगे तेरे नाम फिल्म के चंद नगमे।

तेरे नाम भारतीय सिनेमा की एक बेहद लोकप्रिय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म के मुख्य गीतकार समीर हैं और इसका मुख्य संगीत हिमेश रेशमिया ने दिया।

श्रोताओं, बात कर लेते हैं इस फिल्म की डिटेल्स के बारे में। रिलीजिंग जो टाइम था इसका 15 अगस्त 2003। इस फिल्म के डायरेक्टर थे सतीश कौशिक। मुख्य कलाकार की भूमिका में नजर आए सलमान खान यानी कि राधे मोहन और भूमिका चावला यानी कि निर्जरा। ये भूमिका चावला की पहली बॉलीवुड फिल्म थी। गायक कलाकार थे उदित नारायण, अलका याग्निक और सुखविंदर सिंह।

ये कहानी राधे मोहन यानी कि सलमान खान की है। राधे स्वभाव से बहुत गुस्सैल, बेखौफ और अड़ियल है, लेकिन दिल का बुरा नहीं है। वो कॉलेज के छात्रों के बीच अपनी धाक जमा कर रहता है। कहानी में मोड़ तब आता है जब राधे की मुलाकात कॉलेज की एक बेहद सीधी साधी मासूम और पारंपरिक लड़की निर्जरा से होती है, यानी कि भूमिका चावला से होती है, जो एक मंदिर के पुजारी की बेटी है। राधे को निर्जरा से गहरा और जुनूनी इश्क हो जाता है। शुरुआत में राधे के हिंसक और रफ स्वभाव को देखकर निर्जरा उसे बहुत डरती है, लेकिन उसके प्रेम को ठुकरा देती है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि राधे ने उसकी बहन की मदद करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी, तो उसका दिल पिघल जाता है और वो भी राधे से उतना ही प्रेम करने लगती है।

जब निर्जरा और राधे का प्रेम परवान चढ़ रहा होता है और दोनों की शादी की बातचीत चल रही होती है, तभी एक दर्दनाक हादसा होता है। राधे की पुरानी दुश्मनी के चलते कुछ गुंडे उसके पीछे लग जाते हैं और उसे हमला कर देते हैं। राधे के सिर पर

राधे की हालत इतनी बिगड़ जाती है कि उसे इलाज के लिए एक धार्मिक मानसिक आश्रम में जंजीरों में बांध दिया जाता है, जहां उसका दर्दनाक इलाज चलता है। दूसरी तरफ निर्जरा राधे के गम में टूट जाती है, लेकिन उसका इंतजार करना नहीं छोड़ती। कुछ समय बाद राधे की यारदास वापस आने लगती है और वो आश्रम से भागकर निर्जरा से मिलने पहुंच जाता है।

और जब राधे निर्जरा के घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि समाज और परिवार के दबाव में आकर निर्जरा की शादी किसी और से तय कर दी गई थी, जिससे दुखी होकर निर्जरा ने आत्महत्या कर ली। अपनी प्रेमिका के शव को देखकर राधे पूरी तरह से टूट जाता है। इसके बाद जब आश्रम के लोग राधे को वापस लेने आते हैं तो वो खुद को पूरी दुनिया से अलग कर देता है और चुपचाप वापस मानसिक आश्रम की गाड़ी में बैठ जाता है।

इसी के साथ एक ही फिल्म से कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आज आपने आनंद लिया तेरे नाम फिल्म के कुछ गीतों का। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार। समाचार पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में सुने जा सकते हैं। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: साथ संध्या के साथ मैं वैष्णवी। मुख्य समाचार। दिल्ली के सत्यनिकेतन इलाके में बहुमंजिला इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत जबकि 11 लोग सुरक्षित निकाले गए। अब भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका, बचाव अभियान जारी। गृहमंत्री अमित शाह ने वर्ष 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए 3 वर्षों की रूपरेखा जारी की। मादक पदार्थों के नेटवर्क को समाप्त करने की ये रणनीति 4 स्तंभों पर आधारित। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने युवाओं से स्वस्थ और अनुशासित जीवन जीने तथा नशीले पदार्थों से दूर रहने का आग्रह किया। सोशल मीडिया के रचनात्मक उपयोग का भी आह्वान किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने देश के बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को महानगरों से आगे ले जाने का आह्वान किया। विज्ञान, स्टार्टअप तथा उद्योग के बीच मजबूत संबंध बनाने पर बल दिया। और भारत के पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना पहला खिताब जीता। और अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली के सत्यनिकेतन इलाके में आज दोपहर एक बहुमंजिला इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। अब तक 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि हादसे के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
1: 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। जो भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो बिल्डिंग का मालिक है या अधिकारी है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का रेनोवेशन का काम चल रहा था। बेसमेंट में किसी प्रकार की खुदाई चल रही थी जिसके कारण से पिलर जो है वो हिला और वो पूरी बिल्डिंग ढह गई। पीजी के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी, बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसीज काम कर रही है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए। दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित रूप में कह रही हूँ।
0: दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरतमंदों तक हर संभव सहायता पहुंचाई जाएगी। एनडीआरएफ के महानिरीक्षक एनएस बुंदेला ने बताया कि एनडीआरएफ की 2 टीमें मौके पर बचाव कार्य में जुटी हैं।
2: 2 टीमें करीब 70 लोग हैं जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, जहाँ पर और विक्टिम्स को हमने आइडेंटिफाई किया है और इसमें हमने अपने कैनाइंस भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हम कटिंग इक्विपमेंट है, टेक्निकल इक्विपमेंट को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी तक 4 लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने फायर सर्विस, दिल्ली पुलिस और जो भी लोकल कम्युनिटी है वहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे रही है, असिस्टेंस दे रही है, सबके कोऑपरेशन से हमने 4 विक्टिम्स को निकाला है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली में इमारत ढहने की घटना पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि अधिकारी घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं तथा हादसे से प्रभावित लोगों की मदद की जा रही है। गृहमंत्री ने कहा कि स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ आपसी समन्वय से राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। घायलों को हर संभव चिकित्सा सहायता दी जा रही है। श्री शाह ने हादसे में घायल सभी लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। रक्षा मंत्री ने कहा कि दुख की इस घड़ी में उनकी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। उन्होंने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। श्री नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक और केंद्र सरकार के अस्पतालों को हर संभव चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। इस बीच श्री शाह ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस आयुक्त और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के महानिदेशक से बात कर स्थिति की जानकारी ली। गृहमंत्री ने कहा कि स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ आपसी समन्वय से राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। घायलों को हर संभव चिकित्सा सहायता दी जा रही है। श्री शाह ने हादसे में घायल सभी लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। इसके अतिरिक्त श्री शाह अपने निर्धारित कार्यक्रम से एक दिन पहले ही गोवा से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। श्री शाह कल गोवा पहुंचे थे। दिल्ली में हुए हादसे के मद्देनजर गोवा भाजपा मुख्यालय में उनका निर्धारित कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। श्री शाह को कल 28वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होना था और गोवा पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करना था। इससे पहले गोवा में गृह मंत्रालय की बैठक में श्री शाह ने वर्ष 2029 तक

0: भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए अगले 3 वर्षों की रूपरेखा भी जारी की है।
1: 4 स्तंभों पर हमारा रोड मैप विजन डॉक्यूमेंट है। एक इंटेलिजेंस और ऑपरेशन आधारित एनफोर्समेंट, दूसरा प्रीकर्सर और सिंथेटिक ड्रग पर नियंत्रण, तीसरा डिमांड और हार्म रिडक्शन और चौथा क्षमता निर्माण और समन्वय।
0: श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2019 से सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी पर कार्रवाई, खुफिया जानकारी साझा करने, वित्तीय जांच और पुनर्वास के उपायों को मजबूत किया है।
1: 2004 से 14 जो कांग्रेस का शासन था उसमें ड्रग की मात्रा 26 लाख किलोग्राम और आज वो बढ़कर 14 से 26 में 1,19,00,000 किलोग्राम से ज्यादा पकड़ा गया। उसका मूल्य 1,89,000 करोड़। 14 से 26 में 48,66,000 किलो ड्रग विनिष्ट करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने युवाओं से सोशल मीडिया का रचनात्मक उपयोग का आह्वान किया है। उन्होंने नशीले पदार्थों से दूर रहने और अपने दोस्तों को भी नशे से दूर कर रहने के लिए भी प्रेरित करने का आह्वान किया है। असम के गुवाहाटी में गीता नगर कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि विद्यार्थियों को जिम्मेदार फैसले लेने और अपने समय, स्वास्थ्य तथा भविष्य की रक्षा पर ध्यान देना चाहिए।
5: Our thoughts, our thinking, our actions should be controlled by one single factor, that is our own brain. Drugs should not determine what we should think. Our brain should determine what we should think and act. That's why wherever I am going, I am always saying, say no to drugs. Not only you should not take the drugs, you should not allow your friends, family members also should not take drugs.
0: असम के विकास का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था में 45% की वृद्धि हुई है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूर्वोत्तर सहित हर राज्य और क्षेत्र का समावेशी विकास जरूरी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने देश के तेजी से बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को महानगरों से आगे ले जाने और विज्ञान, स्टार्टअप तथा उद्योग के बीच मजबूत संबंध बनाने पर बल दिया है। कोलकाता में राइज कॉन्क्लेव के उद्घाटन में डॉ. सिंह ने कहा कि दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों में नवाचार की क्षमता को पहचानने की जरूरत है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।
6: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान। पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ एआई तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा।

0: जनहित में जारी।
1: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
3: ये आकाशवाणी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से आर्थिक शक्ति बन रहा है। देश व्यापार, वाणिज्य और उद्योग क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश भी इस विकास यात्रा में आगे बढ़ रहा है। डॉक्टर यादव 3 दिन की दुबई यात्रा पर आज संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि यात्रा का उद्देश्य मध्य प्रदेश में अधिक निवेश और नए उद्योग आकर्षित करना है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। क्षेत्र में बढ़ते सैन्य टकराव के बीच दोनों देश एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा कि उसकी एयरोस्पेस फोर्स ने कई बैलिस्टिक मिसाइलों से एक अमेरिकी विमानवाहक पोत और एक विध्वंसक पोत को निशाना बनाया। ईरान ने इन हमलों को दिन में अमेरिका द्वारा ईरानी तेल टैंकरों पर किए गए हमलों की जवाबी कार्रवाई बताया। मध्य प्रदेश सरकार ने सागर जिले में संदिग्ध जहरीली और अवैध शराब के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर आबकारी विभाग के 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। एक अन्य अधिकारी को जिले से हटाकर मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में वन्य जीवों के शिकार के खिलाफ चल रहे अभियान में स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स ने बाघों के शिकार के आरोपी शेरू पारधी उर्फ शेरू सिंह को शहडोल के ब्योहारी से गिरफ्तार किया है। शेरू पारधी कटनी का रहने वाला है और करीब 1.5 साल से फरार था। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार कल आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। इस बीच उत्तर प्रदेश में कई नदियां अब भी उफान पर हैं और 24 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं।
4: शाहजहांपुर जिले में गंगा और रामगंगा नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के करीब है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज चित्रकूट में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण और रामघाट का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने 800 बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री वितरित की और बेघर परिवारों को भूमि आवंटन प्रमाण पत्र दिए। इस बीच मौसम विभाग ने राज्य के पूर्वी हिस्से में अगले 4 दिनों तक और पश्चिमी जिलों में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
3: उधर बिहार के कई हिस्सों में बाढ़ के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। गंगा, गंडक और कोसी समेत कई प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए निचले इलाकों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। चीन के शेंजेन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन का खिताब जीत लिया है। पुरुष डबल्स फाइनल में भारतीय जोड़ी ने चीन के हे जी टिंग और रेन जियांग यू को हराया। इस वर्ष ये उनका दूसरा सुपर 750 और कुल मिलाकर 4th खिताब है। सात्विक चिराग की जोड़ी इस टूर्नामेंट में 2023 और 2025 में उपविजेता रही थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली के सत्यनिकेतन इलाके में बहुमंजिला इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत, जबकि 11 लोग सुरक्षित निकाले गए। अब भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका, बचाव अभियान जारी। गृहमंत्री अमित शाह ने वर्ष 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए 3 वर्षों की रूपरेखा जारी की। मादक पदार्थों के नेटवर्क को समाप्त करने की ये रणनीति 4 स्तंभों पर आधारित। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने युवाओं से स्वस्थ और अनुशासित जीवन जीने तथा नशीले पदार्थों से दूर रहने का आग्रह किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने देश के बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को महानगरों से आगे ले जाने का आह्वान किया। और भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: Good evening. This is Akashwani.

अभिजीत को अभी आपने सुना यस बॉस फिल्म में, और कार्यक्रम का आखिरी गीत हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद अजीज और साधना सरगम की आवाजों में। फिल्म का नाम है त्रिदेव।

त्रिदेव फिल्म के साथ ही सुहाने तराने कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का अनुप्रसारण हम करेंगे दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: की गढ़ी मिट्टी के नीचे सोया महानगर। आलेख है डॉक्टर अप्पू सहारण का, प्रस्तुतकर्ता विनय कुमार।
1: आज की यात्रा किसी सड़क या ट्रेन की नहीं, यह यात्रा है समय की रेखा पर पीछे लौटने की। हमारी आज की आधुनिक दुनिया से मिलकर हम पहुंच रहे हैं लगभग 7000 वर्ष पीछे। हरियाणा के हांसी जिले की उस पावन धरा के गर्भ में दबा है सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक विशाल सुनियोजित महानगर। पक्की ईंटों के मकान, चौड़ी सड़कें, वैज्ञानिक जल निकासी, कुएं, दस्तकार, व्यापारी और कृषि पर आधारित एक समृद्ध समाज, यही पहचान है राखी गढ़ी की।
2: हजारों वर्षों तक गुमनामी के अंधेरे में छिपा इतना बड़ा महानगर आखिर सामने कैसे आया? क्या यह किसी आकस्मिक संयोग का परिणाम था या निरंतर पुरातात्विक साधना का?
1: पुरातत्वविद व महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में प्रोफेसर रहे अमर सिंह ने कई वर्षों तक पढ़ाया है। वे समय समय पर छात्रों को राखी गढ़ी में हो रहे उत्खनन कार्यों को दिखाने के लिए ले जाते रहे। वे बताते हैं,
3: जहाँ तक राखी गढ़ी के प्रास्थल की खोज का प्रश्न है, हमारी जानकारी के अनुसार झज्जर गुरुकुल के संस्थापक व प्राचीन वस्तुओं के संग्रहकर्ता आचार्य भगवान देव, जिन्हें स्वामी ओमानंद सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने 1960 के दशक के प्रारंभ में राखी गढ़ी प्रास्थल का दौरा किया। इस दौरान उनको यहाँ से कुछ प्राचीन बर्तन तथा वस्तुएं मिली, लेकिन वह इन वस्तुओं के ऐतिहासिक महत्व को स्वयं नहीं समझ पाए। उन्होंने ये अवशेष कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर सूरज भान को दिखाए। इसके पश्चात डॉक्टर सूरज भान ने 1963 में राखी गढ़ी का दौरा किया और वहां से प्राप्त अवशेषों की पहचान करके आधिकारिक रूप से ये सिद्ध कर दिया कि ये अवशेष भारत की प्राचीन सिंधु अथवा हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हैं। उन्होंने राखी गढ़ी के महत्व को समझकर आसपास के क्षेत्र का व्यापक रूप से सर्वेक्षण किया, जिसके परिणाम स्वरूप अन्य अनेक ऐसे ही प्रस्थल प्रकाश में आए। राखी गढ़ी की खोज ने सिंधु सभ्यता के बारे में प्रचलित इस धारणा को ही बदल दिया कि ये सभ्यता केवल सिंधु घाटी क्षेत्र तक ही सीमित थी, बल्कि ये पुष्ट कर दिया कि वह भारत में सरस्वती नदी तथा इसके आसपास के विस्तृत क्षेत्र में भी ये फली फूली। इसीलिए सिंधु सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता का नाम दिया गया है। अंततः 1997-98 के सत्र में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की ओर से डॉक्टर अमरेंद्र नाथ ने यहाँ निरंतर 3 सत्रों तक उत्खनन किया। उत्खननों के परिणाम स्वरूप यहाँ पर प्रारंभिक हड़प्पा और विकसित हड़प्पा के सांस्कृतिक अवशेष मिले। 2011 से 16 के बीच पुणे के डेक्कन कॉलेज के तत्कालीन कुलपति एवं प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर वसंत शिंदे के नेतृत्व में उत्खनन किए गए। टीला संख्या 7 से हड़प्पा कालीन कब्रिस्तान भी मिला, जिसमें नर और मादा मानव कंकाल मिले। 2022-23 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संयुक्त महानिदेशक संजय मंजुल ने भी यहाँ पर उत्खनन कार्य किया। अभी भी 2025-26 के सत्र में यहाँ पर उत्खनन शाखा नोएडा 2 के मनोज सक्सेना के निर्देशन में कार्य जारी है।
2: सभ्यताएं हमेशा नदियों के आंचल में पनपती हैं। रावी के तट पर हड़प्पा का विस्तार हुआ और सिंधु के किनारे मोहनजोदड़ो का। वहीं राखी गढ़ी का सीधा संबंध था सरस्वती दृषद्वती के सूखे मैदानी क्षेत्र से, जो कभी अत्यधिक उपजाऊ था। राखी गढ़ी केवल एक शहर नहीं था, बल्कि इस पूरे नदी क्षेत्र का व्यापारिक और कृषि केंद्र था। यहाँ की समृद्ध खेती और जल प्रबंधन ही इस विशाल नगर के भरण पोषण का आधार था। प्रसिद्ध पुरातत्वविद डॉक्टर रविंद्र सिंह बिष्ट कहते हैं कि
1: दृषद्वती नदी सरस्वती नदी की प्रमुख सहायक नदी थी। ये नदियाँ शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती थी, जिसमें सरस्वती उत्तर की ओर तथा दृषद्वती दक्षिण की ओर बहती थी।
4: ये एक घग्गर की तरह एक सहायक नदी थी दृषद्वती, जो आपके शिवालिक से निकल के और फिर आगे चल के ये करनाल और पानीपत के बीच से होते हुए और कई तीर्थ, महाभारत में बहुत तीर्थों का स्थान का धाम है, तो इस सफीदों सप्त देवी और सर्व दमन के पास जाती थी, फिर पश्चिम को मुड़ जाती थी और इसके पास अश्विन वराह जीव और राम राय, ये पवित्र तीर्थ स्थान थे और राम राय में इसके चार द्वार थे, उसमें राम राय था।

राय के पास आपका राखी घड़ी बसा हुआ है और सरस्वती से मैंने संबंध बता दिया आपको और इसकी जो धारा है वो आज भी आसन वरा और जीन राम राय आप होते हुए हाँसी हिसार सुपाल मातर श्राम भादरा रावस्तर सोथी होते हुए ये सरस्वती से संगम करती है सूरत दर के पास तो सरस्वती से इस पर संबंध है।

0: ऋग्वेद की ऋचाओं में इन नदियों किनारे भरतवंशी राजाओं द्वारा यज्ञ करने का वर्णन मिलता है। रविंद्र सिंह बिष्ट मानते हैं कि सरस्वती के दक्षिण में तथा दृषद्वती के उत्तर में जो क्षेत्र है उसे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहा गया है।
1: नदी के किनारे है, अब वो लुप्त प्राय हो गई है, लेकिन एक जमाने में वो शिवालिक से लेके तो जहाँ तक सरस्वती संगम होता था, ये सूरत गढ़ के पास एक प्राचीन स्थान है रंग महल के पास, इसका मेल होता था सरस्वती का। इसका इतना महत्व था, मैं आपको ऋग्वेद की बात बताता हूँ कि उसमें एक श्लोक आता है कि दृषद्वत्याम मानुष आपयायाम सरस्वत्याम रेव दग्नि दीदी ही। इसका मतलब है कि दृषद्वती आपया और सरस्वती इतनी पवित्र नदियां थी कि इसके किनारे भरत वंश के राजकुमार देव स्वस्थ और देव वाप इन तीनों नदियों के किनारे यज्ञ किए। हो सकता है एक स्थान उसका राखीगढ़ी रहा।
0: राखीगढ़ी लगभग 350 से 500 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले 9 टीलों का समूह है। यहाँ परिपक्व हड़प्पा काल के साथ साथ पूर्व हड़प्पा काल के साक्ष्य भी मिले हैं। ग्रिड पैटर्न पर बनी सड़कें, नालियां और अग्निवेदियां यह सिद्ध करती हैं कि यहाँ का समाज प्रशासनिक और नागरिक दृष्टि से अत्यंत परिपक्व था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारी एवं वर्तमान उत्खननकर्ता मनोज सक्सेना ने बताया,
2: राखीगढ़ी ग्राम दो राखी खास और राखी शाहपुर को मिलाकर बना है। राखीगढ़ी के आसपास 9 टीले हैं जिनका विस्तार लगभग 350 हेक्टेयर में फैला है, जो इसे सिंधु सभ्यता का अब तक का सबसे विशाल नगरीय केंद्र बनाता है। राखीगढ़ी ग्राम टीला संख्या 4 और 5 पर बसा है, तो यहाँ उत्खनन का कार्य संभव नहीं है, परंतु टीला संख्या 5 पर कुछ क्षेत्र में हमें कार्य करने की जगह मिली और जहां पर हम लोगों ने इस वर्ष के जो एक्सकेवेशन है उसमें हमने कुछ ट्रेंच वहां लगाए और हमें कुछ घरेलू संरचनाओं की कच्ची मिट्टी की ईंटों के से निर्मित है वो प्राप्त हुई है। टीला संख्या 1 से 9 तक के अध्ययन से हमें पूर्व हड़प्पा, प्रारंभिक हड़प्पा एवं परिपक्व हड़प्पा काल के निरंतर सांस्कृतिक विकास और अधिवास के अनुक्रम को दर्शाते हुए प्रतीत होते हैं। यहाँ से उत्खनन में सुविकसित नगर नियोजन के प्रमाण मिले हैं, जिसमें सड़कों को समकोण पर काटना, जल निकासी की उचित व्यवस्था, पक्की ईंटों की नालियां, कच्ची मिट्टी की ईंटों या सन ड्राइड ब्रिक्स का उपयोग घरेलू संरचनाओं में मिला है और 4-2-1 के अनुपात वाली ईंटों का प्रयोग मिला है। राखीगढ़ी की विशालता एवं विस्तार को देखते हुए इसे सिंधु सभ्यता की पूर्वी राजधानी माना जा सकता है। टीला संख्या 2 और 7 के उत्खनन में हमें सर्वाधिक आश्चर्य में डाला। टीला संख्या 2 से अर्ध बहुमूल्य पत्थरों या सेमी प्रीशियस स्टोन्स के मनकों का प्रतिशत पूर्व के उत्खननों की तुलना में बहुत अधिक है।
3: राखीगढ़ी से कई हड़प्पा कालीन वस्तुएं मिली हैं। उत्खनन के दौरान अनेकों ऐसी छोटी छोटी चीजें प्राप्त हुई जो इस सभ्यता के लोग अपने दिनचर्या में उपयोग करते थे। प्रोफेसर अमर सिंह बताते हैं,
4: तांबे और सोने के आभूषण, पकी मिट्टी और सेलखड़ी से निर्मित मोहरें तथा मनके बनाने के केंद्र मिले हैं जो इसके विकसित शहरी रूप को दर्शाते हैं। चाक पर बने मिट्टी के बर्तन जिन पर काले रंग से भिन्न भिन्न प्रकार के चित्रण, चर्ट पत्थर से बनी ब्लेड्स, अर्ध बहुमूल्य पत्थरों के अनेक प्रकार के मनके, पकी मिट्टी से निर्मित मनके, चूड़ियां, पशु हनुमानों की मूर्तियां, खिलौना गाड़ियां आदि भी प्रमुख रूप से मिली।
3: राखीगढ़ी वासी मामूली वस्तुओं से लेकर लैपिस लाजुली पत्थर से बने श्रृंगार के कीमती आभूषणों का अक्सर प्रयोग किया करते थे।
2: यहाँ से हमें कार्नेलियन, लैपिस लाजुली, जास्पर आदि के मनके, सोने के मनके, चर्ट के ब्लेड, टेराकोटा एवं शेल की बैंगल्स, अंजन सलाखा आदि के साथ साथ करीब करीब 2 मीटर मोटी दीवारों की घरेलू संरचनाएं भी प्राप्त हुई हैं। टीला संख्या 7 जो कि दफन स्थल या बरियल माउंड है, ये 7-8 मानव कंकाल मिले हैं, जिसमें एक मानव कंकाल के पास से 17 सोने के मनके, 2 सोने के फाइल और 42 मृदभा

0: मिले हैं जो उस समय की समृद्ध सांस्कृतिक समाधि परंपरा और आर्थिक संपन्नता को दर्शाते हैं।
1: अब प्रमाणित हो चुका है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सुदूर क्षेत्रों में फैली अन्य सभ्यताओं के साथ मेलजोल होने के साथ साथ अच्छे व्यापारिक संबंध भी थे। राखीगढ़ी प्रमुख व्यापारिक केंद्र रहा होगा और यहाँ से भी दूर दूर तक व्यापार किया जाता होगा। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर विकास पवार मानते हैं कि राखीगढ़ी के अन्य सभ्यताओं के साथ पारस्परिक सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध रहे होंगे।
2: पुरातात्विक उत्खननों से अनेकों प्रकार के अर्धकीमती पत्थरों के मनके अवशेष रूप में मिले हैं, जिनका कच्चा माल राखीगढ़ी के आसपास नहीं मिला। ये कच्चा माल सुदूर हड़प्पा स्थलों तथा दूर विदेशी हड़प्पा पुरास्थलों से निर्यात किया जाता था। उदाहरण के रूप में शंख गुजरात से, तांबा राजस्थान में स्थित खेतड़ी की खानों से, राखीगढ़ी के उत्खननों में जो मानकीकृत बात बटकरे एवं मोरे मिली हैं, उससे यह साबित होता है कि आंतरिक एवं बाह्य व्यापार के नियम एक समान थे। विदेशी क्षेत्रों के साथ व्यापारिक संबंध के फलस्वरूप राखीगढ़ी का व्यापार क्षेत्र अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया, ओमान और फारस की खाड़ी तक भी था। वहाँ से कच्चे माल के रूप में अर्धकीमती पत्थर अवशेष रूप में मिलते हैं। इस प्रकार राखीगढ़ी पुरास्थल का व्यापारिक मेलजोल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशी क्षेत्रों तक था।
3: अब सवाल उठता है कि इस कांस्य युगीन सभ्यता का निर्माण करने वाले लोग कौन थे? ये लोग कहीं से आए होंगे या फिर यहीं के गांवों व नगरों के मूल निवासी रहे होंगे। राखीगढ़ी के टीला नंबर 7 से प्राचीन कंकाल मिले हैं। वैज्ञानिकों ने इनका विस्तृत डीएनए अध्ययन व विश्लेषण किया है। एक महिला के प्राचीन कंकाल से माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए अध्ययन में U2B2 माइटोकॉन्ड्रिया हैप्लोग्रुप मिला है। डेक्कन कॉलेज के पूर्व कुलपति प्रोफेसर वसंत शिंदे का मानना है,
4: राखीगढ़ी में जो हड़प्पन कंकाल मिले हैं उनकी डेट लगभग 4,500 साल पुरानी है, तो उन लोगों का डीएनए सबसे प्रथम भारत में निकाला गया है। और इसके पहले हमको हड़प्पन लोग कौन थे उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। उसमें मतभेद थे, कुछ लोग बोलते थे कि हड़प्पन लोग यहाँ के थे, कुछ लोग बोलते थे कि वो बाहर से मेसोपोटामिया से आए होंगे, उन्होंने इस सभ्यता को विकसित किया होगा, ऐसा मानते थे। लेकिन इस डीएनए से जिसका रिजल्ट हमने एक दुनिया में सबसे प्रेस्टिजियस साइंटिफिक जर्नल है सेल, उसमें अब इसके रिजल्ट हमने पब्लिश किया है। और इसको एक दुनिया में सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन जीनोमिक्स, उसने इसको अप्रूव किया है। और उन्होंने बोला कि 2019 में जो 9 ब्रेक थ्रू रिसर्चेस हुए थे दुनिया में, उसमें राखीगढ़ी का जिक्र उन्होंने किया है। इसका मतलब साइंटिफिक कम्युनिटी ने इसको एक्सेप्ट किया है। तो उसका रिजल्ट ये मिलता है कि हड़प्पन लोगों का जो जीन्स थे, जो डीएनए था, वो बहुत ही डिस्टिंक्ट था, जिसको हम एंशियंट एंसेस्टर साउथ इंडियन बोलते हैं। वो जीन्स था जिनकी शुरुआत लगभग 12,000 साल पहले हुई थी। 12,000 साल के बाद इसमें धीरे धीरे म्यूटेशन शुरू हो गया और एक डिस्टिंक्ट जीन तैयार हो गया, उसको हम एंशियंट एंसेस्टर साउथ इंडियन जीन्स बोलते हैं। और वही जीन्स हड़प्पन लोगों में आए। और ये जो जीन्स है वो प्योरली इंडिजिनस लोगों के जीन्स है, यहाँ के लोगों के जीन्स है। तो इसे पता चलता है कि हड़प्पन लोग थे, यहाँ के थे, ये पता चलता है। उसके बाद हमने ये भी किया कि हमने मॉडर्न लोगों का सैंपल्स लगभग 140 अलग अलग जो गुट है साउथ एशिया में, उनके सैंपल्स हमने 3,500 सैंपल्स मॉडर्न लोगों के सैंपल्स हमने इकट्ठा किया और उसका हमने विश्लेषण करके उसको हम हड़प्पन जो सैंपल्स मिले थे राखीगढ़ी उससे हमने जोड़ा, तो उससे पता चलता कि साउथ एशिया के जो मेजर पॉपुलेशन है, हमको एक इंडिकेशन मिलता है अंडमान निकोबार से लेके लद्दाख कश्मीर तक और अफगानिस्तान से लेके पूरा नॉर्थ ईस्ट तक जो सब लोगों हड़प्पन लोगों के ही वंशज है, इसका एक प्रमाण मिलता है। वो लोग क्या रिलीजन फॉलो करते हैं, क्या कास्ट फॉलो करते हैं, उसका कोई मायने नहीं रखता, लेकिन ये पता चलता है या एक अंदाज लगता है कि अभी के जो मॉडर्न लोग है वो हड़प्पन लोगों के वंशज है। तो ये कंटिन्यूटी हमको बात दिखाई देते हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट एविडेंस हमको राखीगढ़ी से मिला है।
1: राखीगढ़ी की अर्थव्यवस्था कृषि और पशुपालन पर आधारित एक मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, जिसमें शिकार, मछली पकड़ने और संग्रहण के जरिए संसाधनों का कुशल प्रबंधन किया जाता था। कृषि आधारित पशुओं के साथ साथ जंगली जानवरों के होने के भी प्रमाण मिले हैं।
4: खुदाई से स्पष्ट होता है कि पालतू जानवर

0: की घड़ी में जीवन का केंद्र थे। महत्वपूर्ण पालतू जानवर गाय, भैंस, भेड़, बकरी और सुअर थे। इनका उपयोग आर्थिक और व्यवहारिक कार्यों के लिए भी होता था। गायों का उपयोग परिवहन के लिए और खेतों में काम करने के लिए किया जाता था। बैल और भैंस खेतों में हल चलाने और सामान ले जाने का कार्य करते थे। गाय और भैंस की गोबर भी एक बहुमूल्य संसाधन थी। लोग इसका उपयोग खेतों में खाद के रूप में, फर्श और दीवारों पर प्लास्टर के लिए और ईंधन के रूप में करते थे। इन अनेक उपयोगों से पालतू जानवर केवल खाने का स्रोत ही नहीं रहते, वे खेती, निर्माण और घरेलू जीवन के लिए अनिवार्य थे। भेड़ और बकरी से मांस, दूध और ऊन या बाल प्राप्त होते थे। सुअर भी पाए गए हैं, कुत्ते के अवशेष भी मिले हैं। संभव है कि ये साथियों पहरेदारों के रूप में कार्य करते थे, शिकार में मदद करते थे और बस्ती के आसपास कचरा प्रबंधन में भी सहायक रहे होंगे। पालतू जानवरों के साथ साथ जंगली जानवरों का भी महत्वपूर्ण स्थान। विभिन्न प्रकार के हिरण और एंटीलोप की हड्डियां बताती हैं कि शिकार ने पशु संसाधनों को पूरा किया। शिकार से मांस, छाल और अन्य सामग्री मिलती थी और यह घरेलू पशुओं से मिलने वाले संसाधनों की कमी को पूरा करता था। राखीगढ़ी के निवासियों ने जली और छोटे जानवरों का भी उपयोग किया। मछली पकड़ने जल स्रोतों से संग्रहण का संकेत देती हैं, जिससे उनकी भोजन में प्रोटीन और विविधता आई। पक्षियों के अवशेष स्थानीय पक्षियों के शिकार या जाल में फंसाने का संकेत देते हैं। सरीसृप और शंखों के अवशेष नदियों, दलदली क्षेत्रों और संभवतः शंख शिल्प या व्यापार के उपयोग में की ओर भी इशारा करते हैं।
1: ये थे पंकज गोयल, एसोसिएट प्रोफेसर, डेक्कन कॉलेज, पुणे।
2: लगभग 4000 साल पहले सरस्वती नदी सूखने लग गई होगी। धीरे धीरे समस्त सिंधु सरस्वती सभ्यता के नगरों में चहल पहल कम होती चली गई होगी। वैज्ञानिकों और इतिहासकारों में इस सभ्यता के पतन के बारे में मतभेद हैं। डॉक्टर रविंद्र सिंह बिष्ट जलवायु परिवर्तन को मुख्य कारण मानते हैं।
3: 8000 से 5000 ईसा पूर्व, जिसको आजकल कॉमन एरा कहते हैं, जलवायु के वैज्ञानिक है, उन्होंने बताया है कि जैसे कि बहुत ज्यादा बारिश होती थी, बहुत ह्यूमिडिटी थी, बहुत बारिश होती थी 8000 से 3000 ईसा पूर्व। उसके बाद ही हड़प्पा सभ्यता आती है, उस वक्त भी काफी बारिश थी। तो ये है कि सिंधु नदी अपने सारे सहायकों के साथ, पांच नदियां पंजाब की, सिंध और सरस्वती, ये बहुत जल का भंडार लेके पहाड़ों से जाके आगे जाके समुद्र में जाती थी। वह समय था जब आदमी ने बस्ती बना के रहने लगा था। उसका प्रमाण मेहरगढ़ नाम के स्थान पर है। धीरे धीरे उन्नति होते हुए हड़प्पा संस्कृति, ये जो अर्बन सिविलाइजेशन हम कहते हैं, नागर सभ्यता का उद्भव होता है। और सारे जो प्राचीन महत्वपूर्ण स्थान है, इन नदियों के किनारे ही बसे हैं, जैसे मोहनजोदड़ो सिंधु के, हड़प्पा रावी के, और गवेरी वाला सरस्वती के, कालीबंगा सरस्वती के, बड़ा वाली सरस्वती के, और राखीगढ़ी और तमाम बहुत सारे प्राचीन स्थान सरस्वती के किनारे बसे थे, जिसमें एक प्रमुख हमने बताया भी जो राखीगढ़ी था, विशाल पांच विशाल तक नगरों में। फिर क्या होता है कि 3000 के बाद थोड़ा धीरे धीरे ये बारिश का कम होने लगती है। खैर इतनी कम नहीं होती, इन्होंने बहुत इंतजाम किया था सिंधु सभ्यता वालों ने तो, लेकिन उसके अंतिम चरणों में 2100 से 1900 के बीच काफी पानी कम हो गया। और 1900 ऐसा समय आया जब बिल्कुल बारिश का होना एकदम बंद हो गया। कभी फ्लैश फ्लड्स आते रहे होंगे, लेकिन एकदम जिसे कि एरिडिटी, एक्सट्रीम एरिडिटी हो गई। और उसी समय में ये सरस्वती, दशरथवती और ये इसकी सहायक नदियां सूखने लगी। और वही समय है जब इसके किनारे बसे हुए साफ सिंध और इनके सब नदियों के किनारे बसे गए प्राचीन नगर जो है, नगर और महानगर, ये उजड़ने लगे। यानी कि आज नागर सभ्यता का विखंडन हो रहा। लोग शहरों से क्या करते, भूथा शहरों में रह के, इसलिए वो गांव की तरफ जत्थे बना के, कोई पूरब गया, कोई दक्षिण गया, कोई उत्तर की तरफ आया। तो इस ढंग से नागर सभ्यता का विखंड हो गया। तो जलवायु का बहुत बड़ा हाथ है सिंधु सभ्यता के विघटन में। और एक दूसरा कारण जिसके बारे में आजकल विद्वान नहीं बोलते हैं, 2100 के आसपास मेसोपोटामिया में पॉलिटिकल उथल पथल हुई है। ये तो सभी जानते हैं कि मेसोपोटामिया और जिसे आजकल इराक कहते हैं, यहाँ भी एक नगर सभ्यता थी बहुत समृद्ध। वहाँ हड़प्पा वालों का घनिष्ठ व्यापारिक संबंध उनसे था, जो वहाँ पॉलिटिकल उथल पथल भी, जिसे 50 से 80 साल तक कहते हैं, वो समय है जबकि हमारे

0: व्यापार पर बहुत धक्का लगा। तो हम जो उस व्यापार की वजह से, मतलब ये माइनिंग से लेके वस्तु बनाना और लॉजिस्टिक परिवहन वगैरह वगैरह, ये सब पे इतना धक्का लगा कि हड़प्पा की ये महानगर का विघटन होने लगा।
1: लेकिन इतिहास की खोज जितनी जरूरी है, उसका संरक्षण उससे भी अधिक चुनौतीपूर्ण है। हजारों वर्षों तक इतिहास को अपने गर्भ में सुरक्षित रखने वाले टीले, विशेषकर टीला नंबर 4 और टीला नंबर 6, आज आधुनिक अतिक्रमण और निर्माण का सामना कर रहे हैं। विकास और विरासत के संतुलन पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक युद्धवीर रावत के विचार।
2: ये सही, जहां भी खुदाई करता है या किसी स्मारक का विकास करता है तो जरूर वहां के स्थानीय लोगों को एक तो ईएसआई की काम करने की पद्धति का पता चलता है और उस ढंग से वो भी कई कामों में निपुण हो जाते हैं और उसमें अपना योगदान करते हैं। जैसे हम लोग वहां पर गई सामग्री वो स्थानीय बनाते हैं, खास करके खुदाई के लिए जो औजार होते हैं, उपकरण होते हैं, और स्थानीय लोगों को वहां पर ड्राइंग के लिए, सर्वेइंग के लिए हम उपयोग में लाते हैं और उनको सिखाया भी जाता है। साथ साथ उनको जो है विविध जो उपकरण हैं, जो इस चीज के जो है साधन हैं, उनके बारे में उनको जानकारी होती है, इसलिए उनका योगदान भी इसमें बढ़ जाता है। और खुदाई और अतिक्रमण को रोकने का जहां तक सवाल है, ये धीरे धीरे हम लोगों ने कई टीलों को प्रोटेक्शन किया है, उनकी हम जो है फेंसिंग कर रहे हैं और कई जो है टीलों पे हम शेड लगा करके एक जीवंत जो है संग्रहालय बना रहे हैं ताकि लोग जान सके कि क्या क्या वहां पर है। तो उसमें भी इन लोगों का योगदान रहेगा और वहां पर जो है भविष्य में कई लोगों को जो है गाइड की और इस चीज की जो है जरूरत पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि स्थानीय लोगों का उसमें बड़ा योगदान हो सकता है।
3: राखीगढ़ी सिंधु सरस्वती सभ्यता का प्रमुख नगर है। इस सभ्यता पर हरियाणा प्रदेश गौरवान्वित है। राखीगढ़ी में एक बड़ा संग्रहालय और हड़प्पन नॉलेज सेंटर बन रहा है। हरियाणा सरकार के पुरातात्विक विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर नरेंद्र परमार के अनुसार,
4: राखीगढ़ी के टीलों पर राखी, शाहपुर और रोकी था, दो गांव बसे हुए हैं, जहां टीले प्राचीन संस्कृति के वाहक हैं और वर्तमान गांव हैं आधुनिक जीवन शैली को दर्शाते हैं। तो हरियाणा सरकार इन टीलों और वर्तमान गांव के माध्यम से हरियाणा की 10,000 साल की जो गौरवशाली यात्रा है उसको दिखाने का प्रयास कर रही है। प्राचीन समय में हरियाणा के लोगों की जीवन शैली ऐसी थी और वर्तमान समय में ऐसी थी, और इस यात्रा में क्या क्या कंटिन्यूटी है और क्या क्या बदलाव हुए हैं, इसको भी हम विश्व के सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। राखीगढ़ी में 200 करोड़ की ज्यादा के लागत से एक विश्व स्तरीय म्यूजियम हरियाणा सरकार के माध्यम से बन रहा है और उसमें भी अतीत से वर्तमान की यात्रा है, उस पर भी विशेष फोकस रखा गया है।
1: हरियाणा पुरातत्व विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर नरेंद्र परमार भविष्य में राखीगढ़ी को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल होने के प्रति आशान्वित हैं।
3: स्थानीय युवाओं को हेरिटेज गाइड के रूप में प्रशिक्षित करना और होम स्टे व सांस्कृतिक पर्यटन से जोड़ना ही इस स्थल को जीवंत बनाए रख सकता है। राखीगढ़ी केवल एक खुदाई स्थल नहीं, एक जीवंत गांव भी है, जहां अतीत और वर्तमान एक साथ सांस लेते हैं, जहां किसान अपने खेत जोतते हुए मिट्टी में दबे इतिहास को स्पर्श करते हैं। इस अनूठी सह अस्तित्व की भावना पर राखीगढ़ी के सरपंच दिनेश का क्या कहना है, आइए सुनते हैं।
5: हमारे गांव के आर्टिस्ट, क्राफ्टमैन, महिलाएं, सबको एक रोजगार के रूप में विकसित गांव धीरे धीरे हो रहा है। हमारे गांव को लिविंग हेरिटेज लैंडस्केप के रूप में विकसित करने के लिए हम पुरजोर प्रयास करते रहते हैं और एक एक्सपोजर मिलता है कि देश विदेश से घूमे हुए लोग हमारे यहाँ आते हैं, उनके आइडियाज हम हमारे साथ शेयर करते हैं और उनको हम एग्जीक्यूट भी करते हैं उन आइडिया को लेके। तो वैसे ही प्रयास में हमने मतलब एक पूरी बड़ी गाइड टीम को विकसित किया राखीगढ़ी में, ट्रेडिशनल फूड बनाने वाली महिलाओं को विकसित किया है और हमारे जो क्राफ्टमैन है उनका तो कहना ही अलग है। हमारे गांव की कई महिलाओं की दरिया बाहर के कंट्री में बहुत डिमांडिंग है। हमारे गांव की लेडीज जो रोटी बनाने के लिए बोहिया बनाते हैं सरकंडे और पन्नी के, वो बहुत फेमस है। महिलाएं हमारी बाहर के बड़े स्कूल्स में क्राफ्ट वर्कशॉप के लिए जाने लगी।

0: है। आगे के प्लान के तौर पे हम हमारे गांव के 200 साल पुराने चौपाल को एक लिविंग हेरिटेज लैंडस्केप के रूप में देख रहे हैं, कुछ हवेलियों को बाहर के लोगों के साथ मिलकर विकसित कर रहे हैं।
1: राखीगढ़ी कभी विशाल महानगर रहा होगा। राखीगढ़ी का पूरा रहस्य अभी धरती के गर्भ में ही छिपा है। अभी तो उन रहस्यों से भी पर्दा उठना बाकी है जो लिपि को पढ़ने का मार्ग दिखाएंगे। युवा पुरातत्वविद डॉक्टर दिशा आलूवालिया ने समय समय पर हुए उत्खनन कार्यों में भाग लिया है। खुदाई के दौरान उन्होंने करीबन 400 मिट्टी की ईंटें निकाली थी। दिशा आलूवालिया का मानना है कि अभी बहुत काम होना बाकी है।
2: अभी बहुत बड़ा हिस्सा है राखीगढ़ी का जो कि हिंटरलैंड एरिया भी है। हमें नहीं पता है कि सिटी का छोर कहाँ खत्म हो रहा था और उसका सैटेलाइट एरिया कहाँ शुरू हो रहा था। हमें अभी तक जो जानकारी है वो स्टैटिग्राफी और जो कितने सालों तक वहाँ ऑक्यूपेशन रहा है हमें वो पता है, बट कितना और बड़ा सेटलमेंट हो सकता है हमें उसकी जानकारी पूरी तरीके से नहीं है। धोलावीरा के जैसे एक हाइड्रोलिक सिस्टम होना बहुत जरूरी है। राखीगढ़ी में जो बड़े बड़े ड्रेन्स मिलते हैं, हमें वेल्स मिलते हैं और जो लास्ट एविडेंस टैंक का मिला था वो ये बताता है कि एक बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड हाइड्रोलिक सिस्टम है, पर अनफॉर्चुनेटली हम उसको आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए। बट ये मान सकते हैं कि ऐसे बहुत छोटे छोटे जो लोग को लगे कि बहुत छोटी जानकारी है बट रिसर्च के लिए बहुत बड़ी जानकारी हो सकती है। राखीगढ़ी में लोग कैसे रहते थे, उनका सिस्टम कैसा था, ड्रेनेज सिस्टम, हाइड्रोलिक सिस्टम, उनका डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम कैसा था, उनका सिटी का लिमिट कितना बड़ा था, फोर्टिफिकेशन था नहीं था, बैस्टियंस थे, डबल फोर्टिफिकेशन था, सिंगल फोर्टिफिकेशन था, ये सब जानकारी अभी जाननी जरूरी है। बैरियर अभी भी एक्सकवेट हो रहे हैं बट उसके अलावा भी हमें ये आगे इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है कि जो जहां बैरियर्स हो रहे हैं, माउंट सेवन जिसको बोला जाता है, जहां मचो हरप्पन बैरियर्स मिलते हैं, वहां पे जो अर्ली एविडेंस मिले हैं अर्ली हरप्पन के, ये दर्शाता है कि जो अर्ली हरप्पन लेवल जो है वो काफी बड़ा रहा है। तो अर्लीस्ट एविडेंस जो साइट पे मिलता है उसका स्केल जानना, वहां से लेके मचौर तक कैसे सेटलमेंट चेंज हुआ है, कैसे सिटी डेवलप हुई है, ये सब बातें जो है, ये कहानी जो है अभी भी बाकी है।
1: उनका ये भी मानना है कि जैसे जैसे तकनीक उन्नत होगी इस पुरातात्विक स्थल को और अच्छे से समझा व जाना जाएगा।
2: GPR मैग्नेटोमेट्री ऑलरेडी प्रोफेसर वसन शिंदे ने किया है बट उसके अलावा रिमोट सेंसिंग है, टेस्ट पिट्स ले सकते हैं, फील्ड वॉकिंग है, कई ऐसी टेक्निक्स है आगे फ्यूचर में आएंगी जो हमें ये एविडेंस बहुत क्लियरली बताएंगी। बट एज ऑफ नाउ अभी हम रिमोट सेंसिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं अगर हम उस पे काफी मेहनत करें और सैटेलाइट इमेजरी और स्पेशल एविडेंस के हिसाब से हम जान सकते हैं कि इंडिकेशन लगा सकते हैं साइट के बारे में।
3: राखीगढ़ी की मिट्टी में दबी हर पक्की ईंट एक गाथा सुनाती है, हर मन का एक हुनरमंद हाथ की कहानी कहता है और हर अवशेष उस महान मानव जीवन का साक्ष्य है।
1: सवाल बस इतना है, क्या हम इतिहास की इस पुकार को सुनने के लिए तैयार हैं?
4: रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आपने सुना रूपक, राखीगढ़ी मिट्टी के नीचे सोया महानगर। आलेख डॉक्टर अप्पू सहारन का था, वाचन स्वर उषा मलिक व पंकज भारद्वाज का था। कार्यक्रम का संपादन दिलीप अहिरवार ने किया, प्रस्तुतकर्ता विनय कुमार। यह कार्यक्रम आकाशवाणी रोहतक के सौजन्य से प्राप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी है। रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा के आज के प्रसारण में अब हम आपके लिए श्री एनआर प्रशांत का कर्नाटक शास्त्रीय गायन प्रस्तुत कर रहे हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी इन टुनाइट ब्रॉडकास्ट ऑफ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। वी विल नाउ ब्रिंग यू द कर्नाटक क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय श्री एनआर प्रशांत।
0: श्री एनआर प्रशांत।

0: शांत कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के एक प्रतिष्ठित गायक हैं, जो संगीत क्षेत्र में अपने अभिनव और शोध आधारित असाधारण योगदान के लिए जाने जाते हैं। श्री एनआर प्रशांत की संगीतमय यात्रा का शुभारंभ बेंगलुरु में विद्वान आरके पद्मनाभ के मार्गदर्शन में हुआ। श्री तिट्टे कृष्णयंगार जैसी महान विभूतियों से प्रेरित होकर आपने विदुषी नीला रामगोपाल के सानिध्य में अपना गहन प्रशिक्षण जारी रखा। तत्पश्चात प्रोफेसर आर विश्वेश्वरन जी के आदरणीय मार्गदर्शन में आपने कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की सूक्ष्म बारीकियों की गहरी समझ प्राप्त की। आपने मैसूर विश्वविद्यालय से इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग की उपाधि प्राप्त की थी। आप वर्तमान में आकाशवाणी के प्रतिष्ठित ए ग्रेड कलाकार हैं। आपकी संगीतमय यात्रा की एक विशेष और अद्वितीय उपलब्धि एक राग संगीत सभाओं का सफलतापूर्वक संचालन करना है। वर्ष 2001 में आपको सिंगापुर इंडियन फाइन आर्ट्स सोसाइटी में वरिष्ठ संकाय सदस्य के रूप में आमंत्रित एवं नियुक्त किया गया था।
1: श्री एनआर प्रशांत इज ए डिस्टिंग्विश्ड वोकलिस्ट इन कार्नाटिक क्लासिकल म्यूजिक, रेनाउंड फॉर हिज इनोवेटिव एंड रिसर्च ओरिएंटेड एक्सेप्शनल कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द फील्ड। श्री एनआर प्रशांत म्यूजिकल जर्नी कमेंस्ड in Bengaluru under the guidance of Vidwan R.K. Padmanabha. Inspired by stalwarts like Shri Tittai Krishna Iyengar, he pursued his advanced training under the tutelage of Vidushi Neela Ramgopal. Subsequently, under the revered mentorship of Professor R. Vishweshwaran, he gained a deep understanding of the subtle nuances of Carnatic classical music. He earned a degree in engineering in instrumentation technology from the University of Mysore. He is currently a prestigious A-grade artist of Akashvani. A distinct and unique highlight of his musical journey is the successful presentation of the Ekaraga concert series. In the year 2001, he was invited and appointed as a senior faculty member at the Singapore Indian Fine Arts Society.
0: आज के कार्यक्रम में आपके साथ संगत कर रहे हैं वायलिन पर सीवी श्रुति, मृदंगम पर ये राधेश और घटम पर शरद कौशिक।
1: इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट ही इज अकंपनीड ऑन द वायलिन बाय सीवी श्रुति, ऑन द मृदंगम बाय ए राधेश एंड ऑन द घटम बाय शरद कौशिक।
0: श्री एनआर प्रशांत अपने कार्यक्रम का आरंभ स्वाति तिरुनाल की रचना से कर रहे हैं नरसिंह मामवा, जो राग आरभी खंड चापताल में निबद्ध हैं।
1: श्री एनआर प्रशांत बिगिन्स हिज कॉन्सर्ट विद द कंपोजिशन ऑफ स्वाति तिरुनाल नरसिंह मामवा इन राग आरभी सेट टू खंड चापताल।

0: लीजिए अब आप सुनिए मैसूर वासुदेवाचार्य की कृति देवी रमे मामवाब्धि तनये, जो राग वसंत तथा आदिताल में निबद्ध हैं।
1: यू विल नाउ लिसन टू अ कंपोजिशन ऑफ मैसूर वासुदेवाचार्य देवी रमे मामवाब्धि तनये इन द राग वसंता सेट टू आदिताल।

0: श्री एनआर प्रशांत अपने गायन को जारी रखते हुए अब प्रस्तुत कर रहे हैं रामनाथपुरम श्रीनिवास अय्यंगार की एक रचना परम पावन रामा, जो राग पूर्वी कल्याणी आदि ताल में निबद्ध हैं।
1: कंटिन्यूइंग हिज वोकल रिसाइटल, श्री एनआर प्रशांत विल नाउ प्रेजेंट अ कंपोजिशन ऑफ रामनाथपुरम श्रीनिवास अय्यंगार परम पावन रामा इन द राग पूर्वी कल्याणी सेट टू आदिताल।

0: ये था तनी आवर्तनम, जिसे मृदंगम पर ए राधेश, घटम पर शरद कौशिक ने प्रस्तुत किया।
1: That was तनी आवर्तनम played on the मृदंगम by ए राधेश and on the घटम by शरद कौशिक।
0: श्री एन आर प्रशांत अपने गायन का समापन रामनाथपुरम श्रीनिवास अयंगार की एक तिल्लाना से कर रहे हैं, जो राग पूर्ण चंद्रिका आदि ताल में निबद्ध हैं।
1: श्री एन आर प्रशांत concludes his vocal recital with a tillana of Ramanathapuram Srinivasa Iyengar in the rag Purnachandrika set to Aditaal.

0: इसके साथ ही रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में श्री एनआर प्रशांत का कर्नाटक शास्त्रीय गायन अब संपन्न होता है। संगत करने वाले थे वायलिन पर सीवी श्रुति, मृदंगम पर ए राधेश और घटम पर शरद कौशिक।
1: विद दैट वी कंक्लूड द कर्नाटिक क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय श्री एनआर प्रशांत इन द ब्रॉडकास्ट ऑफ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। He was accompanied on the violin by C.V. Shruti, on the mridangam by A. Radhesh, and on the ghatam by Sharad Kaushik.
0: इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग आकाशवाणी के मैसूर केंद्र पर की गई और इसे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया।
1: This program was recorded at the studios of Akashvani Mysuru and the broadcast came to you from Akashvani Delhi.
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही क्षण बाद समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। नई दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में आज दोपहर एक बहुमंजिला इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। अब तक 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि हादसे के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
4: 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। जो भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो बिल्डिंग का मालिक है या अधिकारी है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का रेनोवेशन का काम चल रहा था। बेसमेंट में किसी प्रकार की खुदाई चल रही थी जिसके कारण से पिलर जो है वो हिला और वो पूरी बिल्डिंग ढह गई। पीजी के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी, बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसी काम कर रही है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए। दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित रूप में कह रही हूँ।
3: दिल्ली के उपराज्यपाल

0: रंजीत सिंह संधू भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरतमंदों तक हर संभव सहायता पहुंचाई जाएगी। एनडीआरएफ के महानिरीक्षक एनएस बुंदेला ने बताया कि एनडीआरएफ की दो टीमें मौके पर बचाव कार्य में जुटी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली में इमारत ढहने की घटना पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस आयुक्त और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के महानिदेशक से बात कर स्थिति की जानकारी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि अधिकारी घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं तथा हादसे से प्रभावित लोगों की मदद की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक और केंद्र सरकार के अस्पतालों को हर संभव चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने युवाओं से सोशल मीडिया का रचनात्मक उपयोग का आह्वान किया है। उन्होंने नशीले पदार्थों से दूर रहने और अपने दोस्तों को भी नशे से दूर रहने के लिए भी प्रेरित करने का आह्वान किया है। असम के गुवाहाटी में गीतानगर कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि विद्यार्थियों को जिम्मेदार फैसले लेने और अपने समय, स्वास्थ्य तथा भविष्य की रक्षा पर ध्यान देना चाहिए। असम के विकास का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था में 45% की वृद्धि हुई है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूर्वोत्तर सहित हर राज्य और क्षेत्र का समावेशी विकास जरूरी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश के तेजी से बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को महानगरों से आगे ले जाने और विज्ञान, स्टार्टअप तथा उद्योग के बीच मजबूत संबंध बनाने पर बल दिया है। कोलकाता में राइज कॉन्क्लेव के उद्घाटन में डॉ सिंह ने कहा कि दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों में नवाचार की क्षमता पहचानने की जरूरत है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। क्षेत्र में बढ़ते सैन्य टकराव के बीच दोनों देश एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा है कि उनके एरोस्पेस फोर्स ने कई बैलिस्टिक मिसाइलों से एक अमरीकी विमान वाहक पोत और एक विध्वंसक पोत को निशाना बनाया। ईरान ने इन हमलों को दिन में अमरीका द्वारा ईरानी तेल टैंकरों पर किए गए हमलों की जवाबी कार्रवाई बताया। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण 8 हवाई अड्डों पर परिचालन अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया। इससे 1.5 लाख से अधिक यात्री फंस गए हैं। परिवहन मंत्री रूडी पूर्वा गांधी ने बताया कि अब तक 712 उड़ानें प्रभावित हुई हैं। जकार्ता के सोकार्नो हट्टा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने आज सुबह अनाक क्राकाटाऊ ज्वालामुखी से निकली राख के हवाई क्षेत्र में पाए जाने के बाद सबसे पहले परिचालन निलंबित किया। चीन के शेंझेन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन का खिताब जीत लिया है। पुरुष डबल्स फाइनल में भारतीय जोड़ी के चीन के हे जी टिंग और रेयान जियांग यू को हराया। इस वर्ष यह उनका दूसरा सुपर 750 और कुल मिलाकर चौथा खिताब है। सात्विक चिराग की जोड़ी इस टूर्नामेंट में 2023 और 2025 में उपविजेता रही थी। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Aditi Lumba. A multi-story building housing a student paying guest accommodation collapsed in Satyaniketan area of Delhi this afternoon. 3 persons have lost their lives and 11 people have been rescued so far, while several students are feared trapped under the debris. A major rescue operation involving multiple emergency and disaster response agencies is underway. Delhi Chief Minister Rekha Gupta visited the mishap site and took stock of the situation. Talking to media after the visit, Ms. Gupta said relief and rescue operations are continuing on a war footing. She said those found responsible for the incident will not be spared. Delhi Lieutenant Governor Taranjit Singh Sandhu also reached the mishap site and oversaw the rescue operations. Talking to media, Inspector General of the National Disaster Response Force, NS Bundela, said that 2 NDRF teams comprising 70 personnel are currently working on the site. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan,